0: अरे आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: आज का योगा टिप्स। आजकल की जनरेशन जो है वो चीनी और जंक फूड बहुत खा रही है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक माना गया है। चीनी और जंक फूड्स को कम करें। प्राकृतिक और घर का भोजन यानी सादा भोजन शरीर को अधिक ऊर्जा देता है। तो कहना सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें, थोड़ा सा खाएं नियमित रूप से।

खाएं, लेकिन घर का भोजन ज्यादा खाएं। स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। 30 दिवसीय योग शिविर में हम रोज एक नए शब्द के साथ आ रहे हैं, आप सभी को विदित है। तो आइए आज भी हम एक नए शब्द के साथ में एक नए आसन को सभी मिलकर के करने वाले हैं। मैं आज आपको एक चीज बता दूं सभी दोस्तों को कि हम रोज एक नए आसन के आगे एक नए शब्द की उत्पत्ति क्यों कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। वो ये है कि आसन को जब हम करते हैं तो कोई न कोई मतलब, कोई न कोई उद्देश्य, कोई न कोई एक बात होती है जब हम उस आसन को हम अपने में अपने जहन में उतारते हैं। ठीक वैसे ही उस शब्द की भी उत्पत्ति कुछ ऐसे ही हुई है कि हम कोई शब्द जब हम आसन के साथ जोड़ रहे हैं तो उस आसन का, उस प्राणायाम का महत्व अपने आप में बहुत ही बड़ा और एक विशाल सा हो गया है। आज भी हम एक नए आसन की ओर चलेंगे जो कि है भुजंग आसन। भुजंग आसन को और एक विस्तृत रूप में जानने के लिए और उसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए उनके आगे एक नए शब्द को जोड़ा है जो कि है अनुभव। अनुभव भुजंग आसन। अब अनुभव भुजंग आसन अनुभव क्यों है ये हम आपको बताएंगे। सभी लोगों को पता है कि अनुभव का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या है। अनुभव का नाम मतलब इनसाइट, अनुभव, भावना होता है। अनुभव नाम रखने से आपका जो मन है वो अनेक प्रकार के व्यवहार करने को लगता है। इस वजह से भी हम अनुभव को, एक शब्द को हम जानने लगते हैं। और कई बार तो आपने देखा होगा कि कई लोगों के नाम भी अनुभव हैं। तो आइए अनुभव का शाब्दिक अर्थ हम बताते हैं आपको। आमतौर पर समय के दौरान घटित होने वाली चीजों का अवलोकन करना, सामना करना या उनसे गुजरना, अनुभव से सीखना, मानवीय अनुभव की सीमा। किसी ने जो देखा, सामना किया या अनुभव किया, उससे प्राप्त या व्यावहारिक ज्ञान अनुभवी व्यक्ति यानी कि अनुभव कहलाता है। अनुभव से क्या आश्रय है हम आपको बताएंगे कि अनुभव को हम इसका शाब्दिक अर्थ किस रूप में समझ सकते हैं, जो कि है मन से प्राप्त होने वाला ज्ञान, परिणाम, फल। अनुभव का मतलब होता है कि हम किसी चीज को जब हम बहुत तीव्र गति से समझते हैं, बहुत ही आंतरिक रूप से समझने लगते हैं, हम उसे अनुभव करने लगते हैं। इसमें दोस्तों बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अनुभव का मतलब होता है जब हम किसी अपने पारिवारिक सदस्य के बारे में सोच लें, चाहे हम एक सामाजिक किसी व्यक्ति के बारे में सोच लें या हम खुद के बारे में सोच लें। अनुभव करना एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। किसी चीज को सीखना, उस पर अमल करना और फिर अनुभव करना, तीनों अलग अलग स्थितियों में होता है। सबसे पहले किसी चीज को सीखना यानी कि हम उसको बहुत ही तल्लीनता से देखते हैं, हम बिल्कुल उसको समझने लगते हैं। समझ के सीखना और अनुभव करके सीखना दोनों में बहुत ही अंतर है। तो इसी प्रकार आज अनुभव भुजंग आसन जो हम आपको, हम सभी मिलकर के करने वाले हैं, वो है अनुभव भुजंग आसन। जीवन में अनुभव का क्या महत्व है हम उसे भी जान लेते हैं और उसके बाद हम सीधे करेंगे भुजंग आसन। हमारे अनुभव हमें सीखने, समझने और स्वयं को समृद्ध करने का मौका देते हैं। वे हमें एक संवेदनशीलता और आत्म परिवर्तन की गहरी अनुभूति प्रदान करते हैं। अनुभवों को महसूस करना हमें अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझने में मदद करता है। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो विशेषकर अनुभव चार भेद हैं: सात्विक, कायिक, मानसिक और आहाय। तो सबसे

पहले हम जो जानेंगे वो ज्ञान और अनुभव। ज्ञान और अनुभव के बारे में हम सिर्फ एक ही चीज कह सकते हैं कि अनुभवों द्वारा प्राप्त वैवाहिक ज्ञान से संबंधित है, अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन में जितने अधिक तथा जितने व्यापक अनुभव होते जाते हैं उनका अनुभवे अधिगम का क्षेत्र उतना ही व्यापक होता चला जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम करते हैं अनुभव भुजंगासन। सबसे पहले हम जान लेंगे कि भुजंग आसन है क्या। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग अर्थात सर्प जैसी बनती है, इसीलिए इसको भुजंग आसन या सर्पासन यानी कि संस्कृत में भुजंगासन कहा जाता है। भुजंगासन सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में से 7वें नंबर आने वाला एक आसन है। भुजंगासन में भुजंग का अर्थ होता है सांप और आसन का अर्थ होता है योग मुद्रा। तो ये है भुजंग आसन का अर्थ, यानी कि एक सांप की तरीके से आकृति जिसे हम कोबरा आसन भी कहते हैं। कोबरा आसन जैसा कि नाम से ही विदित है कि यह एक सांप का नाम है कोबरा, और कोबरा जिस तरीके से अपना फन फैलाता है और उसकी लंबी पूंछ होती है गर्दन ऊपर, ठीक उसी तरीके से इस आसन का आकार भी कुछ सांप की आकृति की तरह होता है। परंतु हम आपको बता दें, यह आसन करने से आपके संपूर्ण शरीर पैर से लेकर के बालों तक पूरे आसन को हम बहुत ही आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए हम सीधे चलते हैं भुजंग आसन की विधि पर। भुजंग आसन करने के लिए सबसे पहले आपको एक योगा मैट पर आराम से बैठ जाना है, यानी कि किसी चटाई या योगा मैट पे या कोई साफ सुथरी चद्दर पर आप बैठ जाएं। अभी मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी प्राणायाम, कोई भी आसन करने से पहले आप अपने मन की सारी वृत्तियों को एकाग्रचित होकर के बिल्कुल आसन को करने से पहले शांत हो जाएं, ताकि आप जिस आसन को करने जा रहे हैं उसका संपूर्ण लाभ आपको मिल सके। तत्पश्चात हम किसी भी आसन को जब करते हैं तो हमें उसका लाभ दुगना मिल जाता है। भुजंग आसन करने से पहले हमें पूर्णतः 2 से 2.5 मिनट तक ओम का उच्चारण और आराम से एक शांत वातावरण में बैठ जाना है, कुछ इस तरह। लंबी गहरी सांस लेने के बाद में हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।

ठीक इसी तरीके से दोनों हाथों की हथेलियों में घर्षण करने के बाद में हम सीधे अब अपने योग अभ्यास की ओर चलेंगे, यानी कि भुजंगासन की ओर। भुजंगासन करने के लिए आपको सबसे पहले योगा मैट पर पेट के बल लेट जाना है। अपने दोनों पैरों के अंगूठों और एड़ियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को सीने के सामने जमीन पर रख दें। अब श्वास लेते हुए हथेलियों पर दबाव डालें और सिर, छाती, नाभि तक पेट को ऊपर उठाएं। इस स्थिति में आसमान की तरफ देखें, यानी कि गर्दन को ऊपर उठाते हुए, और गर्दन को सीधा रखें। भुजंगासन करने के लिए जैसा कि बताया है कि सबसे पहले हम किसी मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद में हम सीधे अपने हाथों को पेट के पास रख देंगे ताकि हम ऊपर उठ सकें। पैरों को दोनों बराबर स्थिति में हाथों की सहायता से ऊपर उठते हुए पैर बिल्कुल सीधे और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल आकार यानी चंद्र आकार की तरह हो जाएगी। मध्यम गति से श्वास को लेते हुए मध्यम गति से श्वास को छोड़ें। भुजंग आसन कितनी देर करना चाहिए? शरीर को इस स्थिति में करीब 15 से 30 सेकंड तक रखें और श्वास की गति सामान्य बनाए रखें। ऐसा महसूस करें कि आपका पेट फर्श की तरह दब रहा है और लगातार अभ्यास के बाद आप इस आसन को 2 मिनट तक भी कर सकते हैं। भुजंग आसन में कितने कदम होते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ भुजंग आसन के चरणों के साथ एक मार्गदर्शिका भी दी गई है जो आपको कोबरा मुद्रा करने का तरीका सीखने में मदद करेगी। पहला, पहले पेट के बल लेट जाएं और माथे को जमीन पर टिकाएं। अपने पैर की उंगलियों को एक साथ रखें और अपने पैरों के तलवों को ऊपर की ओर रखें। भुजंग आसन को हम जिस भी तरीके से कर सकते हैं, हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। भुजंग आसन करने से हाइट भी बढ़ती है, यह एक बहुत ही बड़ा उपचार है। आइए अब हम जान लेते हैं भुजंग आसन करने के लाभ और सावधानियां। तो सबसे पहले हम लाभ जानेंगे। योग और आयुर्वेदिक का जन्म भारत में हुआ, यहीं से इनका प्रकाश पूरी दुनिया में फैलता चला गया। योग और आयुर्वेद दोनों विद्याओं को मनुष्य ने प्रकृति से सीखा है। प्रकृति में उगने वाली जड़ी बूटियों से खुद को स्वस्थ बनाने के लिए मानव ने आयुर्वेद का निर्माण किया, जबकि विभिन्न पशु पक्षियों की मुद्राओं से सीखकर मनुष्य ने योग विद्या भी रचना की। योग और आयुर्वेदिक सिर्फ मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए ही नहीं, वे सरल जीवन जीने का सही तरीका भी बताते हैं। जिस तरीके से मानव ने विभिन्न पशु पक्षियों की मुद्राओं से सीखकर योग सीखा, उसी में एक मुद्रा आती है भुजंगासन, जो कि एक बहुत ही, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि खतरनाक पशु यानी कि कोबरा, सांप की स्थिति से लेकर के हमने योग विद्या में उसे भी सीख लिया। तो है ना बढ़िया बात कि एक सांप की स्थिति को भी हम लोगों ने एक योग के माध्यम से आकृति का रूप दे दिया। तो आइए अब हम सीधे चलते हैं कि भुजंग आसन के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लें। जैसा कि बताया कि सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में 18वां भुजंग आसन है, जो कि सर्पासन, कोबरा आसन या सर्प मुद्रा का भी कहा जाता है। भुजंग आसन का अभ्यास खाली पेट ही करना चाहिए। भोजन आसन करने के वक्त कम से कम 4 से 6 घंटे पहले किया जाना चाहिए। इससे हमारे पेट में गए भोजन को पचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। पचे हुए भोजन से मिलने वाली ऊर्जा से आपको आसन करने में आसानी होती है। भुजंग आसन के अभ्यास का सबसे सही समय सुबह का होता है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप सुबह इस आसन को नहीं कर पाते हैं, तो आप इस आसन का अभ्यास शाम को भी कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बता देते हैं सावधानियां। भुजंग आसन का अभ्यास तभी करना चाहिए जब आपको ये सारी चीजें आपके शरीर में ना हो। हर्निया, पीठ में चोट, कानल टनल, सिर दर्द, पेट के निचले हिस्से में सर्जरी, अगर आपको नया नया आसन का अभ्यास करना शुरू किया है, तो आपको इस आसन को पूरी करने के लिए
अच्छे से कोशिश करनी चाहिए और बड़े ही आराम से करना चाहिए। आपकी कमर और गर्दन में दर्द अगर शुरू हो जाए तो इस आसन को ना करें। आसन के दौरान अपनी हाइट उतनी ही रखें जो आपको सूट करे। फिर से तय कर लें कि उतना ही आसन करें जितने में आपको कमर में और गर्दन में दर्द शुरू ना हो जाए। आइए अब हम इसके फायदे बता देते हैं, यानी अनुभव भुजंगासन के फायदे। रीढ़ की हड्डी में मजबूती और लचीलापन बढ़ता है। पेट के निचले हिस्से में मौजूद सभी अंगों के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। पाचन तंत्र, मूत्र मार्ग की समस्याएं दूर होती हैं। वजन को कम करने में मदद मिलती है। कमर का निचला हिस्सा मजबूत बनाया जा सकता है। फेफड़ों, कंधों, सीने और पेट के निचले हिस्से को अच्छा सा खिंचाव मिलता है, जिसके कारण से यह स्वस्थ रहते हैं। टेंशन दूर होती है। डिप्रेशन में भी इसका फायदा मिल सकता है। फेफड़ों और हार्ट की नसों के ब्लॉकेज खोलने में भी यह काफी मदद मिलता है। तो भुजंगासन योग विज्ञान के सबसे विविधपूर्ण आसनों में से एक है, इसीलिए ये योग मुद्रा इतनी महत्वपूर्ण बताई गई है। बहुत सारे फायदे बताए गए हैं और साथ ही साथ हमारे पाचन और प्रजनन तंत्र को भी मजबूत करता है। तो देखा आपने, हम सभी मिलकर के आज जो कि प्राणायाम और आसन हम लोगों ने किया वह है अनुभव भुजंगासन। तो इसी तरीके से हम कल फिर मिलेंगे एक नए शब्द, एक नए आसन के साथ में। तब तक दोस्तों, करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योगशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मेरे जहन में एक बात आई कि हमने बहुत सारे आसन प्राणायामों को हम सब लोगों ने मिलकर के किया है, लेकिन क्या कभी हम लोगों ने उन चीजों पर ध्यान दिया है जिसमें हड्डी नहीं होती है? सोचने वाला प्रश्न है, क्योंकि हमारे शरीर में कई ऐसे अंग हैं जिसमें हड्डी नहीं पाई जाती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है नाखून और बाल का। इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए, उस अंग के लिए कोई आसन या प्राणायाम बना ही नहीं है। बिल्कुल बना है। आसन प्राणायाम हमारे संपूर्ण शरीर के एक एक नस के लिए बना है, एक एक अंग के लिए बना है। आपको पता होगा कि मस्तिष्क में जितनी भी नसें होती हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी नसें होती हैं, उन सभी के लिए एक एक आसन और एक एक प्राणायाम बना है। 84 लाख जो जिया जून है, हम कई बार सोचते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये बात की जानकारी है? पतंजलि में 88,000 जो कि आसन और प्राणायाम बताए जा चुके हैं। तो आप खुद सोचिए, हमारे शरीर में एक एक अंग के लिए, एक एक नस के लिए यह प्राणायाम पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग में बताए गए हैं। अष्टांग योग में 8 नियम आप सभी को पता है। मैंने कई बार, हम लोग जब भी करते हैं योग के बारे में बात करते हैं तो कई बार मैंने बताए हैं। आप खुद सोचिए कि हर एक अंग के लिए प्राणायाम और आसन है। तो आइए उसी में से आज हम बात करने वाले हैं नाखूनों की आसन के लिए, नाखून के आसन अभ्यास के लिए योगासन। सबसे पहले तो हम बता दें, नाखूनों की पोषण हमें हमेशा से अपने आहार के रूप में करनी चाहिए, साथ ही संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, विटामिन बी, बायोटीन, आयरन, कैल्शियम नाखूनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कई बार फल तो खाते हैं, फलों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते कि कौन से फल को खाने के लिए हमें उसमें आयरन और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता मिल सकती है। नाखूनों को अगर आपको ठीक करना है, नाखूनों को अगर आपको चमकदार बनाना है, तो आपको नींबू का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। खाने में या फिर फलों के ऊपर और फल में सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर आप नाखूनों के लिए देखते हैं तो आपको केले का सेवन ज्यादा करना चाहिए। कैल्शियम की जो एक प्रचुर मात्रा केले में पाई जाती है और जो शरीर के साथ साथ नाखून को भी
चमक और मजबूती देने का काम करती है। तो आइए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे आसन जिसको करने से आप अपने उंगलियों और नाखूनों की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला उसमें आता है बालायम योग। बालायम योग का मतलब होता है नाखून रगड़ना। आपने इस चीज के लिए तो सुना ही होगा कि कई बार हम जब फ्री भी बैठे होते हैं, आप लोगों ने देखा है, या हम पतंजलि के अनुसार बाबा रामदेव जी को करते हुए देखा है कि कभी भी वो अगर किसी अभ्यास में भी बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो अपने नाखूनों को रगड़ते रहते हैं, उंगलियों के नाखूनों को रगड़ते रहते हैं। कहा जाता है कि ऐसे नाखूनों को रगड़ने से नाखूनों की जो चमक है वो तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ में आपके बालों की भी वृद्धि होती है। तो ऐसे आसन को उपयोगी होता है करना जिसको एक मात्र उपयोग से उसका जो असर है, उसका जो एक कह सकते हैं कि हमें लाभ है, वो दुगना मिलता है। पहले दोनों हाथों की उंगलियों के नाखूनों को आपस में रगड़ें। रोज 5 से 10 मिनट ये काम करना चाहिए। इससे आपको दो लाभ होंगे, आपके नाखूनों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी ठीक होगा, साथ ही साथ में आपके बालों में भी, इसमें बहुत ही ज्यादा इसका असर होता है जिसमें बाल और नाखूनों की जड़ों का रक्त संचार बढ़ता है। दूसरा आसन हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि है पवन मुक्तासन। पाचन तंत्र को मजबूत करता है, साथ ही साथ में अच्छा पाचन, अच्छे बाल और नाखूनों की भी, जितनी भी आप इस आसन को करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होता है। पवन मुक्तासन आसन को हम दिन में या फिर शाम को 2 बार, एक सुबह और एक शाम को हम कर सकते हैं। उसके बाद में हम तीसरा आसन करने जा रहे हैं जो कि है वज्रासन। खाने के बाद बैठना, कैसे बैठना है वो हम आपको बताते हैं। खाने के बाद बैठने के लिए जैसे हम पैर को फोल्ड कर लेते हैं, और जब भी हम इस आसन को करते हैं तो थोड़ा सा हमारे पेट में भी, जैसे कह सकते हैं कि हल्का सा एक दबाव होता है, लेकिन हमको उससे घबराना नहीं है। जब भी हम खाना खाते हैं, चाहे वो रात में हो चाहे वो सवेरे हो, हमें दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़ लेना है। साथ ही साथ हम जब बैठेंगे तो दोनों हाथों को अपने घुटनों पर मुट्ठी बांध लेंगे, यानी कि अंगूठे को अंदर कर लेंगे और अपनी 4 उंगलियों से उसको दबा लेंगे। भोजन के पाचन में यह बहुत ज्यादा मदद करता है। इससे शरीर में पोषक तत्व सही तरह से अवशोषित होते हैं, जिससे नाखून मजबूत होते हैं और हमें चमकदार नाखूनों के साथ साथ बालों का भी सही पोषण मिलता है। चौथा और महत्वपूर्ण आसन है सूर्य नमस्कार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नाखून मात्र को स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए सूर्य नमस्कार क्या जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण एक व्यायाम है, जो कि अगर आपने सूर्य नमस्कार सुबह कर लिया तो आपको कोई और आसन करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। यानी कि बहुत सारे आसनों के नाम हमने अभी आपको बताए, लेकिन सूर्य नमस्कार एक अपने आप में संपूर्ण व्यायाम, जैसे कहते हैं ना कि एक संपूर्ण पैकेज, हम अगर कुछ भी खाने के लिए कहते हैं तो हम एक बड़ी थाली को हमेशा से प्रेफर करते हैं कि उसमें 4-5 सब्जियां होती हैं, 2 तरह की रोटियां होती हैं, चावल होता है, सैलेड होता है, अचार होता है, रायता होता है, ठीक वैसे ही एक संपूर्ण थाली हम कह सकते हैं कि अपने शरीर के लिए एक यह संपूर्ण थाली का नाम इसलिए दिया क्योंकि सूर्य नमस्कार वाकई में एक संपूर्ण थाली का काम करता है। पूरे शरीर का व्यायाम, रक्त संचार और ऊर्जा संतुलन से नाखूनों पर सकारात्मक असर पड़ता है, साथ ही साथ में यह आपकी ऊर्जा को भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। पांचवा प्राणायाम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो की है अनुलोम विलोम कपालभाति। अनुलोम विलोम व कपालभाति हमने अपने अलग अलग सीरीज में बहुत बार आपको बताया है। जिन लोगों को भी अनुलोम विलोम कपालभाति के बारे में जानकारी नहीं है, हमारी एक योगा सीरीज भी YouTube पे है जिसे आप सर्च करके देख सकते हैं। अनुलोम विलोम की विधि, कपालभाति की विधि संपूर्ण रूप से एक एक स्तर पर बताई जा चुकी है।
अब आपको करना कब है ये बता दें। अनुलोम विलोम व कपालभाति सवेरे और शाम को। अगर आप शाम को समय नहीं दे पा रहे हैं तो सवेरे ही आप इसको कर सकते हैं। सुबह सवेरे अगर आप इस प्राणायाम को करते हैं तो आपको शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन और संतुलित ऊर्जा देता है। इससे नाखूनों में चमक और मजबूती के साथ साथ आपके संपूर्ण शरीर को एक अलग सी ऊर्जा प्रदान करता है। ये पांच प्राणायाम आसन जो कि आज हम लोगों ने किए, यह है नाखूनों की स्वस्थ आयु के लिए। कई बार देखा है कि नाखूनों में ना सफेद सफेद एक स्पॉट पड़ जाता है या फिर उसमें पैचेस पड़ जाते हैं, तो आप इन सारे प्राणायामों को आसनों को करें। उसके बाद में आप अपना जो आहार है वह संतुलित आहार लें, प्रोटीन युक्त लें, विटामिन बी युक्त लें, बायोटीन, आयरन, कैल्शियम, यह सब जरूरी होता है हमारे नाखूनों को स्वस्थ करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज नाखूनों के लिए बताए जाने वाले सारे योग प्राणायाम आप जरूर से करेंगे, सवेरे जरूर करेंगे योगशाला में आकर। तब तक फिर से मिलेंगे एक नए आसन के साथ, एक नई सीरीज के साथ। करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, ऐसे ही मॉनसून में योग करना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है और सावधानी पूर्ण हो जाता है। आइए जानते हैं कैसे, क्योंकि यदि अगर हम बहुत सारे प्राणायामों को हर रोज करते हैं, हमारा नित नियम होता है, तो हम बारिश के टाइम पर भी सोचते हैं कि हमारा उसमें गैप ना हो। मॉनसून एक ऐसी ऋतु है जिसमें हम हमेशा से सोचते हैं कि अगर बारिश हो रही है तो थोड़ा सा आज रुक जाते हैं, कल कर लेंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको कि मॉनसून में योग को जरूर से करना चाहिए। जो भाई बहन नियमित रूप से योग की योग पाठशाला में आते हैं, सुनते हैं और करते हैं, उनके लिए हर मॉनसून में हम कुछ न कुछ नया लेकर के भी आते हैं। लेकिन जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो लोग भी इस मॉनसून स्पेशल में योग

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाइयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: भरोसेमंद इलाज की तलाश में है
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: तुझे मेरे बारे में वो सब पता है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। You know you've been my best buddy since forever, right?

89.6 FM रेडियो ज्ञानस्थली आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन पर वक्त हो चला है 8:40 बस स्टूडियो क्लॉक और ये टाइम होता है आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल वाला प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा का। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और ऑफकोर्स अपनी अपनी सुबह में कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे, क्योंकि भैया सुबह जितनी खूबसूरत हुई है, बादलों का हल्का हल्का रंग और ठहरी हुई हर एक चीज़, इसी ठहराव के साथ आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आपके अपने मॉर्निंग वाले प्रोग्राम में एंड इसी के साथ आप सबको गुड मॉर्निंग गोंडा। तो कैसे हैं आप सभी? चलिए दोबारा सवाल कर लेते हैं ताकि आप चैट बॉक्स में आराम से जवाब दे सकें। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी मॉर्निंग जॉकी और अभी मौजूद हूं आप सभी के साथ आपकी अपने वाला स्टूडियो में। हर वेंसडे की तरह इस बार फिर से हमारी मुलाकात होती है मॉर्निंग के शो में, और स्पेशली हर मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही प्यारी और बेहद ही डीप पोइट्रीज, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। फिलहाल आज की पोइट्री ऑफ द डे जानना चाहेंगे कि आज की पोइट्री आपसे क्या कुछ कहती है, क्योंकि हम जब भी आते हैं हमारी पोइट्रीज, हमारी कविताएं आपको सिखाती हैं कुछ ऐसी बातें जो शायद हम भूल चुके हैं, जिसमें से हम जानते हैं कि कैसे किसी को लेट गो करना है, कैसे खुद को माफ़ करना है। और आज इसी कड़ी में जो मेरी पोइट्री है आपके लिए वो है ग्रेटिट्यूड, यानी कि आभार। तो भैया पोइट्री कुछ इस तरह से है कि ये जो नई सुबह का उजाला मिला है, हवाओं में बहता जो ये सिलसिला है, दिल से कहो आज का शुक्रिया, जो भी मिला है जितना भी मिला है, उन रास्तों को भी आभार करो जिन्होंने चलना हमें सिखाया है, उन कांटों को भी धन्यवाद कहो जिन्होंने संभलना हमें सिखाया है, जो है पास वो तो अनमोल है ही, जो दूर गए उन्हें भी दुआएं भेजें, इस जीवन की छोटी सी हर नियामत पर चलो आज खुलकर मुस्कुराएं और आभार भेजें। शिकायतें तो रोज़ ही घेरे रहती हैं, आज बस सुकून को गले लगाना है, जो है मेरे पास वो बेहद खूबसूरत है, यही सोचकर आज का दिन बिताना है। बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही गहरी बात के साथ आज का मॉर्निंग शो स्टार्ट हो चुका है। भाई हमारे साथ होता है ना ऐसा कि हर एक चीज़ की शिकायत तो हमें बहुत रहती है, कोई हमसे रूठ कर चला गया है, कोई हमसे दूर चला गया है, तो अक्सर हम शिकायत करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों है, काहे है, किस लिए है, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों। लेकिन जो हमारे पास है उन पर कभी एक निगाह उठा कर भी नहीं देखते, नज़र तक नहीं लगाते कि क्या वो जो हमारे पास है वो खूबसूरत है या नहीं है। और वैसे भी हमने कभी ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया, और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ को आभार देना चाहिए, भले ही वो कोई इंसान हो, भले ही आपके पास रखा आपका कोई सामान हो, भले ही कोई भी चीज़ क्यों ना हो, हमेशा उसे ग्रेटिट्यूड की नज़र से देखिए, उसे धन्यवाद कहें जो आपके पास है, उसको थोड़ा सा सराहें, उसकी थोड़ी सी अप्रिसिएशन करें, क्योंकि भैया शिकायतें बहुत हो चुकी हैं और आज के मॉर्निंग में शिकायतों को जो आपको घेरे बैठी है उनको साइड करके बस खुद को ये रिमाइंडर देना है कि जो आपके पास है, जो आप हैं, वो बेहद खूबसूरत है और आपको ज़रूरत नहीं किसी और चीज़ की, जो अभी तक है वो इतना प्यारा है, जो आप हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि खुद से शिकायत प्लस खुद के साथ कंपटीशन करना बंद कर देंगे, क्योंकि हर सुबह उठकर जो हम एक नई भाग दौड़ में लग जाते हैं बिना किसी ठहराव के, बिना किसी लम्हे को सोचे हुए, उसे धन्यवाद किए हुए, वो आज नहीं करने वाले हैं, आज खुद को थैंक्स करने वाले हैं। जो आपके पास है, जैसी सिचुएशन आपके पास है, उसको अपना शुक्रिया अदा ज़रूर करें, क्योंकि यही सिचुएशंस आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आती है। तो बहुत ही छोटी सी पोइट्री लेकिन बहुत डीप बातें कर गई है ये प्यारी सी छोटी सी बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वाली पोइट्री। फिलहाल के लिए आप बताइए कि आज आप किस चीज़ को सबसे पहले ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि आईने में जाकर सबसे पहले खुद को अपना आभार ज़रूर दें। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे पहले गाने की तरफ, यानी कि छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस तरफ, और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार आपके अपने वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। तो तैयार रहिएगा क्योंकि आज का प्रोग्राम होने वाला है काफ़ी ख़ास। हम जब भी आते हैं कुछ बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए लेकर आते हैं हर वेंसडे हर मॉर्निंग में, तो आज आपके लिए क्या होने वाला है बताएंगे लेकिन इस गाने के उस पार। और मुझे लगता है कि हमारी मॉर्निंग स्टार्टिंग एक बड़े ही गाने से होना चाहिए, बड़े खूबसूरत गाने से होना चाहिए, और वीर ज़ारा का आया तेरे दर पर दीवाना, इससे ज़्यादा खूबसूरत कहाँ हो सकता है।
चलिए आइए एंजॉय करते हैं, मिलते हैं इस गाने के उस पार। आप सुन रहे हैं आपका अपना मॉर्निंग शो रेडियो ज्ञान स्लीपर, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन पर, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुनती के साथ।

हाँ जी, आया तेरे दर पर दीवाना। इस बेहतरीन नगमे के बाद आप सभी का स्वागत है, वेलकम बैक दोस्तों। आप सुन रहे हैं आपका अपना मॉर्निंग का स्पेशल वाला प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा 89.6 FM रेडियो ज्ञानसली, आपके अपने गोना शहर की धड़कन पर आपके साथ मौजूद हैं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त मॉर्निंग जॉकी उन्नति। एंड हमने बात की थी सुबह सुबह कि आज क्या ही खूबसूरत मौसम हो रहा है ना, मतलब बादलों का रंग देखिए। स्पेशली अगर किसी को सुबह सुबह उठकर सूरज दादा के दर्शन ना करने पड़े गर्मी में, मेरे जैसा इंसान तो उछल पड़ता है कि अरे वाह, आज का दिन तो भैया सेट है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो मुबारक हो, हम आपके साथ हैं। फिलहाल हमने जब बात की थी खुद को आभार व्यक्त करने की, आभार देने की, खुद के साथ थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो करने की, इसके साथ इस खूबसूरत सुबह का एक व्यू लेने की, एंजॉय करने की, थोड़ा सा इसको और भी ज़्यादा फील करने की, तो कितने लोग गए थे खिड़की के पास देखने के लिए कि आज का मौसम सच में कैसा है। अब मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा लोग अभी भी अपने तकिए के अंदर मुंह डाल के बैठे होंगे कि अरे यार ये कौन है जो सुबह सुबह इतना चिल्ला रहा है, आफ्टर ऑल मुझे तो सोने दो ना। होता है क्योंकि सुबह सुबह की खूबसूरती एक तरफ और सुबह का सबसे बड़ा विलन एक तरफ, पता है वो कौन होता है? जी हाँ, वो होता है आपके फोन के अंदर बजने वाली एक कर्कश आवाज जिसे हम कहते हैं अलार्म, या सुबह सुबह बज के जो सपने की चूर चूर और मोटिवेशन रफू चक्कर करता है उसका कोई मैच ही इस दुनिया में कभी बना ही नहीं है। हर रात, हर वक्त, हर आखिरी रील के साथ ये सोचकर सोया जाता है कि अगली सुबह 6 बजे उठ के योगा जाएंगे, जिम जाएंगे, वॉक करेंगे, लाइफ बदल देंगे, इतिहास गवाह हो जाएगा कि देखो हमने क्या कुछ किया है। एक अलग लेवल का मोटिवेशन होता है क्योंकि रात की आखिरी रील में कहीं ना कहीं मोटिवेशन के बारे में जिक्र हो रही होती है। बट जैसे ही सुबह का 6 बजे का अलार्म बजता है, वैसे ही सारा मोटिवेशन रफू चक्कर टाटा बाय बाय होकर पता नहीं कौन सी दुनिया में चला जाता है। हमें सिर्फ एक चीज़ याद आती है कि 5 मिनट आउट, 5 मिनट का स्नूज बटन गवा के एक बार आउट सो लेते हैं। और ये 5 मिनट कब 15, कब 20, कब 25, कब आधा घंटा, कब 1 घंटा, और कब ये सुबह के 8 बजा देता है, ओ माय गॉड, नो आइडिया। फिर आँख खुलती है ऐसे जैसे कि हॉरर मूवी का सीन चल रहा हो, अचानक से आँख खुलती है, हड़बड़ी ही हड़बड़ी, और हड़बड़ी के साथ हमेशा एक चीज़ में मुफ्त में मिलती है, वो होती है गड़बड़ी। इधर का सामान गिर रहा है, उधर चाय उबल चुकी है, मम्मी पीछे चिल्ला रही हैं, प्रेस करने के लिए कपड़े रखे थे पता चला लाइट ही चली गई है, और अब उदास बैठे हैं कि आज तो बिना प्रेस करे कपड़े पहनने पड़ेंगे। भैया जिसने भी ना ये स्नूज बटन बनाया था वो बड़े ही जादूगर इंसान था, उसने हमें एक चीज़ तो बहुत अच्छी दी, वो ये है कि खुद को झूठी दिलासा कैसे देते हैं। जब भी हमारे पास कोई सिचुएशन होती है हम अक्सर एक झूठ के पीछे भागते हैं, जैसे कि हम अपने अलार्म के पीछे भागते हैं ना कि बस 5 मिनट और, जैसे 5 मिनट में तो हम पूरे 5 घंटे की नींद पूरी कर ही लेंगे, रात भर सोते नहीं हैं, सुबह 5 मिनट और सोचकर लगता है कि हो जाएगा हो जाएगा। और यही झूठा दिलासा हम अपनी ज़िंदगी में भी न जाने कितनी बार खुद को दिया करते हैं, हर बार यही सोचकर झूठा दिलासा देते हैं कि यार एक कोशिश और। हालांकि कोशिश करना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट कई बार कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अलार्म की तरह स्नूज बटन जो आप 5 मिनट का दबाकर सोचते हैं कि यार 5 मिनट और, 5 कब आधा घंटा गुजर जाता है, ऐसे ही ज़िंदगी में भी होता है। जब भी हम खुद को झूठा दिलासा देते हैं कि यार चलो एक बार और, एक साल और, पता चलता है कि वो जो वक्त था आपके पास मूव ऑन करने का, उस जगह से, उस सिचुएशन से, उस रास्ते को छोड़कर एक नए रास्ते की तरफ जाने का जो आपको आपकी मंजिल से मिलाने वाला था, उस रास्ते से भटक कर हम कहीं और बैठे हैं। और जब पलट कर देखते हैं तो लगता है यार आधी ज़िंदगी तो यूं ही निकल गई, जैसे कि 5 मिनट स्क्रू बटन दबाने के बाद देखते हैं कि ये 6:05 नहीं, सुबह का 8 बज रहा है, और अब भागना पड़ेगा कि नहीं ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, यानी कितनी दिमाग में ख्याल चल रहे होते हैं। और यही ख्याल तब भी आता है जब अपनी लाइफ को न जाने कहाँ कहाँ छोड़ देते हैं, ये सोचे बिना कि जो वक्त हम किसी पर ज़ाया कर रहे हैं, जो चीज़ें हम अपनी ज़ाया कर रहे हैं एक सिचुएशन को लेकर के, जब पलट कर देखेंगे तो बहुत रिग्रेट होने वाला है। इसीलिए कभी कभी कुछ चीज़ों को जैसी है वैसी ही छोड़ देनी चाहिए। किसी महान शख्स ने, यानी कि मैंने ही कहा था कि हर एक प्रॉब्लम का सलूशन उसके अंदर होता है, और अगर आपको सलूशन नहीं मिल रहा है उस प्रॉब्लम का तो इसका मतलब यही है कि वो प्रॉब्लम भी नहीं है, उसको वहीं छोड़ दो। चौराई का पहाड़ बना लिया जाता है उसको ना बनाया जाए, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। कई बार चीज़ों को वक्त देना ज़रूरी होता है। फिलहाल
आइए इस झूठे दिलासे को खत्म करते हैं। ये जो हमने एक आईना सा तैयार कर रखा है झूठ का, इसको तोड़ते हैं और कुछ चीजों को आज एक्सेप्ट करते हैं। करेंगे ना मेरे साथ? हाँ हाँ, मुझे पता है करेंगे करेंगे। हालांकि अभी अभी तो कर लेंगे क्योंकि बहुत मोटिवेशनल बातें हो गई हैं, अगले दिन फिर भूल जाएंगे क्योंकि उनमें से आप अकेले नहीं हैं। हर वो शख्स जिसके अंदर इमोशन है, जिसके अंदर जज्बात है, जो इंसान है, हर इंसान यही गलतियां करता है। सोच तो लेते हैं हर मोटिवेशनल रील के साथ कि हम करके दिखाएंगे, हम किसी से डरते थोड़ी ना है, और अगली ही रील पे याद आता है, अगली शेयर पे याद आता है कि नहीं यार, लाइफ बहुत मैसी है। हालांकि लाइफ का मैसी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लेन जगह तो वैसे भी आपको खूबसूरत नहीं लगती, इसलिए तो आप पहाड़ों पर भागते हैं, है कि नहीं? चलिए फिलहाल जब तक के लिए आप मुझे बताइए अपना थॉट क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्या आज किसी चीज़ को आप रोकना चाहेंगे, दिल में जो आपके ये उथल पुथल मची हुई है, जो ख्यालों का भाग दौड़ लगा हुआ है, क्या इस पर आज कोई ठहराव होने वाला है, या फिर 5 मिनट का स्नूज बटन लगा कर, एक और रील देख कर, थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करके एक रात में फिर से उसी चीज़ को बैठ कर रोना है कि अरे यार, पास्ट की चीज़ों को छोड़ देते हैं, जो आने वाला फ्यूचर है उसकी टेंशन को छोड़ देते हैं और प्रेजेंट को थोड़ा सा जी लीजिए, क्योंकि प्रेजेंट फिर वापस से कभी नहीं आता। और एक कल बहुत खूबसूरत सा कोट पढ़ा था और उसमें लिखा था कि जब कोई इंसान अपनी जान गंवाता है या फिर जब वो मौत को गले लगाता है, तो सबसे पहले जो चीज़ वो खोता है वो उसका वर्तमान होता है, ना कि पास्ट, ना कि फ्यूचर। इसीलिए जब आपके पास जिंदगी है तो जिंदगी में भी सिर्फ वर्तमान को गले लगाइए, आने वाले फ्यूचर की टेंशन या छूटा गया पास्ट का स्ट्रेस, इन दोनों से थोड़ा सा दूरी बनाइए, आज के तोहफे पे मुस्कुराइए और तोहफे को गले से लगाइए। फिलहाल लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इसके बाद सीधा आपके चैट बॉक्स में चलेंगे, आपके मैसेजेस, आपके पैगाम को देखने। इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर ली हैं, तो अब आइए थोड़ा सा आपको 90s टच में कुमार सानू की आवाज़ में एक ज़बरदस्त सॉन्ग सुना देते हैं, एक ऐसी फिल्म जिसके सारे के सारे गाने हिट हैं। इन्जॉय करते रहिए, हम मिलेंगे अगले गाने पर, तब तक है थोड़ा सा डिस्को वाला डांस तो बनता है ना बॉस, क्योंकि ये दिल है आशिकाना और मौसम है बड़ा सुहाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुन रहे रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोडा में, आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो जॉकी उन्नति, एंड आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और फिलहाल के लिए मेरा ख्याल है कि अब वक्त हो चला है आपकी अपने चैट बॉक्स की तरफ।

रुख करने का, बिकॉज चैट बॉक्स में हमारे कुछ मैसेजेस आ चुके हैं, कुछ प्यारे प्यारे लिसनर्स ने हमें अपने पैगाम भेज दिए हैं, तो उन पैगामों को पढ़ लेना चाहिए, उन विशेस को देख लेना चाहिए ऑफ कोर्स। और अगर अभी तक आपने अपनी हाजिरी नहीं लगाई है, आपने अपनी विशेस नहीं भेजी हैं, तो इंतज़ार किस बात का। हम आपको बता दें कि एप्लीकेशन पर मिलता है आपको ये चैट बॉक्स, जिसके अंदर आप हमें अपने मैसेजेस, अपने थॉट, अपने POVs भेज सकते हैं। और एप्लीकेशन आपको मिलता है प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर रेडियो 89.6 FM के नाम से, रेड एंड ब्लैक आइकन में, रेड एंड ब्लैक, ओके। एंड इसी के साथ हमारे चैट बॉक्स में जो पहला मैसेज आज के शो में आया था, वो किसी और का नहीं, हमारे कमल नैन जी का ही था। लेकिन लेकिन लेकिन जो विश सबसे पहले आई है वो हमारे आशु मिश्रा जी की है फ्रॉम लखनऊ, और उन्होंने लिखा है, सुप्रभात। सुप्रभात आपको भी, जिनके साथ बैठने से या दो पल बात करने से मन को सुकून मिले और चेहरे पर मुस्कान आ जाए, वही लोग हमारी जिंदगी के सबसे खास अपने होते हैं। आपने एकदम सही फरमाया, और मुझे लगता है जिनके साथ बैठने से प्रॉब्लम्स थोड़ी कम लगे, लगे कि जिंदगी बढ़िया हो चुकी है, अब मेरे पास कोई स्ट्रेस नहीं है, उनके साथ कुछ लम्हे जिंदगी से चुरा लेने चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपको वक्त और लम्हे कभी तोहफे में नहीं दे रही। प्रॉब्लम्स हमेशा आपके पीछे हैं, लेकिन जहां आपको सुकून मिलता है, भले ही वो आपको खुद के साथ मिले, किसी और के साथ मिले, या किसी ऐसी जगह पर मिले जहां शायद सिर्फ आपको पता हो, तो उस जगह पर जाने के लिए, उस लम्हे को जीने के लिए जिंदगी से कुछ पल चुरा लेने चाहिए। थोड़ी चालाकी तो बनती है ना। एंड इसके बाद लिखा है हमारी आशु जी ने ही, ओके, वेव किया है, यानी कि हेलो किया है, कैसे हैं आप, आपका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं हम गुड मॉर्निंग गोना में। क्रिकेट लवर यानी कि मंजू जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट मैम, गुड मॉर्निंग टू यू माय स्वीट हार्ट लिसनर, कैसी हैं आप, आपका भी वेलकम करते हैं हम मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोना में। कमल नैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने हमें बहुत सारे इमोजीज भेज दिए हैं। सॉन्ग का नेम था आया तेरे दर पर दीवाना, और उन्होंने अपने कमाल कमाल के पैराशूट से उड़ते हुए इमोजीज भेजे हैं। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं पैराशूट पे उड़ते हुए, मुझे जरूर बताइएगा, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपकी मंजिल क्या है। एंड इसके बाद लिखा है आपने, गुड मॉर्निंग आज मैम, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, आपकी सुबह भी बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज का मौसम हो रखा है फिलहाल। क्रिकेट लवर ने लिखा है, यानी कि मेरी मंजू जी ने लिखा है, जिम्मेदारी जिसे होती है वो उनको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती मैम, नींद ही नहीं पड़ती मुझे, मुझे तो घर पर सबके लिए लंच देना रहता है, भाई लोगों के लिए। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, जिनके पास जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं अक्सर उनकी नींद की रातें छोटी होती हैं, क्योंकि उन्हें रात भर यही सोचकर नींद नहीं आती कि कल सुबह कितना कुछ करना है, किसी के लिए लंच पैक करना है, किसी के कपड़े प्रेस करने हैं, किसी को पैसे देने हैं, कहीं की EMI चुकानी है। बट इन सब के बीच में आप कभी भी ये ना भूलें कि ये हर दिन हर लम्हा आपके लिए भी है, कुछ वक्त खुद के लिए ज़रूर निकालें, और स्पेशली रात में अपनी नींद के साथ कोई भी छेड़खानी ना करने दें। हाँ, जिम्मेदारियों के तले भले ही आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जब भी आप सोएं तो गहरी नींद ज़रूर लें, कुछ लम्हे अपने लिए ज़रूर निकालें, सुकून के पल अपने लिए ज़रूर निकालें अपनी इस भागती दौड़ती गिरती पड़ती ज़िंदगी में, ताकि आप खुद को भी समझ सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम सबको समझाते समझाते, सबको समझते समझते, अगर किसी चीज़ को सबसे पहले समझना बंद कर देते हैं, वो होती हैं हमारी खुद की चीज़ें। तो ऐसा ना करें, आप खुद को समझें, और ऑफकोर्स दूसरों को भी समझें, समझाएं, समझने दें। कमल नैन जी ने अगेन हमें बहुत सारे इमोजीज भेज दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड क्रिकेट लवर ने भी हमें बहुत सारे इमोजीज भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं, ज़रूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन ज़रूरतों के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत लाइन, बहुत ही चंद लम्हे शब्दों में आपने लिख दिया है। एंड साथ ही आपने लिखा है, सुप्रभात। सुप्रभात आपको भी, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोना में। एंड इसके बाद आपके मैसेज लगातार आ रहे हैं। महेंद्र दीपन जी जो मैं राजस्थान से सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू,
कैसे हैं आप? आई होप आप भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपके दिन की शुरुआत भी खूबसूरती के साथ हुई होगी। फिलहाल अब एक वक्त है छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक का, लेकिन इस ब्रेक के उस पार आएंगे और बात करेंगे तो 30 मिनट रूल की। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है बॉस, सवाल ये है कि सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हैं? कॉफी के पीछे भागते, चाय के पीछे भागते, फोन चलाने लग जाते हैं, या सुबह उठकर आधे घंटे यानी कि 30 मिनट आप अपने लिए निकालते हैं? जो भी करते हो आप सुबह उठकर सबसे पहली चीज, वो चैट बॉक्स में जरूर से बताएगा। और ये सवाल हमने क्यों पूछा है ये हम आपको बताते हैं, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार। तो गंगूबाई से सुनते रहिए मेरी जान, और उससे पहले आप इंजॉय करते रहिए हमको दीवाना कर गए फिल्म से मेरे साथ चलते चलते, ये कहाँ ठहर गए तुम? आइए इंजॉय करते, आप सुन रहे गुड मॉर्निंग गोंडा विद राजू रति 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर।

0: हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपके अपने वाले मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोडा में। मैं हूँ आपकी अपनी आर छे उन्नति और ये है आपका अपना रेडियो ज्ञान 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने किया था आपसे एक सवाल। सवाल कुछ यूं था कि आप सुबह उठकर करते क्या हैं, सुबह सबसे पहले उठकर क्या करते हैं? फोन चलाते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, या फिर बाहर एकदम बॉलीवुड स्टाइल में अंगड़ाइयां लेते हुए खिड़की खोल कर देखते हैं कि वाह व्हाट अ मॉर्निंग। हालांकि ये सपना सपना ही रह गया मेरा, क्योंकि घर के जिस कमरे में हम सोते हैं उसकी खिड़की ही नहीं खुलती कभी, हम खोलते ही नहीं है ना। फिलहाल अगर आप भी उनमें से एक हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले फ़ोन चलाते हैं, तो आप मुबारक हो उन 80% लोगों में से एक हैं जो हर रोज़ सुबह उठकर यही काम करते हैं। बट आपको पता है आपके मॉर्निंग के 30 मिनट इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि अगर आप उन्हें बदल लेते हैं तो आपका पूरा दिन सेट हो जाता है। जी हाँ, आपको हम बता दें कि साइंस में इसे कहते हैं द फर्स्ट 30 मिनट रूल, यानी कि पहले दिन की शुरुआत का पहला 30 मिनट का नियम, जो आपके दिन की शुरुआत, आपकी जिंदगी में बदलाव दोनों ला सकता है। अगर आपकी मॉर्निंग शुरू होती है फोन चलाने से, तो आप प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब भी हम फोन के अंदर होते हैं, एक रील और एक पोस्ट और एक शॉर्ट्स और ये देखते देखते कब वो 30 मिनट हमारा आधे घंटे में बदल जाता है हमें समझ नहीं आता। इससे हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, स्पेशली हमारे मेंटल हेल्थ पर, हमारे डाइजेशनल हेल्थ पर, दोनों में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले उठ के करना क्या होता है? अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, अपने मेंटल हेल्थ को लेके सीरियस हैं, तो द फर्स्ट 30 मिनट रूल आपके लिए होता है। यानी कि सुबह के उठने के बाद पहले 30 मिनट में आपको क्या कुछ करना है और क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, चलिए बता देते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपकी आंख खुल चुकी है और आपकी दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो सबसे पहले जो आपको नहीं करना है वो है कि फ़ोन नहीं चलना है, मोबाइल फ़ोन को हाथ में पकड़ कर इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन को चेक नहीं करने जाना है कि किस किस ने DM कर दिया, कल जो डाली थी मैंने रील उसको कितने लोगों ने लाइक कर दिया, कितने कमेंट्स आ गए, किसको रिप्लाई देना है, क्या मैं वायरल हुई कि नहीं हुई, ये सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ दीजिए। सोशल मीडिया को टाटा बाय बाय कर दीजिए। ईमेल या फिर खबरों से दूर रहिए, बिकॉज सुबह सुबह आपको ज़रूरी नहीं है कि हर खबर खूबसूरत मिले। कभी कभार हमारे जो ईमेल्स होते हैं, जो खबर हमें सुबह सुबह मिल रही होती है, वो बड़ी दर्दनाक होती है। और सोचिए अगर आपकी मॉर्निंग की पहली ही चीज़ किसी हादसे से शुरू होगी, तो आपका बाकी का दिन कैसा जाएगा? आपका दिमाग घूम घाम कर उसी एक जगह पर अटक जाता है और हमारे दिमाग में पूरे दिन वही चलता है। इसीलिए सुबह सबसे पहले उठकर मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, ईमेल और ख़बरों से दूर रहना चाहिए। इस नियम का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि आपकी दिन की शुरुआत दूसरी चीज़ों से हो, जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले होनी चाहिए, जिनके लिए आपको काम करना है। तो करना क्या है ये भी चलिए बता ही देते हैं। नो फोन जागने के बाद कम से कम आधे घंटे तक स्क्रीन को हाथ ना लगाएं। सुबह उठते ही सीरियल्स लगाकर ना बैठ जाए, सुबह उठते ही फेसबुक ना खोल लें, सुबह उठते ही इंस्टाग्राम ना चलाने लगे। स्क्रीन से जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बनाए, इससे होता है आपका स्ट्रेस कम। इसके अलावा सुबह उठते ही जैसे आप नोटिफिकेशन देखना शुरू करते हैं, आप गिनना शुरू करते हैं कितने व्यूज़, कितने लाइक, कितने कमेंट्स, इससे आपका स्ट्रेस बहुत तेज़ी से बढ़ता है और आपका दिन पूरा टेंशन में ही गुजर जाता है। तो करना क्या है? करना है सुबह उठते ही सबसे पहले आपको पीना है गुनगुना पानी। जी हाँ, क्योंकि रात भर 7 से 8 घंटे आपकी बॉडी रेस्ट मोड पर होती है, आराम से आप सो रहे होते हैं। इस दौरान आप तो सो जाते हैं लेकिन आपका शरीर अभी भी वर्क पे लगा होता है, काम पे लगा होता है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपका दिल काम कर रहा है, आपकी किडनी को भी ज़रूरत है पानी की। तो सुबह उठकर सबसे पहले लगभग 2 ग्लास पानी ज़रूर पिए। यूँ तो लोग कहते हैं कि 1 लीटर पीना चाहिए, लेकिन मुझे पता है सुबह सुबह खाली पेट 1 लीटर पानी पीना किसी किसी के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है। तो कोशिश करें 1 से 2 ग्लास पानी पीने की, वो भी हल्का सा गुनगुना, चाहे तो आप उसमें शहद मिला लें। और अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको शहद की स्मेल से या खाली पेट शहद पीने से वॉमिटिंग होती है, नौशिया सा फील होता है या उन्हें कोई भी इश्यू आते हैं, तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं इन सारी चीज़ों को मिलाने की, आप नॉर्मल सादा पानी पी सकते हैं। इसके बाद आपको करनी है हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग। जी हाँ, कई बार होता है ना कि सुबह उठते हैं और हमें बहुत भारी सा महसूस होता है, हमारा डाइजेशन ठीक से काम नहीं कर रहा और पूरा दिमाग वहीं पर रहता है कि आरा सुबह सुबह फ्रेश नहीं हो पाए, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करने पर ध्यान देना चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, बॉडी को थोड़ा मूव करना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा मेडिटेशन, 5 मिनट अपने दिमाग को सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स में ही घुमाना है। सुबह उठ के रात की टेंशन लेके नहीं चली जानी है कि क्या हो गया था, रात में हमने किसी से लड़ाई कर ली थी, हम भिड़ चुके थे किसी से और अब फिर से वही लड़ाई हमारे दिमाग के अंदर है, ऐसा ना करें। सुबह उठकर 5 मिनट मेडिटेशन करें, खुद को कुछ 5 शब्द बोले जो कि अच्छे हों, पॉजिटिव हों, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका दिमाग आपकी हर एक बात को सुनता है और उसको याद भी रखता है। तो आप क्या बोलते हैं पूरे दिन में, ये हर एक चीज़ सुनी जाती है, याद रखी जाती है। भले आपको लगता है कि आप भूल चुके हैं, बट ऐसा नहीं है, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा चीज़ों को याद रखता है। आप सुबह उठकर एक डायरी लिख सकते हैं, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, क्या सबसे पहले आपको अपना बिस्तर ठीक करना है, सबसे पहले चाय बनानी है, किसी के लिए लंच प्रिपेयर करना है, खुद के लिए कुछ बेहतर करना है, वर्कआउट करना है, कुछ खाना है बेहतर, आप उस चीज़ को अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिए और उसको लिखिए। लिखते ही उस पर टिक कीजिए कि ये मेरा काम हो चुका है। सुबह सबसे पहले आप अपना बिस्तर ठीक कीजिए, खुद को फ्रेशअप कीजिए, ब्रश कीजिए, पानी पीजिए और ख़ुद को मेडिटेट पोजीशन में लेकर जाइए। इन सारे कामों को करने के बाद लगभग आपको 30 से 1 घंटा ऑलमोस्ट हो ही चुका होगा। देन नाउ आप अपनी दिन की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आप उन्हें शुरू कर सकते हैं। अगर द फर्स्ट 30 मिनट रूल ऑफ फॉलो करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपके स्ट्रेस लेवल पर, आपके एंजाइटी पर बहुत तेज़ी से गिरावट आती है, ड्रॉप आता है। बिकॉज मेन चीज़ें जो हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है वो ये थॉट्स होते हैं, वो ये स्क्रीन होती है जो सुबह उठकर सबसे पहले हम देखते हैं, वो खबरें होती हैं जो हम न्यूज़ चैनल पर देख लेते हैं, अखबारों में पढ़ लेते हैं और हमें लगता है कि भैया यही तो है सब कुछ। ऐसा नहीं करना है, 30 मिनट खुद के लिए देने हैं, 30 मिनट अपने लिए निकालने हैं। क्या आप ज़िंदगी से 30 मिनट भी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना, तो कोशिश करते हैं। कल सुबह जब भी उठेंगे तो सबसे पहले स्क्रीन नहीं, चाय की तरफ नहीं, पानी की तरफ जाएंगे, स्क्रीन की जगह पर मेडिटेशन करेंगे, खबरों की जगह पर खुद को अच्छी बातें कहेंगे और एक थैंक जरूर कहेंगे। किसको? सुबह को, क्योंकि हर सुबह एक नई उम्मीद की किरण के साथ आती है, तो एक थैंक तो उसको बनता है ना बॉस। फिलहाल आप बताइएगा आप सुबह उठकर क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो सुबह उठकर सबसे पहले 2 ग्लास गर्म पानी पीकर आ चुकी हूँ। आपने पानी पिया क्या अभी तक? नहीं? चलिए एक छोटा सा वाटर ब्रेक लेकर आते हैं। अब मैं इस गाने के उस पार सुरभि चौहान की आवाज़ में सुनते रहिए, आजा नच ले मेरे यार तू नच ले। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार आपके अपने वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपके लिए बहुत सारी बात है और हमारा अभी तक इंस्पायरिंग सेगमेंट बाकी है जिसके अंदर कुछ ऐसी कहानियाँ होने वाली हैं जो आपको बहुत मोटिवेट करेंगी। क्या है, कौन सी है, बताएंगे लेकिन इस वाटर ब्रेक और म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार।
1: Dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, d

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
2: गोंडा शहर की धड़कन।
3: प्राण प्रिय

हां जी, तो एक बार वापस से स्वागत है, वापस से वेलकम है आप सभी का आपकी अपने मॉर्निंग के स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोडा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आर चुनौती, मौजूद हूं आप सभी के साथ और ये है आपका अपना रेडियो ज्ञान असली 9.6 FM गोडा शहर की धड़कन। और अगले सेगमेंट पे चलने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि क्या आपने कभी इमेजिन किया है जिसके हाथ और पांव ना हो वो भी स्विमिंग में गोल्ड ला सकता है? बताइए बताइए।

भैया कोई ऐसा भी हो सकता है क्या कि जिसके पास हाथ ना हो, जिसके पास पांव ना हो, वो इंसान आगे जा कर के पैरालंपिक्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल लेकर आए, जो तैर सके। हमें लगता है तैरने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है हाथ पैरों का होना, जो कि है भी। अगर किसी के हाथ नहीं होंगे तो वो तैरेगा कैसे? ऑफ कोर्स डूब जाएगा। बट कई लोग इतनी हिम्मत भी रखते हैं कि जब सब कुछ उनके अपोजिट में होता है, जब सब कुछ उनके लिए उल्टा होता है, तो वो उस उल्टी दुनिया को भी सीधा करना जानते हैं। आज के इस इंस्पायरिंग सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जो आपको जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने की हिम्मत देते हैं। हमें लगता है कि हमारे लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन तब मुलाकात होती है हमारी इन कहानियों के ऐसे कैरेक्टर से, ऐसे लोगों से, ऐसी पर्सनैलिटीज से, जो हमें यह सिखाते हैं कि ज़िंदगी किसी के लिए कितनी ही स्ट्रगल वाली क्यों ना हो, कितनी ही ज़्यादा ख़तरनाक, खौफनाक, दर्दनाक क्यों ना हो, अगर आप में हिम्मत है तो आप ज़िंदगी के हर एक पहलू को, हर एक हिस्से को अपने लिए बदल सकते हैं। और इसी कड़ी में आज मेरे पास एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने बचपन में ही पोलियो की वजह से अपने हाथ और अपने पांव दोनों गवा दिए थे। ना उनके पास हाथ थे, ना उनके पास पैर थे। एज यूजुअल ऐसे लोगों को हमारी सोसाइटी में बहुत ही नीची नज़रों से देखा जाता है। ये कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी में शायद कुछ नहीं कर सकते, शायद ये पूरी ज़िंदगी किसी पर बोझ रहने वाले हैं। जब भी हमारे पास कोई ऐसे स्पेशल लोग आते हैं तो हमेशा हम उन्हें एक अलग निगाह से देखते हैं, एक तरस भरी निगाहों से, एक हमदर्दी के साथ। बट ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान इस चीज़ के लिए भूखा हो। कुछ लोग बस जिंदगी जीना चाहते हैं बिल्कुल एक आम इंसान की तरह, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं, यहाँ तक कि जब राष्ट्रपति भवन में लोग उन्हें उतारने के लिए गार्ड्स बुलाते हैं कि चलिए आपकी मदद करते हैं, बिकॉज आपने अभी अभी पद्मश्री जीता है, अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है, उस दौरान भी वो बस ये कहकर रोक देते हैं कि मुझे सहारा नहीं, बस जगह चाहिए लोगों के बीच में एक आम जिंदगी जीने का। तो कैसा लगता है? हमेशा हम ऐसे लोगों को, या फिर हमारे घर में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो लोगों से थोड़ा अलग है, थोड़ा हटकर है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, वो शैतानी बहुत कर रहा है, या उसको कुछ भी ऐसी एबिलिटीज हैं जो लोगों को उससे अलग बनाती है, तो हम उसे देखते हैं ना कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसका भविष्य कुछ नहीं है। बट ऐसा नहीं होता, और इसका जीता जागता सबूत मेरी इन कहानियों में आपको जरूर से मिलता है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की जिन्हें 2024 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मात्र 11 महीने के थे वो जब पोलियो के कारण उन्होंने अपने दोनों हाथ, दोनों पैर गवा दिए थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करके अपनी एक कंपनी खोली, 500 से ज़्यादा अधिक विकलांग लोगों को, ऐसी स्पेशल एबिलिटी वाले लोगों को रोजगार दिया, ये सोचकर कि शायद उन्हें कोई नहीं देने वाला। 500 से ज़्यादा लोग उनकी कंपनी में नौकरी करने लगे, और इसके बाद वक्त आया 2002 का। 2002 में जब पैरालंपिक्स चल रहे थे, उस वक्त किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि उस वक्त एक ऐसा इंसान आएगा और पानी में तैर कर गोल्ड ले जाएगा। अब आपको बता दें, 2002 में पैरालंपिक्स के शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक और तैराकी में रजत पदक जीता था। उन्होंने 500 से अधिक लोगों को रोजगार दिया, एंड न जाने कितने लोगों की मदद की। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी जी ने उन्हें पुरस्कार भी दिया था। मंच पर उनका संदेश बस इतना ही था कि हमें सहानुभूति नहीं, हमें अधिकार चाहिए, आप हम पर तरस मत खाइए, बस हम जैसे हैं हमें वैसे ही अपना लिया जाए, हमारे लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जो अधिकार एक आम इंसान के पास ज़िंदगी जीने के लिए होते हैं, वही अधिकार मुझे भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए। क्या इतना भाई, इतना ज़्यादा महंगा है, इतना ज़्यादा मुश्किल है हमें लोगों को पहचान देने के लिए? क्या हमें पहचान देने के लिए ज़रूरी है उस इंसान को हमारी कैटेगरी में एकदम सही साबित होने के लिए, हमारे स्टैंडर्ड्स पे सही उतरने के लिए?
खूबसूरती का एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, हर एक चीज में हमने अपने हिसाब से एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। हमें लगता है जिसकी आंखें बड़ी हैं, बाल लंबे हैं, चेहरा गोरा है, वही खूबसूरत है। क्यों? क्या काला रंग खूबसूरत नहीं होता? या जिसके सब दोनों हाथ पांव हैं, वही एक सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार रखता है? जिनके पास नहीं है, क्या उन्हें अधिकार नहीं? क्या वो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते? या जो बच्चा जो पढ़ाई में पीछे है, शायद पढ़ नहीं पा रहा, तो क्या वो बाकी बच्चों की तरह आम जिंदगी जीने के लायक नहीं? उसे हमेशा टॉन्ट क्यों मिलता रहता है? उसे हम ताने देते रहते हैं, तेरा क्या होगा, तेरा तो कोई भविष्य नहीं है, तुम तो कभी करियर बना नहीं पाओगे, तुम तो बोझ बनकर रह जाओगे। क्या ये सब कहना शोभा देता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल मेरी इस कहानी के जो मेन किरदार थे, उनका नाम था K.S. राजेंद्र। नाम याद रखिएगा, K.S. राजेंद्र, एक स्विमर जिनके दोनों हाथ और पांव नहीं है, जिन्होंने कभी जिंदगी के सामने घुटने नहीं टेके। हाँ, घुटने के बल चल लिए वो उन्हें मंजूर था, बट किसी से तरस भरी निगाहों से मदद नहीं मांगी कि तुम मुझ पर तरस खाओ, सहानुभूति दिखाओ। उन्होंने अपने अधिकार की बात की, अपने जैसे न जाने कितने लोगों की मदद की, उन्हें रोजगार दिया। अगर आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है ना जो लोगों से थोड़ा भी अलग है, तो ये मत सोचिए कि वो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता। ऐसे हजारों लोग हैं मेरे पास जो इस चीज को प्रूव करते हैं कि अलग होना गलत नहीं होता, इवन और स्पेशल होता है। भीड़ से जुदा होना बहुत खूबसूरत होता है। बस थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, थोड़ा सी मोहब्बत, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा अपनापन और उनके अधिकार, इतना काफ़ी होता है एक इंसान को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए। फिलहाल आइए लेते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, और आप K.S. राजेंद्र के बारे में क्या कुछ सोचते हैं चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंस्पायरिंग सेगमेंट में अगली कहानी किसकी होगी बताएंगे ज़रूर, लेकिन इस कहानी के इस बार श्रेया जी की आवाज़ में सुनते रहिए कृष्णा कॉटेज से सुना सुना, बेहद ही रोमांटिक गाना आपके अपने गुड मॉर्निंग को टमे।

हाँ जी, तो एक बार वापस से वेलकम है आप सभी का आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरची उन्नति, और ये है आपका अपना रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम। रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोडा शहर की धड़कन धड़कन धड़कन धड़कन। फिलहाल इंस्पायरिंग सेगमेंट में एक बार वापस स्वागत कर लेते हैं, और आज की हमारी जो पहली कहानी थी वो थी हमारे KS राजेंद्र के ऊपर। लेकिन अब जो अगली कहानी है वो एक ऐसी टीचर की है जो अपने बच्चों को किताबों से नहीं असल जिंदगी से पढ़ाती है। चलिए इमेजिन कीजिए, आपका 5 साल का बच्चा, 8 साल का, 10 साल का, जितने भी बच्चे इस वक्त स्कूल जा रहे हैं, अगर उन्हें किताबी दुनिया से निकाल कर असल जिंदगी में भेज दिया जाए, अगर कोई टीचर उन्हें किताबों का ज्ञान नहीं, रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है, जिंदगानी जी कैसे जाती है, इसका ज्ञान देने लगे, अगर वो स्कूल की बिल्डिंग के अंदर क्लासरूम में चेयर्स पे बैठाकर, सीट्स पे बैठाकर नहीं, बल्कि आपको फैक्ट्री में पंचर बनाने वाले के पास, चाय बनाने वाले के पास, ईंटे बनाने वालों के पास, सिलाई कढ़ाई करने वालों के पास, इनके पास ले जाकर आपको ज्ञान देने लग जाए तो कैसा लगेगा? आप अगर अपने लेवल पर सोचें, आप सोचें कि अगर आप स्कूल जब जाया करते थे या अभी भी अगर आप जाते हैं, तो जो आपके टीचर हैं वो आपको स्कूल की चार दीवारी के अंदर कैद ना कर करके आपको खुले आसमान के नीचे बैठे लोगों को देखकर कुछ सिखाने लग जाए, वो हर हफ्ते आपको एक ऐसी जगह लेकर जाए जहां आपसे एक नई सीख आप लेकर आए, आप अगले सैटरडे या आने वाले सैटरडे में अगर आपको आपके टीचर कहें कि चलो आज हम सीख के आते हैं पंचर कैसे बनाया जाता है, चलो आज सीख के आते हैं फैक्ट्री में काम कैसे होता है, चलो आज की किताबें बंद करते हैं और देखकर आते हैं कि सिनेमा हॉल में टिकट कैसे बुक की जाती है, चलो ये सब छोड़ो, आज चलते हैं मॉल में शॉपिंग करते हैं और अपना अपना बिल तुम सब खुद करोगे, तुम भी तो सीखो बिलिंग कैसे की जाती है, सामान रिटर्न कैसे किया जाता है। आज मैथ के क्वेश्चंस को साइड में रखकर ये देखते हैं कि नोट कैसे गिने जाते हैं, पैसे कैसे गिने जाते हैं। आज 2+2 ना करके ये देखते हैं कि जब हम पैसों को जोड़ते हैं, संभालते हैं, तो उन्हें सेव कैसे किया जाता है, सेविंग्स में कैसे डाले जाते हैं। आज साइंस में कोई नया टेस्ट नहीं, बल्कि सीखते हैं कि जो मास्टर जी बैठकर सिलाई कर रहे हैं और उनके साथ जो बैठे हुए लोग कढ़ाई कर रहे हैं वो कैसे होता है, कपड़ों पे सुई कैसे चलती है, तो आपका जीवन कैसा होता। हमें लगता है ना कि कई बार चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना गलत है, सही है, अलग है, न जाने क्या क्या सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। दूसरी कंट्रीज़ में तो ये होता ही है, बच्चों को बचपन से कुछ वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो शायद उनकी किताबों में नहीं है, उन्हें बेसिक मैनर सिखाए जाते हैं, घर में कैसे पेश आना है, खाना कैसे बनाना है, सिलाई कैसे करनी है, नीटिंग कैसे करनी है, क्राफ्टिंग कैसे करनी है। हमारे लिए आर्ट एंड क्राफ्ट का एक क्लास होता है, बट लोगों के लिए दूसरे देशों में पूरा बचपन होता है, और वही बचपन उठाकर लेकर आई है 30 साल से महाराष्ट्र के एक छोटे से जिले में काम करने वाली एक सरकारी टीचर। वो बच्चों को सिर्फ किताबों की दुनिया तक नहीं रखती, वो बच्चों को बाहर की दुनिया में लेकर जाती है और जिंदगी कैसे चलती है वो ये सिखाती है, वो इसका पाठ पढ़ाती है कि जो आप अपनी दिन में देखते हो ना कि आपके साइकिल की चैन उतर गई है तो इसको लगाते कैसे हैं, अगर आपकी साइकिल पंचर हो गई है तो इसको ठीक कैसे करते, अगर टायर बदलना है तो वो कैसे बदला जाएगा, कैसे आप कढ़ाई करना सीखते हो, कैसे एक ईंटे बनाने वाला इंसान कितनी मेहनत करके किस प्रोसेस के साथ ये ईंटे आपके घर तक पहुंचती हैं और आपकी दीवारें तैयार होती हैं, कैसे खाना बनाया जाता है, कैसे फैक्ट्री में चीज़ें तैयार होती हैं, कैसे चक्की से आटा निकल कर आता है, हर एक चीज को वो सिखाती है। इवन वो उन्हीं गांव के बच्चों को ले जा करके बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स और मॉल्स में लेकर जाती है, ताकि जब गांव के बच्चे अपनी गांव की जिंदगी छोड़कर शहरों की तरफ जाएं तो उन्हें इस बात का कभी डर ना लगे, हेजिटेशन ना हो कि शहर तो बहुत बड़ा होता है, मैं वहां अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगा, सिनेमा हॉल में टिकट कैसे बुक होती है, कैसे जाकर आप अपने खाने के लिए ऑर्डर देते हैं, कैसे
आप कपड़े खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, उनके पैसे देते हैं, बिलिंग कराते हैं, बिल करते समय पैसे कैसे गिने जाते हैं, कैसे डिस्काउंट के अंदर मापतौल किया जाता है, हर एक पार्ट जो हमारी जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, ये टीचर उन बच्चों को क्लासरूम में नहीं सिखाती, बाहर लाकर सिखा रही है कि स्कूल लाइफ में, जहां हम अपने बच्चों को सिर्फ फोर्स करते हैं 90% 99% मार्क्स लाने के लिए, वहीं ये टीचर आपको सिखाती है कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते, जिंदगी नंबर्स पर नहीं चलती, जिंदगी आपके हुनर पर चलती है, आपके स्किल्स पे चलती है। जब आप 12th के बाद स्कूल से निकल जाते हैं तो असल जिंदगी की शुरुआत होती है, और उस वक्त जरूरी होता है आपको चीजों को जानना आना, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी तो किसी की है ना। बच्चा बचपन से तो नहीं जानता कि कैसे किस चीज को हैंडल करना है, कैसे सिचुएशंस हैंडल करनी है, पैसों को कैसे संभालना है। यहां तक कि न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनकी एक उम्र हो चुकी है बट आज भी उन्हें पैसों का सही हिसाब किताब नहीं आता। इसके पीछे गलती उनकी नहीं, हमारी है, क्योंकि हमने शायद पैसों को लेकर इतना समझा ही नहीं, हमें बस लगा पैसे कमाने आने चाहिए, पैसों को संभालना ये तो कमाने के बाद सीख ही लेते हैं ना, हर किसी को आ जाता है, बट ऐसा नहीं है। पैसे कमाना बहुत अलग है पैसे संभालने से, और ये वो टीचर हैं जो हर हफ्ते बच्चों को ऐसे ही लोगों के पास लेकर जाती हैं, दिखाती हैं कि जिंदगी जीने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितना कुछ लगता है, कितने एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, और किस कदर आप सीख सकते हैं। इवन ये बच्चों के घर तक जाती हैं, बच्चों को अपने घर बुलाती हैं खाने पर। जी हाँ, जब किसी बच्चे के माँ बाप जो घर से बाहर काम करते हैं तो वो उन बच्चों को अपने घर बुलाती हैं, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार ज़रूर वो बच्चों को अपने घर बुलाकर लंच और डिनर कराती हैं। वहीं पर जिनके माँ बाप घर से बाहर मजदूरी करते हैं वो उनके घर जाकर खाना खाती भी हैं सभी के साथ, ताकि बच्चों के अंदर जो हीन भावना आ जाती है ये सोच कर कि हम तो बड़े परिवार से हैं तुम छोटे परिवार से हो, ये हीन भावना उनके अंदर कभी ना आए, ये भेदभाव उनके अंदर कभी ना आए, वो समझ सके कि मेहनत मेहनत होती है, फिर चाहे वो कुर्सी पर बैठ के की जाए या सड़क पर, मेहनत हर किसी के लिए एक जैसी होती है और हर कोई इज्जत डिजर्व करता है। और इस महान टीचर का नाम है उज्ज्वला वाडेकर, उज्ज्वला राजेश वाडेकर। आप ये नाम सर्च कर सकते हैं और इनकी जिंदगी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। पिछले 30 सालों से एक सरकारी टीचर जो बच्चों को जिंदगी का असल महत्व सिखा रही हैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में। आपको क्या लगता है, भारत के और भी स्कूलों में ऐसा होना चाहिए क्या? हमें भी जरूरत है एक उज्ज्वला वाडेकर जैसी टीचर का? अपने थॉट जरूर बताइएगा आपके अपने चैट बॉक्स में। फिलहाल एंजॉय करिए वही गाना जो हमने बीच में ही रोक दिया था, अफसाना, हिमेश रेशमिया की आवाज में। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा विद राज युनिति, और ये है आपका रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

हाँ जी, तो भैया लिसनर्स, आपसे मेरा एक और सवाल ये है कि एक इंसान की कितनी बेटियां हो सकती हैं, कितने बच्चे हो सकते हैं? एक, दो, तीन, चार, सात, दस, बारह। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसा भी इंसान है, एक ऐसा बुज़ुर्ग है आपके बीच में जिसकी उम्र तो 66 हो रखी है, 66 हो रखी है, लेकिन उसके पास एक दो नहीं, उसकी टोटल 35 बेटियां हैं, 35। तो आपको हैरानी होगी, आप शॉक होंगे, या आपके अंदर एक क्रियोसिटी जागेगी कि हाउ किसी की 35 बेटियां कैसे हो सकती हैं।

हमारे इंस्पायरिंग सेगमेंट में एक बार वापस से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो ज्ञानस 89.6 FM गोना शहर की धड़कन पर प्रोग्राम चल रहा है आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल गुड मॉर्निंग गोना। मैं हूं आपकी अपनी आरशे, आपकी अपनी रेडियो जॉकी रति, मौजूद हूं आप सभी के साथ। और इंस्पायरिंग सेगमेंट में हमारी जो तीसरी कहानी है वो एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे बुजुर्ग की है जो हमारे बीच में रहते हैं और उम्र है उनकी 66 साल और उनकी 35 बेटियां हैं। अब ये क्यूरियोसिटी तो सबके अंदर रहती है कि 35 बेटियां, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए बता देते हैं आपको कि ये 35 बेटियां कौन है और ये उन्हें कहां से मिली। देवगढ़ के हरे राम पांडे झारखंड के जंगलों से, झाड़ियों से, रेलगाड़ियों से लावारिस बच्चों को, रावारिस लड़कियों को जो माता पिता फेंक जाते थे उनके जन्म के बाद, ये उन्हें अडॉप्ट करते हैं। उनकी जो सबसे पहली बच्ची थी वो थी तापसी, नाम उन्होंने उसका रखा था तापसी। 9 दिसंबर 2004 को हरिराम पांडे का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। उन्हें जंगल में एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिलती है। वो बताते हैं कि जब ये बच्ची उन्हें मिली थी तब उसके गर्भनाल पर, उसके पीठ पर चीटियां भिनभिना रही थी, उसे चीटियां काट रही थी बहुत ही गंदी तरह से। वो बच्ची अभी बस कुछ वक्त की जन्मी लग रही थी और उसे कोई जंगल के अंदर फेंक गया था, ये सोचे बिना कि ये नवजात शिशु, ये मासूम सा बच्चा जो अभी तक दुनिया में ठीक से आया भी नहीं है, ये सारी चीज़ें कैसे झेलेगा। ये जब रास्ते से गुजर रहे थे तो इन्हें जंगल में उस बच्ची की बस आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक लावारिस बच्ची पड़ी हुई है जिसकी सांसें अभी चल रही हैं लेकिन उसको चीटियां नोच रही हैं, काट रही हैं, उसके ऊपर भिनभिना रही हैं। वो उसे तुरंत उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं जहां लगभग 21 दिनों तक उसका इलाज चलता है। डॉक्टर्स ने भी ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ दी थी कि अब इस बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकती। इसके बाद भी उनका भरोसा नहीं टूटा। उनका कहना था कि मुझे पता है ये बच्ची मेरे लिए भगवान का उपहार है और ये ज़रूर बचेगी। उन्होंने उस बच्ची का नाम रखा तापसी। आज वो पूरे 19 वर्ष की हो चुकी है। तापसी के अलावा उनके पास 34 और बेटियां हैं। तापसी की देखभाल करने से इस 66 वर्षीय व्यक्ति को जीवन में एक नया उद्देश्य मिला। वे ऐसे चलते हैं और उनकी आदत पड़ चुकी है, अब उन्हें कहीं भी अगर बच्ची दिखाई पड़ती है या फिर वो बच्चे जिनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेंक कर चला जाता है उनके जन्म के बाद, ऐसे ही लावारिस कभी कांटों में, कभी झाड़ियों में, कभी जंगलों पे, तो कभी कूड़ेदान में वो उन बच्चियों को अपने पास लेकर आते हैं, उन्हें उठाते हैं। न जाने उन्होंने कितने बच्चियों को अडॉप्ट किया है सिर्फ और सिर्फ कूड़ेदान से निकाल कर। सोचकर शॉक लगता है और एक तरह से शर्म भी आती है कि एक नवजात शिशु जो इस दुनिया में अपनी मर्जी से तो नहीं आता, उसे भी लोग उठा करके डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं, उन्हें कूड़ेदान में फेंक देते हैं कचरा समझ करके। और ये वो इंसान है जो उन सभी बच्चियों को उठाकर लेकर आते हैं, उनका सहारा बनते हैं। जहां बच्चियों को पालने पर ये सवाल उठ जाता है कि किसी के पास 3 बेटियां होती हैं तो उनसे सवाल किए जाते हैं कि आप शादी कैसे करोगे, दहेज का खर्च कैसे उठाओगे, इनका भरण पोषण कैसे करोगे, तो जाने कितनी बेटियों की जान ले ली जाती है। ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र हमसे कई गुना ज्यादा है, 66 वर्ष का वो इंसान जंगलों में, झाड़ियों में, रोड पर, कूड़ेदान में पड़ी उन लड़कियों को अडॉप्ट करते हैं, उनकी जान बचाते हैं, उनका सहारा बनते हैं और उन्हें पिता की तरह मोहब्बत देते हैं। कहते हैं कि भगवान की शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी है, बट इन कहानियों को जब मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, जानती हूँ तो समझ में आता है कि भगवान शायद ऐसे ही दिखते हैं। शायद खुदा का एक ही रूप होता है और इसीलिए खुदा ने सिर्फ एक ही चीज बनाई है, मोहब्बत। और हर मोहब्बत करने वाले इंसान के अंदर, हर उस इंसान के अंदर जिसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर खुदा खुद शामिल होता है। सुन के हैरानी लगती है ना कि एक इंसान
35 बच्चियों को जीवन दे रहा है, पाल रहा है। इस महंगाई के ज़माने में जहाँ लोग परेशान रहते हैं, वहाँ वो ऐसे लोगों को लेकर आते हैं, ऐसी बच्चियों को उठाकर लेकर आते हैं जिन्हें उनके खुद के माँ बाप उनका तिरस्कार कर चुके हैं, उन्हें नहीं पालना चाहते। उन्हें ये इंसान जिंदगी दे रहे हैं। नाम है हरिराम पांडे, नाम भूलिएगा नहीं, बहुत ही खूबसूरत नाम है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमारे इस इंस्पायरिंग सेगमेंट के बारे में, आपके ख्याल क्या है? आई थिंक तीसरी कहानी सुनने में पहले ही आपको भले ही हंसी आई होगी कि 35 कैसे हो सकती है, बट जैसे ही आपको इनकी असल कहानी पता चलती है, आंखें नम हो जाती है और दिल में एक हमदर्दी आती है और दिल से सैल्यूट निकलता है ना। चलिए एंजॉय करते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार मिलते हैं आपके अपने चैट बॉक्स में आपके मैसेजेस को देखने। तो आज का शो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आज के इंस्पायरिंग सेगमेंट में आपको सबसे खूबसूरत कहानी किस इंसान की लगी मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और किससे आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं ये भी बताइएगा। फिलहाल आपके थॉट्स और आपका फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, तो ज़रूर से बताना कि आज का शो आपको कैसा लगा मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी आशुनती के साथ मॉर्निंग का स्पेशल गुड मॉर्निंग कोडा। फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, तो भैया वक्त हो चला है आपकी अपने चैट बॉक्स की तरफ चलने का, आपके मैसेजेस को लेने का। फिलहाल मैसेजेस की तरफ चलने से पहले आपको बता दें, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी होस्ट एंड दोस्त आपके प्यार चुनौती मौजूद हैं और ये है आपका प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा। हमने जो लास्ट मैसेज पढ़ा था वो हमारा मैसेज था कमल नैन जी और महेंद्र दीपन जी का। अब बात करते हैं उसके बाद के मैसेजेस की। तो हमारी मंजू जी ने लिखा है कि सुबह उठकर वो सबसे पहले पढ़ाई करती हैं। क्या बात है भाई, आप मेरी मम्मी के साथ रहेंगी, मेरी मम्मी खुश हो जाएंगी। फिलहाल बहुत ही खूबसूरत बात। और साथ लिखा है कि बिना स्नान किए पानी नहीं पीती मैम, इसीलिए सबसे पहले पढ़ाई करती हूँ फिर पानी पीती हूँ स्नान के बाद। बहुत बेहतरीन आदत है आपकी। सुपर सॉन्ग, थैंक यू सो मच। कमल नयन जी ने लिखा है, सुबह उठकर पहले राधा जी को प्रणाम करता हूँ, धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, फिर ब्रश करके नीम की पत्ती खाता हूँ। ओह माय गॉड, मैंने भी कोशिश की थी एक बार नीम की पत्ती खाने की, फिर मुझे समझ में आया कि नीम की पत्ती मेरे लिए नहीं बनी है, फिर मैं करी पत्ते पर आ गई और कुछ दिनों बाद मैंने करी पत्ते भी खाना छोड़ दिए, मैं सिर्फ पानी में ही खुश हो गई थी। हालांकि आपकी बहुत ही बेहतरीन आदत है, बहुत ही हेल्दी हैबिट है, ये आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है, आपके लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। बहुत ही बढ़िया कमल नयन जी। धर्मेंद्र मोहन जी जो आवाज विकास से सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं, उन्नति जी नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुक्रिया एंड नमस्ते। झूठे लोगों को मुंह मत लगाओ, आप बहस में उनसे कभी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ सच अकेला चलता है और झूठ बारात लेकर निकलता है। क्या बात है, आप जब भी मॉर्निंग में आते हैं कुछ ऐसी सीख जरूर देकर जाते हैं जो मेरा तो दिन बना देती है। बहुत ही गहरी बातें कहते हैं आप। एंड लिखा है, गुड मॉर्निंग गोंडा, सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। सुजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखा है आज श्रीमती जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप। मिश्रा ऑप्टिकल जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा, गुड मॉर्निंग टू यू। इरफान शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माता पिता की सेवा संसार के उन पुण्य कर्मों में से एक है जिसका मूल शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उन्होंने हमारे बचपन की हर छोटी बड़ी जरूरतों को अपना कर्तव्य समझकर पूरा किया है। हमारे एक मुस्कान के लिए उन्होंने अपनी कितनी इच्छाएं त्याग दी, इसका हिसाब शायद हम पूरी जिंदगी भी ना लगा पाए। माता पिता जब बूढ़े होते हैं तब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत हमारे पैसों की नहीं बल्कि हमारे समय, सम्मान और प्रेम की होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। एंड क्रिकेट अमन लिखा है राइट, और राइट, थैंक यू सो मच। इरफान शाह जी का ही मैसेज है इसके बाद, और लेक्स मैसेज है हमारे पास क्रिकेट लवर का, वाओ लवली सॉन्ग, बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र जी ने लिखा है सुपर सॉन्ग, म्यूजिक को दिया है बहुत सारी रेटिंग, थैंक यू सो मच। एंड धर्मेंद्र जी लिख रहा है, उन्नति जी लोगों को भूलना आता है, लोग अपना स्वार्थ निकलने के बाद अफसाना बनाकर भूल जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो आपको भूल जाते हैं उन्हें आप माफ़ कर दीजिए, जो आपको याद रखते हैं उनके साथ ज़िंदगी के कुछ हंसी लम्हे बिता लीजिए। महेंद्र जी ने भैया आपसे सवाल किया था, ऐसे कैसे हो सकता है एक इंसान 35 बच्चों को कैसे पाल सकता है, तो इसका जवाब आई थिंक आपको मिल चुका है। हमारे मिश्रा जी भी सोच में पड़ चुके थे कि कैसे हैं 35 बेटियाँ, एक्सप्लेन करके बताइए, और हमने आपको बताया। और जैसे ही आपको ये पता चला कि उनकी 35 बेटियाँ कैसे हैं, वैसे ही महेंद्र जी का मैसेज आया है, तो ऐसे बताओ ना मैम कि उनको सहारा दिया, उनका पालन पोषण किया, उनको बच्चे का दर्जा दिया। अब बच्चे का दर्जा दिया या नहीं दिया, वो खुद को पिता कहते हैं और मैं भी उन्हें एक पिता की नज़र से ही देख रही हूँ। सल्यूट है ऐसे लोगों को, जी हाँ बिल्कुल सल्यूट है। वो बच्चियाँ उन्हें अपना पिता मानती हैं, वो उन बच्चियों को अपनी बेटी मानते हैं, उन्होंने कभी माना ही नहीं कि ये बच्चियाँ उनके लिए कोई पराई हैं या वो इन्हें सहारा दे रहे हैं। उनका तो मानना सिर्फ इतना है, ये सब भगवान के तोहफे हैं जो मुझे मिल रहे हैं, और ये मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं इन बच्चियों को एक अच्छी जिंदगी दे सकूँ, तो मैं ऐसे ही कह सकती हूँ ना उन्हें। इसके बाद लिखा है, ये लास्ट वाली कहानी बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति शुक्ला बहराइच से लिख रही हैं, हरिराम पांडे को दिल से सल्यूट, ऐसे शख्सियत बच्चियों के लिए अभिमान के साथ भगवान है। बिल्कुल सही कहा आपने। एंड इसके बाद धर्मेंद्र जी का मैसेज है, वह व्यक्ति मासूम बच्चों का पालन पोषण कर बस उनके मन में प्रेरणा हो गई, भगवान के इंसान
भगवान के रूप में इंसान या इंसान के रूप में भगवान नीचे आते हैं। जी हाँ, फिलहाल आपके मॉर्निंग वाले शो में हमने बहुत जबरदस्त कहानियां जानी एंड सच में हरिराम पांडे जी की कहानियां दिल को छू जाती हैं और बाकी की स्टोरीज कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर्ड करती हैं अपनी जिंदगी में कुछ अलग करने की। आज का शो आई होप आपको पसंद आया होगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का, तो विदा लेने के लिए अब मैं चाहूंगी आपसे इजाजत और इसी के साथ आपको छोड़ के जाऊंगी एक बेहद ही खूबसूरत गाने के साथ जिसका नाम है जा विदा जिंदगी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। अभी तक आपके साथ मौजूद है आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आरजे उन्नति। आपका अगला कार्यक्रम आपका लोकगीत का कार्यक्रम गांव की गूंज सुनना मत भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आज आपको 3 से 4 कॉल ट्यून कोना में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 92-60-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
7: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गांव की गूंज। आज हमारे गांव की गूंज पहुंची है उत्तर प्रदेश के एक सुंदर से गांव रामपुरवा में, जो कि अपने गोंडा जिले में स्थित है। अप्रैल का महीना है, चारों तरफ गेहूं की लहलाती बालियां, हरे भरे चने के पौधे इस गांव की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं।
8: और इसी प्यारे माहौल में आज आपके बीच में आई है हमारी गांव की गूंज की सुरीली टीम, जो आपको बहुत ही प्यारे प्यारे लोकगीत सुनाएंगी।
9: और हम हैं आपकी प्यारी गीता, जया और समता, किरण। आइए हम आपको सुनाते हैं एक बेहद सुंदर सा लोकप्रिय लोकगीत।

0: अरे समता दी, जरा इधर तो देखो, यह सरसों का खेत कितना दूर दूर तक फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरी धरती पर पीले रंग की चादर बिछा दी है, और ये हल्की हल्की हवाएं फूलों को हिला रही हैं। सच में मन तो करता है कि यहीं बैठकर बस इसको देखते ही रहें।
1: सच कह रही हो जया, ऐसा लग रहा है जैसे धरती ने खुद अपने लिए कोई त्योहार मनाने के लिए पीली चुनरी ओढ़ ली हो। हर एक फूल जैसे मुस्कुरा रहा हो और खुशबू इतनी मीठी कि मैं बता नहीं सकती।
0: सच, ऐसी खुशबू का एहसास हमें शहर में कहाँ होता है। मेरा मन तो करता है कि मैं हर हफ्ते गांव जरूर आऊं, और आती भी हूं।
2: और देखो ना, जब हवा थोड़ी तेज चलती है तो पूरा खेत ऐसे लहलहा रहा है जैसे समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हों, और मुझे तो ये

0: पूरा का पूरा पीले रंग का समुद्र ही लग रहा है और उसके ऊपर, अरे वाह क्या बात है, ये गुनगुनाती हुई चिड़िया इसकी सुंदरता को और बढ़ा रही।
1: सच में ऐसे मौसम में दिल खुद ब खुद गुनगुनाने लगता है, ना कोई भाग दौड़ ना कोई स्ट्रेस, बस ये खुला आसमान और ये खेत, ये शांति। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमसे खुद ही कुछ कह रही है, रुको रुको यहाँ तो मन कर रहा है कि थोड़ी देर और बैठ लें और थोड़ा इस पल को जी लें। अब मैं तो यहीं रुकने वाली हूँ थोड़ी देर तक, कहीं नहीं जाऊंगी। गीता मैम आप लोग भी यहीं रुकिए ना प्लीज।
0: अरे हाँ हाँ हम सब यहीं रुक रहे हैं। किरण जी हमें तो यहाँ बड़ा मजा आ रहा है, क्यों जया?
2: बिल्कुल
0: क्यों समता?
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: ऐसे ही पलों में गीत जन्म लेते हैं जो सीधे दिल से निकलकर दिलों तक जाते हैं।
2: सच कहा गीता दी आपने, मन तो कर रहा है अगला गीत भी इसी खेत में खड़े होकर के गा लें।
3: यहाँ तो हर मौसम हर फसल एक नई कहानी लेकर आता है और मार्च का महीना तो फसलों की खुशियों का ही महीना होता है।
1: तो क्यों ना हम इस खुशी के मौसम में सरसों के खेतों पर समर्पित एक प्यारा सा गीत गाएं।

0: अरे जया इधर देखो, वो जो सामने बच्चा है उसे देखो कैसे खेत में घुसकर फसल तोड़ रहा है और कितनी मस्ती में है, जैसे ये पूरा खेत उसी का हो, और अपनी छोटी छोटी जेब में चने तोड़ तोड़ कर कैसे भर रहा है।
1: यही तो असली बचपन है, ना कोई टेंशन ना कोई जल्दी, बस ये खुला आसमान, मिट्टी में खेलना, खेतों से ताजे चने तोड़कर खाना और दोस्तों के साथ हंसते भागते रहना। ऐसे ही पल तो जिंदगी की सबसे सच्ची खुशी देते हैं।
2: सच कहूँ, इन्हें देखकर मन करता है कि हम भी फिर से बच्चे बन जाएं। काश ऐसा होता कि फिर से समय लौट आता तो कितना मजा आता।
0: चलिए अगला गाना हम इन शरारती पर बेहद मासूम बच्चों के साथ चलकर गाते हैं और इन नन्हे श्रोताओं के साथ सभी को ये गीत सुनाते हैं।

0: अब हम आ गए हैं खेतों के बीच, जहां हवा के साथ झूमती हुई गेहूं की सुनहरी बालियां और नीचे जमीन पर झांकते हुए हरे हरे चने के पौधे, ऐसा लग रहा है मानो वो अपनी कहानी खुद ही सुना रहे हों।
1: और ये देखो, इस खेत के मालिक राम भुवन काका खेत में ही खड़े हैं। राम राम काका, कैसे हैं आप? और बताइए, आपके खेतों का क्या हाल है?
2: राम राम बिटिया, इस बार भगवान की बहुत दुआ रही। देख रही हो ये जौ गेहूं कैसे खड़ा है? ऐसे लगता है जैसे हर बाली सोने की बनी हो। और चना, उसका तो क्या ही कहना, उसमें खूब फूल आया है। हरी हरी बालियां देखो जरा, हाथ लगाओ, ऐसे लगेगा जैसे ताजगी बोल रही है।
0: सच में काका, ये गेहूं की बालियां कितनी भरी भरी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर बाली में मेहनत की कहानी भरी है।
3: ये जो हवा चल रही है ना, और साथ में ये जो बालियां हिल रही हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा खेत कोई धीमा सा संगीत गा रहा हो और धरती खुद अपनी खुशी व्यक्त कर रही हो। काका, आपको रोज खेतों में आकर कैसा लगता है?
2: अरे बिटिया, ये खेत खेत नहीं बल्कि हमारा परिवार है। जब बीज डालते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हमारा अपना बच्चा पाल रहे हैं, और जब ये लहलहाते हैं तो सारी थकान हमारी अपने आप ही मिट जाती है और दिल खुशी से भर जाता है।
1: सच में काका, आप लोगों की मेहनत इस देश की असली ताकत है। अच्छा काका, ये बताइए कि जब फसल अच्छी होती है तो घर का माहौल कैसा होता है?
2: बिटिया, अगर फसल अच्छी हो जाए ना, तो घर में त्योहार आ जाता है और रोटी बहुत स्वादिष्ट लगने लगती है।
3: यही तो असली जीवन है, मेहनत, प्रकृति और खुशी का अनूठा संगम।
4: और संगीत इन सबको जोड़ देता है। तो साथियों, इस मेहनती किसान और लहलहाती फसल के सम्मान में हम पेश करते हैं अगला गीत।

0: अरे देखो देखो, उधर से कौन आ रहा है?
1: जया, लगता है वो दादी जी हैं। सफेद साड़ी में लाठी लेकर धीरे धीरे आ रही हैं।
2: इतनी दूर से इस उम्र में पैदल चलकर वो खेत में आई है। लगता है उन्हें संगीत से बेहद लगाव है। चलो हम लोग उनके पास चलते हैं।
3: नमस्ते दादी जी, कैसी हैं आप? ऐसा लग रहा है आप हम लोग का गाना सुनकर आई हैं।
4: नमस्ते बिटिया, खूब खुश रहो। बहुत अच्छा लगा तुम लोगन का शहर से हमारे गांव आए और सबको इतने सुंदर सुंदर गीत सुना रही हो। बस ऐसे ही गाते रहो, गांव की खुशबू इन गीतों में जिंदा रहनी चाहिए।
2: चलो तो दादी जी के आशीर्वाद के साथ एक और मधुर गीत हो जाए।

0: तो हमारे प्यारे गांव की गूंज के श्रोतागण, धीरे धीरे ये सुहानी शाम अब रात की गोद में समा रही है। आज का दिन बहुत ही प्यारा था। हमने गीत गाने के साथ साथ मिट्टी की खुशबू और मेहनत की ताकत को भी महसूस किया।
1: ये गांव, ये खेत और ये लोग ही तो हमारी असली पहचान हैं।
2: चलिए अब वापस चलते हैं। हम फिर आएंगे किसी नए गांव में नई कहानियों और नए गीतों के साथ।
3: तब तक इन यादों को संभाल कर रखिएगा और याद रखिए, जहां मिट्टी की खुशबू है वहां दिलों में सच्चाई है और वहीं बसती है गांव की गूंज।
4: जी हां बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
10: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
11: मतलब
10: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
12: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9470931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
13: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
11: खत्म।
13: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
11: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
13: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
11: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
14: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
15: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
14: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
15: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
14: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

0: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: अरे सुना?
6: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
9: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
10: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

गोंडा शहर की धड़कन, और इसी धड़कन को धड़काने के लिए आ चुकी हूँ मैं, यानी कि आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। और आप सभी का बहुत बहुत बहुत तहे दिल से अ वॉर्म वॉर्म वॉर्म वेलकम आपके अपने पसंदीदा शो में, जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव, जिसमें कि हम बातें करते हैं कुछ हटके। कुछ हटके से मतलब है कि हम बातें ऐसी करते हैं जो कि सीधा असर कर जाती हैं कुछ स्पेशल डेज को लेकर के, कुछ हम बातें करते हैं एजुकेशन को लेकर के। तो आपको देते हैं भाई हम मस्ती की पुड़िया में लपेट कर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के साथ में बहुत सारी मस्ती, और बहुत सारी मस्ती के साथ में थोड़ा सा मोटिवेशन। तो लेकर के फिर से आ गए हैं हम, वही सारी बातें करेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले पहले पहले बता दूं कि भाई मैं तो आ गई हूँ, और घड़ी में जो टाइम है ना वो भी हो गया है, लेकिन लेकिन लगिन अभी आपका आना बाकी है। तो फटाफट से आ जाइए और अपनी हाजिरी लगा दीजिए आपके अपने पसंदीदा वाले शो में, जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव, और जुड़ जाइए मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। और उससे पहले जो कि हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, जो भी हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, और जो भी हमें एप्लीकेशन से सुन रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज की शुरुआत करते हैं, और आज की शुरुआत जो है, आज का दिन जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है भाई। आज है 19 अगस्त और आज के दिन में कुछ तो खास है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज के दिन में ऐसा भी क्या खास है जो कि अंशिका मैम इतना कह रही हैं। तो चलिए बताते हैं कि आज हमारे कैलेंडर का वो दिन है कि जिसमें लेंस और लाइफ दोनों एक साथ फोकस में हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो दुनिया की रूह को अपने कैमरे में कैद करते हैं, और दूसरी तरफ वो जो इस दुनिया की टूटी हुई इंसानियत को हील करते हैं। यानी हम हमेशा कहते हैं ना कि हमारी हीलिंग पावर होनी चाहिए, तो आज दोनों का मिक्स एंड मैच है। देखिए, जब हम फ़ोटो की बात करते हैं या कैमरे में कुछ कैद करने की बातें करते हैं, तो वो हमारी यादें होती हैं, हमारे वो पल होते हैं जो हमें बहुत पसंद होते हैं। लेकिन आज का जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, वो कुछ है लाइफ का, यानी कि रियल लाइफ का, और थोड़ा सा है जो कि अगर मैं इसे इस तरह से कहूँ तो कुछ रियल लाइफ का और हमारी यादों का आज मिक्स एंड मैच है। तो आज हम आवाज़ के साथ चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेंगे और आपको बताएंगे कि आज का दिन है क्या। भाई आज का दिन जो है ना, वो है बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत, जो कि खुद से हटकर हम कुछ और दुनिया को और लोगों को भी याद कर सकते हैं। तो आज के दिन मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। यस, आज के दिन विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। इस दिन उन लोगों को हम याद करते हैं जो दुनिया भर में हम कह लें कोई भी ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, या आप देखते हैं कि कई जगह बाढ़ वगैरह आई होती है, तो वहाँ पे जो बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हैं, जो किसी भी प्रॉब्लम में सभी की मदद करते हैं आपदाओं के समय में, और मानवता की सेवा करते हैं, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं, आज का ये दिन उन्हें समर्पित है। आज का ये दिन यानी कि 19 अगस्त, जिस दिन हम मनाते हैं विश्व मानवतावादी दिवस, यानी कि आज के दिन हम सबसे ऊपर रखते हैं मानवता को। कोई भी चीज़ ऊपर नहीं है, कुछ भी ऊपर नहीं है, सबसे पहले जो ऊपर है वो ऊपर होती है आपकी इंसानियत। कहते हैं ना कि इंसान कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो अपनी वैल्यू कितनी बना पाता है ये उसकी इंसानियत दिखाती है। होता है ना कई बार कि हम सड़क पे कहीं पे भी जा रहे होते हैं, और कोई अनजान अगर अभी हमें दिख जाता है तकलीफ़ में दुख में, तो हमारे मन में एक टीस सी उठती है कि अरे ये ऐसी हालत में है, काश ये और अच्छी हालत में होता। वही हमारी इंसानियत है। कहते हैं ना कि दुनिया के जमाने का गम देखकर जो रो दे, उन आँखों से आंसू निकलें, वो मोती होते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि दूसरों की आँखों में जब हम दर्द देखते हैं, गम देखते हैं, और वो देखकर हमारी आँखों में आंसू आ जाते हैं, वही असली इंसानियत होती है। और कभी भी इंसान को अपनी इंसानियत को कभी मिटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर एक इंसान में उसकी इंसानियत ज़िंदा होती है ना, तो फिर वो अपना हर रिश्ता अच्छे से निभा सकता है। एक अच्छे पिता, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, बहू, पत्नी, ये सब होने से पहले आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अगर हम एक अच्छे इंसान हैं तो हम हर रिश्ता निभा सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो सारी वैल्यूज़, वो सारी फीलिंग्स होंगी।

होगी, लेकिन मम्मी का मूड भी बड़ा अच्छा होता है, तो मम्मी कहती है आज खीर के साथ कुछ और भी खिलाते हैं, तो वो खीर के साथ आपके लिए कुछ और मीठा बना देती हैं, या फिर मीठा और नमकीन। होता है ना कि हम मान लीजिए मुझे खीर खाने का मन है, और मम्मी को लगा यार खीर के साथ उसे तो कचौड़ी भी बहुत पसंद है, चलो कचौड़ी बना देते हैं। तो एक के साथ कई बार होता है ना कि दूसरा भी मिल जाता है। तो आज कुछ ऐसे ही मीठे और नमकीन का तड़का हमारे पास भी है। आपने अभी मीठा सुना, यानी कि हमने आपको बताया कि विश्व मानवतावादी दिवस है। अब चलते हैं कुछ नमकीन की तरफ, और उस चीज़ की तरफ जो भाई आजकल तो बहुत लोगों को पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि कहीं भी आप जाइए, किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी जगह आप घूमने बाहर कहीं भी जाएंगे, तो बिना सेल्फी के तो फिर हमारा दिन नहीं हुआ। बिना सेल्फी का दिन कैसे हुआ? जब तक सेल्फी नहीं खिंचवाई तब तक तो कुछ मज़ा नहीं आया। सेल्फी खिंचानी तो बनती है, फिर चाहे आप किसी हिल स्टेशन घूमने जाइए, मॉल जाइए, या कहीं भी जाइए। तो आज विश्व मानवतावादी दिवस के साथ साथ मनाया जा रहा है विश्व फोटोग्राफी दिवस। इस दिन फोटोग्राफी की कला, विज्ञान और उनके इतिहास को सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि ये माना जाता है कि कहते हैं ना कि फ़ोटो तो सभी खींचते हैं, मतलब आपके सभी फ्रेंड्स होंगे जो आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच लेते होंगे, लेकिन किसी का एंगल बहुत अच्छा होता है या किसी से पोस्चर बहुत अच्छा होता है। कई बार हम किसी से फ़ोटो खिंचवाते हैं तो हम कहते हैं ना, अरे यार उसने मेरी वो पिक खींची थी, बहुत शानदार पिक खींची थी। तो क्यों होता है? क्योंकि उनके हाथ में कला होती है, उन्हें पता होता है कि फ्रंट ऑफ कैमरा कैसे यूज़ करना है, मुझे किस तरह फ़ोटो खींचनी है कि फ़ोटो जो है वो अच्छी आए। तो ठीक इसी तरह हर किसी में अपनी एक कला होती है। आज के दिन वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है, जो कि उन सभी को समर्पित है जिनके हाथों में ये कला है, जो बेहद ही शानदार तस्वीरें खींचते हैं और अपनी इस टैलेंट का यूज़ भी करते हैं। तो भाई एक के साथ आज हमारे पास दो दो स्पेशल डेज हैं सेलिब्रेट करने के लिए। तो सेलिब्रेट आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? मैंने डेज तो बता दिए, पर कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? सेलिब्रेट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं और कैसे इस दिन को अपने अपनों के साथ बेहद बेहतरीन तरीके से मना सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे जो अपने होते हैं वो हमारे लिए सबसे सबसे सबसे ज़्यादा ख़ास होते हैं। हम अपना हर दिन, अपना हर टाइम बस उन्हीं के साथ मनाना चाहते हैं। तो बताऊँगी आपको कि आप इन दोनों ही दिनों को अपनी फैमिली के साथ कैसे अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं और कैसे खुद को, कहते हैं ना कि दूसरों से पहले हमें खुद को सेटिस्फाइड करना चाहिए, खुद का सेटिस्फैक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो बताऊंगी कि कैसे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले पहले पहले आइए चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। बस यूँ गए और यूँ आए, आप सुनते रहिए आपका अपना बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जो कि है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो जिसका की नाम है ज्ञानस्थली लाइव। और वापस आ गए हम। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बातें की थी कि किस तरीके से हम आज का दिन, यानी कि जो कि विश्व मानवता दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस दोनों आज ही है, उसे कैसे मना सकते हैं, कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद लौटूंगी और बताऊंगी कि इसे सेलिब्रेट करने के लिए आखिर आप क्या कर सकते हैं। तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आज के दिन आप किसी भी एक अनजान इंसान की मदद कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो उसकी जो चमक चेहरे पर होती है वो कुछ अलग, कुछ हटकर होती है। कभी देखिए आप किसी की मदद करके, आपके फेस पे ऐसी सुकून वाली स्माइल होगी ना कि आपको लगेगा कि हाँ, ये तो अच्छा है। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। आप किसी भी एक ज़रूरतमंद की, ज़रूरत नहीं है कि आप उसे बहुत सारी चीज़ें दें, लेकिन बस आप कोई भी एक छोटी सी चीज़ दे करके उसके चेहरे पर स्माइल ला सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। और रही बात आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है, तो भाई हम अगर बात करें अपनी, अपने घरों में यूथ स्पेशली ना, तो सेल्फी लेना, सेल्फी पोस्ट करना, स्टेटस लगाना, ये यूथ का फेवरेट काम है। मतलब ट्रेंडिंग है कि अगर हम खाना खाने भी होटल जाते हैं ना, तो हम कहते हैं भैया रुको रुको रुको, पहले मत खोलो, पहले मुझे सेल्फी तो ले लेने दो, स्टेटस तो लगा लेने दो, उसके बाद देखते हैं कि डिश क्या क्या है। तो आज के दिन आप ये कर सकते हैं कि अपनी पूरी फैमिली के साथ एक अच्छी सी पिक खींचें, और एक क्यों, ढेर सारी पिक खींचें और उन्हें अपने स्टेटस पर लगाइए, और एक अच्छा सा फैमिली सॉन्ग भी लगाइए और उसमें कोई अच्छा सा कैप्शन भी डालिए। एक दिन अपनी फैमिली के साथ सेल्फी लेकर के देखिए, अलग ही मज़ा आता है ना। अपने इस दिन को सेलिब्रेट करें और उन लोगों की आज के दिन बातें ज़रूर करें, उनको थैंक यू ज़रूर करें, जो कि अपनी कहीं ना कहीं एक कला से हम सभी का दिल मोह लेते हैं। जैसे हमने कहा ना कि फ़ोटो खींचना भी एक कला होती है, तो कहीं ना कहीं जिनके अंदर ये टैलेंट है, आज के दिन हमें उनके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए और उनकी इस जो उनका टैलेंट है उसे और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जो कला होती है वो हमेशा पाने वाले को तो एक सुकून पहुंचाती ही है, क्योंकि उसके अंदर वो कला होती है। लेकिन जब हम किसी की टैलेंट की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो भी हमें एक तरीके से बहुत खुशी पहुंचाती है। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक जो कि है आज, वो ये है कि कि भाई यूथ्स में अगर हम बात करें, यूथ्स में ही नहीं आजकल ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सभी में हो रही है। क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि जैसे समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, वैसे कुछ चीज़ें जहाँ बहुत अच्छी हुई हैं वहीं कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं कहेंगे बट थोड़ी सी डाउन पर भी चली जाती हैं। तो आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो यूथ्स में बहुत ज़्यादा होती है, जो कि है बर्नआउट। अब आप सोच रहे होंगे बर्नआउट क्या है, तो बर्नआउट हम आपको बताएंगे कि बर्नआउट होता क्या है। बर्नआउट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें अगर गुस्सा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, अगर हम किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा, बर्नआउट अचानक नहीं होता है, बर्नआउट धीरे धीरे होता है। बर्नआउट का मतलब होता है कि लगातार ओवरटेक करना। ओवरटेक करना मतलब बिना वीकेंड लिए, बिना छुट्टी लिए आप लगातार हफ्तों महीनों लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, बर्नआउट इसी को कहते हैं। कई बार जब हमसे बार बार कहा जाता है कि पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, तो जहाँ हमें ये अच्छी साइड ले जाता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं, वहीं कई बार ये हमें बहुत रॉन्ग साइड भी लेकर के जाता है। बर्नआउट तब होता है जब बार बार बार बार बार बार आपको एक ही पॉइंट पर कहा जाता है। धीरे धीरे जब हम बच्चे को बोलते हैं ना कि आप पढ़ाई करो, तो धीरे धीरे वो इस बात को इतनी ज़्यादा सीरियसली ले लेता है कि वो 2400 घंटे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं, बिना ब्रेक लिए घंटों घंटों सिर्फ पढ़ाई, बिना ब्रेक लिए लगातार बस 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई। आपने बच्चों में ये सिचुएशन हमेशा देखी होगी कि कई बार होता है कि हम कहते हैं कि बेटा जाओ थोड़ा बाहर खेल लो ना, जाओ थोड़ा रिलैक्स कर लो, लेकिन उनका क्या होता है कि वो केवल पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, और वो भी क्यों, क्योंकि नहीं मम्मी मुझे पढ़ना है, मेरा पेपर आने वाला है, नहीं मम्मी मुझे मेरा सिलेबस पूरा करना है। बिल्कुल सही है, पढ़ाई करना बिल्कुल सही है, अपनी पढ़ाई को लेकर सिंसियर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिंसियर होंगे तो ही आप आगे जाकर कुछ कर पाएंगे। सिंसियरिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर हम 12-12 घंटे, 13-13 घंटे, 24-24 घंटे बिना ब्रेक लिए, बिना सोए, बिना अपनी हेल्थ की चिंता किए, बिना खाए पिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है, इसे कहते हैं बर्नआउट। बर्नआउट जहाँ पर एक तरीके से हमारी सारी जो फीलिंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं ना कि पानी जो होता है उसे बांध में बांध कर इसलिए रखा जाता है ताकि बाढ़ ना आ जाए, कुछ वैसी ही सिचुएशन होती है कि हमें लगता है कि बस अब तो मुझे पढ़ाई करनी ही है, और मुझे सब लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई करो, अब तो मैं कर ही दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एक ओवर हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, ये ऐसी मेंटल कंडीशन होती है यूथ्स में कि उनको लगता है कि अब तो करके ही दिखाएंगे, अब तो इस पार या उस पार, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है। क्योंकि इसमें हमारा एक, जैसे कहते हैं ना कि जुलून है, ये कोई आपकी सिंसियरिटी नहीं होती, ये बस आपका जुलून होता है कि मुझे करना है, अब तो मैं 2400 घंटे पढ़ाई करूँगा, मुझे पढ़ाई के लिए कहा जाता है ना, ठीक है अब मैं यही करूँगा। ये एक मेंटल कंडीशन हो जाती है जहाँ पर हम उस चीज़ की तरफ ज़्यादा खींचते हैं जिस चीज़ के लिए हमें पुश किया जाता है। देखिए पुश करना भी कई बार पॉजिटिव होता है, कई बार नेगेटिव होता है। कई बार जब आप किसी चीज़ को पॉजिटिव साइड के लिए पुश करते हैं ना कि बेटा तुम ये करो, तो वो उसे पॉजिटिव लेने की जगह नेगेटिव लेने लगता है, और वही सिचुएशन कहलाती है बर्नआउट। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो यूथ्स में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अगर मैं इसे आम भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो आम भाषा में बच्चे उसी साइड जाने लगते हैं कि जिस तरफ उनको लगता है कि अब मुझे खुद को साबित करना है, लेकिन जहाँ उन्हें ये लगता है कि हम खुद को साबित कर रहे हैं, वहाँ वो खुद को साबित कर रहे हैं या बेहतर नहीं बना रहे होते हैं, बल्कि और ज़्यादा सिचुएशंस को अपने लिए ख़राब कर रहे होते हैं। हम हमेशा कहते हैं ना कि मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने का एक अलग ही मतलब लेवल होता है। हम हमेशा कहते हैं कि जिस भी काम में आप दिल से मेहनत करेंगे वो आपका काम ज़रूर सक्सेस होगा, लेकिन ये कोई मेहनत नहीं होती। पढ़ाई आपके माइंड में कब आती है? हम हमेशा कहते हैं ना कि बेटा पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई हमारे माइंड में तभी आती है जब हम शांत मन से पढ़ते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि बर्नआउट की सिचुएशन में कोई भी कभी शांत मन से नहीं पढ़ता, बस वो जुलून में पढ़ता जाता है और उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, उसे कुछ भी याद नहीं होगा। ये एक तरीके से जब आप अपनी नींद और आराम की अनदेखी करते हैं तो ये आपकी बॉडी को फिज़िकली भी वीक कर देती है, और साथ ही साथ में स्ट्रेस या किसी के साथ अपनी बातों को शेयर ना करना, बस अकेले घुटते रहना और अपनी इसी जुनून में खोए रहने की वजह से धीरे धीरे हम जहाँ मेंटली वीक होते हैं वहाँ फिजिकली भी वीक होते जाते हैं। और एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी जितने भी टाइम इसको किया आपने उतना टाइम वेस्ट किया। देखिए, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो यही सिचुएशन कई बार जॉब के साथ भी होती है कि जब वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है और हमें लगता है कि हमें कंप्लीट करना है तो हम इस तरह की सिचुएशन में आ जाते हैं कि बिना रुके बिना थके बस काम काम और 24 घंटे सिर्फ काम। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हो, आपकी पढ़ाई हो या आपका काम हो, दोनों को गैप और स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। हम 24 घंटे तो काम नहीं करते हैं ना। अगर आप 9 to 5 की जॉब करते हैं तो आप दिन में 7-8 घंटे जॉब करते हैं। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह 7 बजे गए, दोपहर को 1 बजे आ गए। अगर स्कूल भी चाहे तो वो पूरे दिन हो सकती है ना, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमें गैप की ज़रूरत होती है। आपको पढ़ाई करनी है, आप कीजिए, लेकिन थोड़ा सा गैप मेंटेन कीजिए, उसमें खेलिए भी, अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करिए, अपनी जो चीज़ें आप डेली शौक की करते हैं वो भी करिए और ख़ुद को खुश रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ लव और ख़ुद को खुश रखना, क्योंकि जब हम खुद को खुश रखते हैं तभी हर चीज़ कर पाते हैं और उसमें प्रोग्रेस भी कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ। इस सॉन्ग के उस पार आऊँगी और आप सभी को बताऊँगी कि बर्नआउट की इस सिचुएशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स अभी हैं मेरे पास, लेकिन उससे पहले नव्या जी आ चुकी हैं जो कि लिख रही हैं, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून नव्या जी। तो हमारा जो कि टॉपिक चल रहा है स्पेशली यूथ्स के लिए, बर्नआउट, मैंने अभी भी बताया कि क्या सिचुएशन है, तो इस पर मैं आप सभी की राय ज़रूर जानना चाहूँगी लिसनर्स। तो आइए चलिए चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, बस यूं गए और यूं आए। आप सुनते रहिए और बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम में जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइफ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो जो कि है ज्ञान स्थली लाइव। और हम वापस आ गए हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के बाद, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। और इसी के साथ नव्या जी लिख रही हैं, और मैम क्या हाल है, बहुत ही अच्छा है। और नव्या जी को सॉन्ग भी बहुत पसंद आया है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं कि अभी तक हमने आपको बताया कि बर्नआउट होता क्या है, ये कैसे यूथ्स में एक सिचुएशन की तरह शुरू होता है और किस तरह ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है कि कुछ चीज़ें हमें, जैसे कहते हैं ना कि हमेशा हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है। अगर आप एक दिन खाना बना रहे हो और नमक दो, मान लीजिए आपको एक चम्मच डालना है और आपने उसमें 3-4 चम्मच डाल दिया, तो क्या आप वो खाना खा पाएंगे? या फिर कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा दोहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो बिल्कुल सही है कि अति किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं होती। ना हमें ज़रूरत से ज़्यादा बोलना चाहिए, ना ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना चाहिए, ना ज़रूरत से ज़्यादा धूप अच्छी होती है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा छांव अच्छी होती है। तो यही मतलब है कि धूप हो या छांव हो, दोनों अपनी एक लिमिट में अच्छी लगती है। ठीक उसी तरीके से हमेशा अपने काम में या फिर पढ़ाई में भी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ये तय करें कि आपको कई घंटे तक काम करना है, मतलब कितने घंटे आप काम कर सकते हैं और बिना किसी फिजिकल प्रॉब्लम के आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 10 घंटे ले लिए और बाद में हमारी बॉडी में पेन हो रहा है या किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये देखना है कि हम कितने घंटे काम आराम से कर सकते हैं और उसके साथ अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने शौक को भी समय दे सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको ये तय करना है कि आप अपनी पढ़ाई को कितना टाइम देंगे ताकि आपकी बाकी जो हैबिट्स हैं वो सारी चीज़ें सेक्रीफाइस ना हो। खुद को खुश रखते हुए हम दोनों काम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए लिमिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट आता है कि ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्रेक लेना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कई बार कहते हैं ना कि जब काम बहुत ज़रूरी होता है, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन घंटों बिना ब्रेक लिए करना ये गलत चीज़ होती है। क्योंकि हमारी, जैसे कहते हैं ना, बॉडी को डिटॉक्स चाहिए। जब हमारी बहुत ज़्यादा कभी तबीयत ख़राब होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी कहते हैं ना कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स की ज़रूरत है। ठीक उसी तरीके से हमारी माइंड को भी डिटॉक्स की ज़रूरत होती है। आप अपने माइंड में भरते जाइए चीज़ों को, भरते जाइए, तो एक दिन क्या होगा कि शट डाउन, और उसके बाद आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। हम साल भर का सिलेबस क्यों रखते हैं, मतलब हम ये क्यों रखते हैं कि हमें एक साल में पूरी बुक पढ़नी है। हम ये क्यों नहीं करते कि हम एक दिन में पूरी बुक पढ़ लेंगे और सारी चीज़ें समझ लेंगे? ऐसा नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से आप ढेर सारा खाना, मतलब 6 दिन का खाना हम एक साथ तो नहीं खा सकते हैं ना, ठीक वैसे ही ब्रेक लेकर छोटे छोटे हिस्सों में काम करने से हमारा माइंड जो होता है वो डिटॉक्स होता है। जब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने माइंड में माइंड को प्रोसेस कराते हैं तो वो आसानी से हमें याद रह जाती हैं और कंफर्टेबली हम पढ़ भी पाते हैं। लेकिन हम सोचें कि हम पूरे साल भर की पढ़ाई का बोझ एक ही दिन में अपने माइंड पर डाल देंगे तो वो ना आपका माइंड सहन कर पाएगा ना आप सहन कर पाएंगे। इसलिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और साथ में अपनी पढ़ाई को या अपने काम को दोनों को अच्छी तरह करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये बर्नआउट की सिचुएशन, एक तरीके से मेंटली जो बर्नआउट हो जाता है वो सिचुएशन आपकी लाइफ में ना हो, तो इसलिए ब्रेक लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि आपकी नींद बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। नींद हमारी इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि 7-8 घंटे की जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन यूथ्स में कहा जाता है कि उन्हें आराम से 8-9 घंटे तो सोना ही चाहिए क्योंकि पूरा दिन आप काम करते हो और पूरा दिन थक भी जाते हो। ठीक है, हमें लगता है कि नहीं नहीं हम नहीं थके हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको लगता है, आपका माइंड तो थकता है ना। इसलिए नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें फिट रखने के लिए। दूसरा पॉइंट आता है कि हमेशा योगा ज़रूर करना चाहिए और उन चीज़ों को ज़रूर करना चाहिए जो आपको पसंद है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, म्यूज़िक सुनना भी हो सकता है, अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करना भी हो सकता है, या बस यूँ टहलने निकल जाना और आधे घंटे टहल कर वापस आ जाना, ये भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुशी देती है, जो आपकी हॉबी है, वो कोई स्पोर्ट्स भी हो सकता है कि बैडमिंटन, कैरम या कुछ भी खेलना बहुत पसंद है, वो थोड़ी देर आप ज़रूर करिए। क्योंकि जब हम हमारी पसंद का कोई भी हमारे शौक का काम करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स का स्राव होता है जो हमें एनर्जी देता है और साथ में खुश रखता है। और जब आप खुश होते हो ना और अच्छे माइंड से पढ़ाई करते हो तो आपने देखा होगा कि चाहे हम एक ही घंटा पढ़ें लेकिन हमारे माइंड को सब कुछ समझ में आ जाता है। और ठीक इसी का अपोजिट अगर करें कि अगर हम काम कर रहे हैं तो अगर आप खुशी मन से काम करते हैं तो काम भी बहुत अच्छा होता है और आपको ये भी नहीं लगता है कि मैंने 5 घंटे, 6 घंटे या 2 घंटे काम किया। आपको लगता है कि अरे मेरा काम इतनी जल्दी हो गया, आज तो मुझे बहुत हैप्पी फील हो रहा है और इतनी जल्दी मेरा काम भी हो गया, वाह। तो ये हमें क्यों फील होता है? क्योंकि हम मेंटली खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। इसलिए हमेशा जितना ज़्यादा हमारी फिज़िकल बॉडी को खुश रहना ज़रूरी होता है, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि जितनी बाहरी खुश रहना ज़रूरी है उतना ही आपका मेंटली प्रिपेयर्ड रहना भी बहुत ज़रूरी है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और किसी भी काम को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सिचुएशन के काबू में चलते हैं ना तब तक सही होता है। सिचुएशंस को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आप सिचुएशन को कंट्रोल करें, सिचुएशन आपको ना कंट्रोल करे। तो चलिए, मुझे लगता है कि अभी के लिए हमारी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो आइए चलिए सुनाते हैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आती हूँ इस सॉन्ग के उस पार लेकर के, भाई आज भी है हमारे पास एक कोई नई कहानी, आज भी है हमारे पास एक कोई नई कहानी, किसी नई राह की ज़ुबानी है, नई कहानी है जो आपको बताएगी कि किस तरीके से लाखों जो कि प्रॉब्लम्स के बाद भी ना हमेशा उम्मीद का नया सवेरा होता ही है, और उम्मीद के इस नए सवेरे को हमेशा हमें तहे दिल से अपनाना चाहिए। तो आज भी कुछ ऐसी है, रंग जिंदगी की रंग बिरंगी कहानी है, आज कुछ उम्मीदों की ज़बानी है। लेकिन वो क्या है, कैसी है, किसकी है, ये सब बताएंगे, लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि कहते हैं ना, मत हो इतना ज़्यादा बेकरार, मत हो इतना ज़्यादा बेकरार, क्योंकि सब्र का बहुत फल बहुत मीठा होता है मेरे यार। तो सब्र का फल जो होगा वो आपके लिए भी बहुत मीठा होगा। तो आइए चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, मिलते हैं उस सॉन्ग के उस पार। स्टे ट्यून्ड।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, बहुत ही प्यारा सा ये एक रोमांटिक वाला सॉन्ग जिसे कि गाया है अरिजीत सिंह ने। तो भाई बहुत ही प्यारा सॉन्ग, मुझे तो ये गाना बहुत ही पसंद है, लेकिन लेकिन लेकिन इसे बीच में ही रोकना जो है वो हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि हम इसे कंप्लीट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बारी आती है हमारी आज की जो कि मोटिवेशन स्टोरी की, क्योंकि भाई हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, थोड़ी सी मस्ती भी करा दी, लेकिन लेकिन लेकिन अभी तक आपको हमने मोटिवेशन नहीं दिया है, यानी कि कुछ मोटिवेशनल अच्छा सा नहीं बताया। तो जैसा कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले ही कहा था कि आज की कहानी कुछ उम्मीदों की ज़बानी, वैसे ये उम्मीद भी बहुत बड़ी चीज़ होती नहीं है, मतलब बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके जो मायने होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं, उम्मीद, होप। तो आज कुछ उम्मीद से ही जुड़ी हुई मेरे पास एक स्टोरी है जो मैं बताना चाहती हूँ। यह कहानी है दुनिया के सबसे मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन की। जब वे स्कूल में थे तब उन्हें उनकी कम लंबाई के कारण स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर निकाल दिया गया। वे इतने निराश हुए कि घर आकर कमरे में बंद होकर रोने लगे। उनकी माँ ने उनसे कहा, बेटा रोने से कुछ नहीं होगा, अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और अपनी लंबाई की कमी को अपनी मेहनत से पूरा करो। बिल्कुल सही, आपके अंदर कोई भी कमी हो, कमी नहीं कहेंगे हम, ईश्वर की देन होती है, जिसका जो भी उसने जैसी भी जिसे भी जो भी काया दी है, जो भी बॉडी जैसी भी दी है, वो ईश्वर की रचना है और उस पर बिल्कुल भी सवाल उठाना बिल्कुल भी नहीं बनता है, लेकिन हम हमारी हर कमी को हमारी उम्मीद और मेहनत के सहारे पूरा कर सकते हैं, जैसे कि इस कहानी में आगे होता है। माइकल ने माँ की बात मान ली और हार मानने की बजाय रोज़ घंटों कोर्ट पर पसीना बहाना शुरू किया। उनके मन में बस एक ही उम्मीद और पक्का विश्वास था कि एक दिन वह बेहतरीन खिलाड़ी ज़रूर बनेंगे। नतीजा यह हुआ कि अपनी इस अटूट उम्मीद और कड़ी मेहनत के दम पे वे न सिर्फ दोबारा टीम में शामिल हुए, बल्कि आगे चलकर दुनिया के इतिहास में सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी भी बने। बिल्कुल बास्केटबॉल की जो बास्केटबॉल की अगर बात करें तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो माना जाता है वो माना जाता है माइकल जॉर्डन का, जो कि बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने ऐसे वैसे नहीं, सिर्फ उम्मीद का दामन पकड़कर अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा बेहतर बनाया। अगर माइकल जी की जगह को और होता तो वो सोचता कि नहीं, मेरी तो लंबाई कम है ना, मैं इसे छोड़कर कुछ और कर लूँगा, या दुनिया की बातों से निराश हो जाता, लेकिन वो निराश नहीं हुए, उन्होंने अपनी उम्मीद को हमेशा ज़िंदा रखा। देखिए बहुत छोटा सा वर्ड होता है लेकिन इसके बहुत सारे मायने होते हैं, और इस्पेशली यूथ्स की लाइफ में तो होने भी होने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि लाइफ की बस अभी शुरुआत की है, अभी तो हमने पहली सीढ़ी पर कदम रखा है, अगर कदम ही लड़खड़ा जाएंगे तो हम आगे का सफ़र कैसे तय करेंगे। आज भी ऐसा ही होता है ना, किसी दोस्त ने कह दिया, अरे यार तुम्हारे अंदर ये कमी है ना, तुम कैसे करोगी, अरे तुम तो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो ना, तुमने इतना बड़ा कोर्स ज्वाइन कर लिया, कैसे करोगे, एक बार सोचना चाहिए था ज्वाइन करने से पहले, तुम ये काम करोगे, कर पाओगे, हाँ हाँ कर ही लोगे, देखो जो काम करने जा रहे हो आराम से करना, पता नहीं, मुझे तो नहीं उम्मीद है कि तुम कर पाओगे। या फिर लोगों की छोटी छोटी बातों से हम निराश हो जाते हैं, निराश होकर के अपने ही अंदर कमी ढूंढने लगते हैं, कि लगता है मुझ में ही कोई कमी है। ओके, कमल नयन जी भी आ गए हैं, हेलो कमल नयन जी, कैसे हैं आप। और इसी के साथ हम खुद में ही कमी ढूंढने लगते हैं कि हाँ मुझ में कुछ होगा ना, तभी उसने मुझे ऐसे कहा, और मम्मी मेरे अंदर तो ये है ना, मैं कैसे करूँगा, नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हर दिन देखिए कमियाँ सब में होती हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, गलतियाँ सुधारने के लिए होती हैं और कमियाँ दूर करने के लिए। किसी कोई भी परफेक्ट नहीं है, आप किसी से भी पूछिए कि क्या वो परफेक्ट है, नहीं, कोई भी इंसान परफेक्ट होकर नहीं आता, धीरे धीरे सीखते सीखते समझते समझते एक दिन वो अपनी चीज़ों को बस बेहतरी से करने लगता है, लेकिन फिर भी कभी परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि परफेक्शन तो मुझे लगता है किसी में नहीं आ सकता, हम इंसान हैं और हमारे अंदर कमियाँ होना नॉर्मल है, लेकिन अपनी किसी भी कमी को कभी कमज़ोरी मत बनने दीजिए, अपनी कमज़ोरी को हमेशा ताकत बनाइए। हो सकता है कि कोई कहे कि तुम्हारी हाइट कम है, कोई कहे तुम ऐसे हो, कोई कलर को लेकर के बहुत सारी चीज़ें कह सकता है, लेकिन आपको आपकी कमी को ताकत बनानी है,
क्योंकि जब हम हमारी कमी को कमी नहीं समझते हैं और उसे अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ते हैं तो फिर दुनिया हमारे कदम नहीं रोक पाती। कहते हैं ना कि दूसरों की मजाक पर तो दुनिया हंसती है, पर एक बार जो खुद पर हंसना सीख लेता है ना, उसकी फिर पूरी लाइफ ही बेहतर हो जाती है। मैं आपको अपने एक दोस्त की कहानी बताती हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और उसे खाने का बहुत शौक है। मतलब आप उसके सामने किसी भी डिश का नाम ले लीजिए ना तो तुरंत से उसे हो जाता है अरे मुझे खाना है। तो खाने के उसके शौक को लेकर के और उसकी हेल्दी बॉडी को लेकर के अक्सर सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, सभी इस बात पे हंसते हैं कि अरे इसे तो दिन भर खाने का ही शौक चढ़ा रहता है। तो वो भी कई बार हंस लेता है कि क्या हुआ, दूसरों से कहता है हमेशा अरे तुम्हें गाने सुनने का शौक है ना, वो तुम्हारा शौक है, खाना मेरा शौक है, मैं जैसा भी हूँ फिट हूँ मस्त हूँ और मुझे अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं है। अगर कभी कोई उसके साथ मजाक भी करता है ना तो वो उनके साथ अपने मजाक पर ही हंस लेता है। तो हमेशा खुद पर हंसने की एक कला होनी चाहिए। आप अपनी कमियों को, जब दूसरा कोई आपके मजाक उड़ाता है ना, ये कहता है कि अरे तुम्हारे अंदर तो ये है ना, हंसी करता है, तो हमें भी थोड़ा सा हंस लेना चाहिए, लेकिन उस चीज़ को हमेशा पॉजिटिव साइड में लेना चाहिए। कभी भी अपनी किसी भी कमी को नेगेटिविटी में मत लीजिए, हमेशा पॉजिटिविटी में लीजिए। आपके अंदर जो भी है वो कोई कमी है ही नहीं। क्या शरीर का हेल्दी होना कोई कमी होती है? अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और हमें अपनी हेल्दी बॉडी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो हमारे अंदर की कमी नहीं है। अब जैसे कि आपने इस स्टोरी में सुना कि भले ही उनकी हाइट कम थी लेकिन फिर भी आज उन्हें इतना बड़ा माना गया ना, तो इसका मतलब है ये उनके अंदर की कोई कमी नहीं थी, बस उनकी एक कह लें कि भगवान ने उनकी रचना ही ऐसे की थी। तो हमेशा अपनी कमियों को हथियार बनाइए, ये मत समझिए कि आपके अंदर कोई कमी है, बस अपनी एक उस पॉइंट को हथियार बनाइए और दुनिया से लड़िए और जीतिए ज़रूर। याद रखिए, उम्मीद हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती है। जिसे उम्मीद नहीं है वो एक कदम भी नहीं चल सकता है, इसलिए हमेशा अपनी उम्मीद को ज़िंदा रखना चाहिए और पूरी लाइफ हमेशा सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और हाँ, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बस ये लास्ट है, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ से ऊपर कुछ भी नहीं। इसी प्यारे से मैसेज के साथ आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, रेडियो ज्ञान असली को सुनते रहिए, अपना प्यार यूं ही हम तक पहुंचाते रहिए। तो अभी के लिए आपसे बाय-बाय करती हूं और मिलूंगी अब सुन सहेली में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और इसी के साथ महेंद्र जी भी आ चुके हैं, लिख रहे हैं सही कहा मैम, बिल्कुल महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए बाय-बाय।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। स्वागत है आप सभी का रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। सो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम तो आपने शायद सुना होगा लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। नाम भी अलग और अजीब सा लगता है, नाम है काला अजार। लेकिन आज की शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहता हूं। टीकन देवी जी, आप तो गांव गांव जाती हैं, क्या आपने कभी कोई ऐसा मामला देखा? वैसे रुकिए रुकिए भाई, मैं तारुफ तो करा दूं। आज हमारे साथ में स्टूडियो मौजूद है हमारी टीकन भाभी। सो कैसी हैं आप?
2: बहुत ठीक हूँ भैया, आप अपना बताइए कैसे हैं आप?
1: बस भाभी बहुत अच्छा हूँ। आप जिस तरह से जानकारियाँ देती हैं उससे मेरा और हमारे गांव वालों का, हमारे सभी श्रोताओं का बहुत भला होता है और हमारा बहुत पैसा बच जाता है बीमारियों के खर्च में। लेकिन आज चूंकि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप भाभी गांव-गांव जाती हैं, तो क्या आपने कभी कोई ऐसा काला आजार का मामला देखा है?
2: अरे आरजी भैया, देखा ही नहीं, बहुत करीब से देखा है। हमारे पड़ोस में एक औरत थी, नाम था सरोज। पहले तो उसे बस हल्का बुखार आता था, लोग बोले मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसका बुखार कम ही नहीं हुआ, उसका वजन गिरने लगा, चेहरा पीला पड़ने लगा, पेट फूलने लगा। हमने कहा सरोज चलो अस्पताल चलते हैं, लेकिन उसके घर वाले बोले अरे ये तो किसी की नजर लग गई है या कोई साया है। महीनों तक इलाज नहीं हुआ, जब अस्पताल पहुंची तब तक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इलाज हुआ, जान तो बच गई, लेकिन बाद में उसके शरीर पर दाने निकल आए, चेहरा खराब हो गया। डॉक्टर बोले ये PKDL है, यानी काला आजार के बाद की बीमारी। आज भी वो घर से कम ही निकलती है, लोग उसे देखकर फुसफुसाते हैं। सोचिए आरजी भैया, अगर समय पर इलाज हो जाता तो आज ये सब ना होता।
1: सच में भाभी ये बहुत दर्दनाक है। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं बल्कि ये एक हकीकत है। तो आज हम समझेंगे कि काला आजार क्या होता है और ये कैसे होता है और साथ ही साथ इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। सो टीकन भाभी, सबसे पहले ये बताइए कि काला आजार होता क्या है?
2: देखिए आरजे भैया, काला आजार एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसे हम आम भाषा में भले ही काला आजार कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम विसरल लीशमैनियासिस है। ये बीमारी एक बहुत ही छोटे कीड़े के काटने से फैलती है जिसे रेत मक्खी या सैंड फ्लाई कहा जाता है। अब ये मक्खी इतनी छोटी होती है कि कई बार हमें दिखती भी नहीं है, और खास बात ये है कि ये ज्यादातर रात के समय काटती है जब लोग सो रहे होते हैं। जब ये रेत मक्खी किसी इंसान को काटती है तो इसके साथ एक छोटा सा परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये परजीवी धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे लीवर, प्लीहा यानी तिल्ली और खून को नुकसान पहुंचाने लगता है। यही वजह है कि शुरुआत में हमें ये बीमारी साधारण लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को काफी कमजोर कर देती है।
1: अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन टीकन भाभी, इसके लक्षण आखिर हम कैसे पहचान सकते हैं? लोगों को कैसे पता चले कि ये काला आजार है?
2: बहुत अच्छा सवाल है आरजे भैया। देखिए, इसके लक्षण एकदम से तेज नहीं आते बल्कि धीरे धीरे दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को लंबे समय तक बुखार बना रहता है जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। इसके साथ साथ व्यक्ति का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और वो पहले जैसा काम नहीं कर पाता है। धीरे धीरे पेट भी फूलने लगता है क्योंकि अंदर की तिल्ली और लीवर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा खून की कमी भी हो जाती है जिससे चेहरा पीला पड़ने लगता है और व्यक्ति बहुत ही कमजोर दिखने लगता है। यही वजह है कि कई बार लोग इसे साधारण बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है।
1: मतलब देखने में तो ये सामान्य बुखार जैसा लगता है, लेकिन असल में अंदर से बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, क्यों?
2: बिल्कुल सही समझे आप। और सबसे चिंता की बात तो ये है कि अगर समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो करीब 95% मामलों में ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए लक्षणों को पहचानना और समय पर जांच कराना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो अलग अलग स्थानों पर ज्यादा पाई जाती है। अगर हम इस काला आजार की बात करें तो ये बीमारी किन इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है?
2: भैया, भारत में ये बीमारी खास तौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ज्यादा पाई जाती है। इन राज्यों में करीब 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के खतरे में हैं।
1: इतने सारे लोग जोखिम में हैं? ये तो सच में चिंता का विषय है।
2: हाँ अर्जी भैया, और खास बात ये है कि ये बीमारी ज्यादा उन लोगों को प्रभावित करती है जो कच्चे घरों में रहते हैं, जिन घरों की दीवारों में दरारें होती हैं, जहाँ साफ सफाई की कमी होती है और जहाँ पशु घर के बहुत पास रखे जाते हैं, वहाँ ये रेत मक्खी आसानी से पनपती है और ऐसे वातावरण में इस बीमारी का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
1: तो भाभी, अगर किसी को लगे कि ये लक्षण उसे है तो उसे आखिर क्या करना चाहिए?
2: सबसे पहले तो बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। आजकल वहाँ पर बहुत ही आसान और तेज जांच की सुविधा उपलब्ध है। एक ऐसा टेस्ट होता है जो लगभग 10 मिनट में ये बता देता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं। और सबसे जरूरी बात ये है कि इसका इलाज सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह मुफ्त किया जाता है।

0: लेकिन एक बात बताइए, कई बार लोग सोचते हैं कि जांच में बहुत वक्त लगेगा या बहुत पैसे लगेंगे, तो क्या सच में जांच इतनी मुश्किल होती है?
1: अरे नहीं नहीं आरजे भैया, अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही। पहले के समय में जरूर जांच में थोड़ा समय लगता था, लेकिन अब सरकार ने इतनी सुविधा दे दी है कि गांव के पास ही अब सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत जल्दी काला आजार की जांच हो जाती है। आजकल एक खास तरह का टेस्ट होता है जिसे हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस उंगली से एक छोटा सा नाखून का सैंपल लिया जाता है और करीब 10 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं।
0: सिर्फ 10 मिनट में? ये तो सच में बहुत आसान हो गया।
1: हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि अब किसी को भी जांच कराने में डरने या देरी करने की जरूरत नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि शहर जाना पड़ेगा, बड़े अस्पताल में लाइन लगानी पड़ेगी, लेकिन अब ये सुविधाएं गांव के पास ही उपलब्ध हैं।
0: लेकिन टीकन भाभी, क्या ये टेस्ट पूरी तरह भरोसेमंद है?
1: देखिए, ये टेस्ट बहुत हद तक सही परिणाम देते हैं और शुरुआती पहचान के लिए बहुत उपयोगी है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू कर सकते हैं, और अगर किसी केस में डॉक्टर को पुष्टि की जरूरत लगे तो वो आगे की जांच भी करवा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि ये टेस्ट हमें समय पर बीमारी पकड़ने में मदद करता है, जिससे इलाज जल्दी शुरू हो सके और बीमारी गंभीर होने से पहले ही रोक दी जाए।
0: मतलब अब सबसे बड़ी बाधा यानी देर से पता चलना, वो भी काफी हद तक खत्म हो गई है, क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं तो हमेशा लोगों से यही कहती हूँ कि अगर किसी को 2 हफ्तों से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो रहा हो या कमजोरी महसूस हो रही हो, तो बिना सोचे समझे सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाएं और टेस्ट कराएं। डरने की नहीं, समझदारी दिखाने की जरूरत है।
0: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। तो क्या आशा दीदी भी इसमें मदद करती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, आशा दीदी और दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर ऐसे लक्षण वाले लोगों की पहचान करते हैं। वो लोगों को समझाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने में मदद करते हैं और कई बार खुद टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अगर किसी को जाने में दिक्कत हो तो आशा दीदी से मदद जरूर लेनी चाहिए, वो आपके सबसे करीब की स्वास्थ्य साथी हैं।
0: ये तो बिल्कुल सही बात कही और बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब अब जानकारी, जांच और इलाज तीनों ही गांव के पास उपलब्ध हैं, क्यों भाभी?
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि अब काला आजार को हराना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। बस जरूरत है कि लोग समय पर कदम उठाएं।
0: बिल्कुल, लोगों के बारे में तो आपने बताया कि लोग समय पर कदम उठाएं, पर साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या सरकार इस बीमारी को खत्म करने के लिए कुछ कर रही है?
1: जी, सरकार इस दिशा में काफी काम कर रही है। एक बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है इस समय, जिसका नाम है राष्ट्रीय काला आजार उन्मूलन कार्यक्रम, और ये NCVBDC के तहत आता है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य ये है कि हर ब्लॉक में काला आजार के मामले 10,000 लोगों में से एक से भी कम हो जाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने 2023 में ये लक्ष्य हासिल भी कर लिया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है।
0: क्या बात है भाभी, ये तो सच में गर्व की बात है।
1: हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। अभी भी सावधानी बहुत जरूरी है। सरकार हर साल लाखों घरों में स्प्रे करवाती है। करीब 3.5 से 3.8 करोड़ लोगों के घरों में दीवारों पर दवा का छिड़काव किया जाता है, जिससे रेत मक्खियां खत्म हो सके और बीमारी फैलने से रोकी जा सके।
0: तो आम लोग खुद क्या कर सकते हैं भाभी इससे बचने के लिए?
1: बहुत आसान उपाय हैं, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहले तो घर की दीवारों की दरारों को भरना चाहिए, ताकि मक्खियों को छिपने की जगह ना मिले। घर और आसपास की साफ सफाई बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा पशुओं को घर से थोड़ा दूर ही रखना चाहिए, ताकि मक्खियां इंसानों के पास ना आए। रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जमीन पर या खुले में बाहर सोने से बचें। इन छोटे छोटे उपायों से हम काला आजार जैसी गंभीर बीमारी से भी खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
0: तो टीकन भाभी, एक बात और बताइए, गांव में लोग इस बीमारी को लेकर किस तरह की गलत फहमियां रखते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग बीमारी से ज्यादा डर और उसके बारे में सुनी सुनाई बातें बहुत करते हैं। इसको लेकर आप क्या मानती हैं?
1: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे भैया।

0: और यही सबसे बड़ी समस्या है। हमारे गांवों में आज भी बहुत लोग कालाजार को भूत प्रेत साया या किसी बुरी नजर का असर मान लेते हैं। जब किसी को लंबे समय तक बुखार रहता है, शरीर कमजोर हो जाता है और पेट फूल जाता है, तो लोग सीधे डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूंक या ओझा गुनी के पास चले जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, अरे भाई, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक बीमारी है और इसका इलाज भी है। अगर समय पर सही इलाज मिल जाए तो व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, और शायद इसी वजह से लोग देर कर देते हैं इलाज कराने में।
0: बिल्कुल, और एक और बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग सोचते हैं कि ये बीमारी छूने से फैलती है, इसलिए मरीज से दूरी बना लेते हैं। कुछ लोग तो मरीज को अलग कमरे में रखने लगते हैं या उससे बात तक नहीं करते, लेकिन सच्चाई तो ये है कि काला आजार छूने, साथ बैठने या खाना खाने से नहीं फैलता, ये सिर्फ रेत मक्खी के काटने से फैलता है। इसलिए मरीज से डरने या उसे अलग करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसे सहारा देने की जरूरत है।
1: क्या बात है भाभी, बिल्कुल अच्छी और सच्ची बात कही आपने। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये बात और जानना चाहूंगा कि और आखिर कौन कौन सी गलत धारणाएं होती हैं लोगों में काला आजार को लेकर।
0: कई लोग ये भी मान लेते हैं कि अगर बुखार अपने आप कम हो गया तो बीमारी ठीक हो गई, जबकि अंदर से बीमारी बनी रहती है और बाद में और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। कुछ लोग दवा शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है दवा बीच में ही छोड़ देते हैं। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे बीमारी दोबारा लौट सकती है और जटिल हो सकती है। और एक बात और, कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ गरीब या कमजोर लोगों को ही काला आजार होता है, कि अगर माहौल सही नहीं है और मक्खियां पनप रही हैं तो कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है।
1: अच्छा, तो आखिर इसका समाधान क्या है? लोग इन गलत फहमियों से आखिर कैसे बाहर आए?
0: समाधान बहुत साफ है भैया, सही जानकारी और जागरूकता। सबसे पहले तो जैसे ही किसी को 2 हफ्तों से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो या पेट फूलने लगे, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। किसी भी तरह के झाड़ फूंक या देरी से बचें। दूसरी बात, अगर डॉक्टर इलाज शुरू करे तो पूरा कोर्स पूरा करे, चाहे बीच में कितना भी आराम क्यों ना मिल जाए। और तीसरी बात, घर और आसपास की सफाई जरूर रखें, दीवारों की दरारें भरें और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, मरीज का साथ दें, उसे अलग या कमजोर महसूस ना होने दें।
1: बहुत ही जरूरी बात बताई भाभी आपने। लेकिन आपने शुरुआत में एक दुखद कहानी सुनाई थी, क्या कोई ऐसी कहानी भी है जहां जागरूकता ने किसी की जिंदगी बदल दी हो?
0: हाँ बिल्कुल है, और ये कहानी सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। हमारे पास के ही एक गांव में मेरी एक सहेली है, रीना। कुछ साल पहले उसके इलाके में काला आजार के कई मामले सामने आए थे, जिससे पूरा गांव डरा हुआ था। लेकिन रीना ने डरने के बजाय समझदारी दिखाई। उसने पहले से ही अपने घर की दीवारों को ठीक करवाया, दरारें भरवाई और घर के आसपास साफ सफाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने मच्छरदानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आशा दीदी की हर बात को ध्यान से सुना और अपनाया भी। एक दिन उसे भी हल्का बुखार हुआ। पहले तो वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन इस बार उसने देर नहीं की, तुरंत स्वास्थ्य केंद्र गई, टेस्ट करवाया और रिपोर्ट नेगेटिव आई। वो हंसते हुए मुझसे बोली, यार टीकन, इस बार मैं डरने नहीं वाली थी, क्योंकि मुझे पता था कि क्या करना है और कहाँ जाना है। आज वही रीना अपने पूरे गांव में लोगों को समझाती है कि डरना नहीं, बल्कि समय पर सही कदम उठाना है।
1: सच में यही तो असली बदलाव है, जब एक व्यक्ति जागरूक होता है और पूरे गांव को जागरूक बना देता है।
0: बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी ताकत भी है, जागरूकता। याद रखिए, काला आजार खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर हम समय पर पहचान ले और इलाज करा ले तो इसे पूरी तरह हराया जा सकता है।
1: और यही सबसे बड़ा संदेश है आज के कार्यक्रम का, समय पर जांच और सही इलाज आपकी जिंदगी बचा सकता है।
0: और साथ ही सही जानकारी अपनाइए, गलत फहमियों से दूर रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाइए।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों आज से ही एक कदम बढ़ाइए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जागरूक बनिए।
2: जागरूक बने, सुरक्षित रहे और काला आजार को मिलकर हराएं।
1: तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस शो को हम यहीं पर पूरा करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर शपथ लेते हैं।
3: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई
4: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, HIV एड्स और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमर निधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
5: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूँ जिससे वो लाभ उठा सकें।
4: हमारा पहला सवाल है कि अनीमिया की समस्या काफी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?
5: ये बहुत ही अहम सवाल है। अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना या कुछ पुरानी बीमारियां भी अनीमिया का कारण हो सकती हैं।
4: क्या अनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि अनीमिया है?
5: अनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को अनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें, इसीलिए अनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है।
4: जी, तो क्या अनीमिया को रोकने या अनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को?
5: जी हाँ, बिल्कुल। अनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की अनीमिया में डॉक्टर ज्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं।
4: तो मैम, अनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए को ही होता है या फिर पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है?
5: ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं, इसलिए समय समय पर सभी को अनीमिया की जांच करवानी चाहिए।
4: तो मैम मतलब अनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं?
5: ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फोलिक एसिड की खुराक दी जाती है। और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों में किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं, उनकी जांच, कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग भी की जाती है। स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम विफ्स के नाम से भी जानते हैं, ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है।
6: मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र से परिवार किस तरह आयरन फोलिक एसिड की गोलियां, कृमिनाशक दवाएं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी जैसी सेवाएं ले सकता है?
5: ये आसान है। परिवार जो है वो नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर या PHC में मुफ्त अनीमिया की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर IFA की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां और कृमिनाशक गोलियां देती हैं और घर पर ही बच्चों का वजन और ऊंचाई भी नापती हैं।
4: तो क्या इसका इलाज घर पर ही हो सकता है? मतलब हमारा अगला सवाल यही था कि एनीमिया मतलब इसके जो इलाज है, उपचार है, वो कैसे कराया जा सकता है? निःशुल्क जांच कहाँ होती है? तो इसके बारे में
5: इसको मैं दो भागों में कवर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो यह है कि अनीमिया का उपचार किसी भी सरकारी केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। एक बार जब सब सेंटर या PHC या आंगनवाड़ी केंद्र से दवा मिलने लगती है तो उसको बार बार आशा और आंगनवाड़ी इसका वितरण कर सकते हैं। घर जाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर किसी को अनीमिया की शंका है, वो सबसे नज़दीकी सब सेंटर, PHC, CHC या ज़िला अस्पताल में जाएं, तो वहाँ हीमोग्लोबिन की जांच और मुफ्त इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध है। जो गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित मरीज होते हैं, उनको आगे रेफर कर दिया जाता है।
4: जी, तो मैम जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज्यादा अनीमिया पाया जाता है, तो क्या इनके बचाव के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता हमें सरकार से मिलती है? कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनके होता है?
5: जी हाँ, बिल्कुल होता है। ICDS और जो सरकारी मुहिम है पोषण अभियान के तहत, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, जिसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी कहते हैं, उसके साथ साथ मुफ्त आयरन फोलिक एसिड की गोलियां, स्वास्थ्य की जांच और सलाह दी जाती है।
6: मैम, एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जो लोग अधिक मोटापे की समस्या से जूझते हैं, उन्हें भी अनीमिया हो सकता है या उन्हें अनीमिया होने के अधिक चांसेस हैं?
5: थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है कि, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जो मोटापा है वो अनीमिया से बचाव नहीं करता, बल्कि सूजन की वजह से शरीर में आयरन का उपयोग कम हो जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोटे लोगों को भी अनीमिया हो सकता है।
4: तो आजकल की जो बहुत आदतें हैं जंक फूड खाने की लोगों में, तो क्या आज की युवाओं में जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उनको अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं उनमें?
5: आजकल की पीढ़ी के लिए, खास करके युवा की पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी बात है जो आपने पते की बात पूछी है। जंक फूड में कैलोरी तो बहुत होती है, लेकिन ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं होते। इसलिए आयरन युक्त और पौष्टिक भोजन की जगह अगर जंक फूड लिया जाए तो खून की कमी का खतरा, यानी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जंक फूड होता है, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स, मोमोज, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनमें अक्सर मीठा या नमक अधिक मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है और वो हमारे स्वास्थ्य को और आगे खराब करता है अनीमिया के साथ साथ। तो इसलिए जंक फूड को ये तो मेरा कहना उचित नहीं होगा कि बिल्कुल ना लें, लेकिन घर पे बने खाने का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें, इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा।
4: एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए, या मतलब अगर हमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम खुद से भी ले सकते हैं, और कितनी गोलियां लेनी चाहिए अगर हम लेते हैं तो दिन में?
5: आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन समुदाय स्तर पर ANM द्वारा वितरित किया जाता है इनको, और जो कि हीमोग्लोबिन की जांच के बाद ही किया जाता है। जो हमारा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है उसमें गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 6 महीने गर्भावस्था के दौरान और पहले 6 महीने बच्चे के जन्म के बाद जब वो स्तनपान कराती हैं, 180 और 180 दोनों को मिला के 360 गोलियों का सेवन आयरन फॉलिक एसिड का कराया जाता है। इसके अलावा किशोरियों को और जो और ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चा या प्रजनन वर्ग में जो आती हैं, जो जो भी माँ बनने की आशंका हो सकती है, उनको सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। लेकिन ये एक ज़रूरी बात।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: गोंडा शहर की धड़कन।
6: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है आरजे अंशिका। तो मैं हूँ आपकी आरजे समता
1: और मैं हूँ आरजे अंशिका
0: और आपका पसंदीदा शो शुरू हो गया है जिसका नाम है सुन सहे। क्या भैया सो रही हो क्या? आपका पसंदीदा शो शुरू हो गया है जिसका नाम है
1: सुन।
0: बोलो बोलो बोलो बोलो
1: बोली बोली
0: बोलो
1: बोली बोली जिसका नाम है सुन सहेली।
0: जी हाँ, आज ये किसी और उसमें है। आज इसको डांट पड़ने का मुझे लग रहा है सीजन आ गया है। बहुत दिन से कह रही थी ना मुझे डांट नहीं पड़ी है, डांट नहीं पड़ी है, तो आज इसको ये पढ़ने वाली है इसको। तो भाई आइए, आपके पसंदीदा शो शुरू हो चुका है सुन सहेली और मैं हूँ आपकी आरजे समता
1: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
0: तो इस प्यारी सी दोपहर में, क्योंकि सावन की जो धूप आती है ना वो हल्की भी होती है और बढ़िया वाली भी होती है, तो इस दोपहर में आइए हम एक साथ एक फ्रेम में विश कर देते हैं शुभ दोपहरिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है हमारा ब्यूटीफुल सा वेनेसडे और वेनेसडे के दिन हम लेकर के आते हैं विमेन सेंट्रिक स्पेशली विमेन्स का शो। तो भाई आइए शुरू कर देते हैं आज के पहले सेगमेंट जो कि हमारी होती है पोयम, और आज महिलाओं को समर्पित ये पूरा शो। भाई वैसे भी होता है लेकिन आज के दिन हम स्पेशली महिलाओं को ही समर्पित करते हैं, क्योंकि आज के दिन बुधवार के दिन हम उनके लिए कुछ लेकर के आते हैं नया, बेहतर और बहुत कुछ खास।
1: बिल्कुल, तो आज कुछ ऐसा ही है हमारे पास। तो आज उम्मीदों का ही रंग है लेकिन कुछ नया रंग है। कहते हैं ना कि हर दिन महिलाओं की लाइफ में स्पेशली मैम जो होता है वो हर दिन कुछ नया ही होता है। तो आज भी कुछ ऐसा नया ही रंग है, तो आप इस नए रंग को जानेंगे। तो आइए जानते हैं, और लेकिन उससे पहले मुझे लगता है रास्ते की जरूरत है।
0: जी एग्जैक्टली,
1: तो रास्ता दे देते हैं क्योंकि आज मुझे लगता है कि कुछ रास्ता मुश्किल होने वाला है।
0: क्यों
1: ऐसे
0: डांट खाई? इसीलिए
1: शगुन हो गया है आज काफी दिन,
0: बहुत दिन से कह रही थी ना, तो वो शगुन होना
1: नजर लग गई। कह रहे ना कई बार अपने
0: नहीं नहीं जरूरी होता है वो एक बीच में एक एक डोज मिलना जरूरी होता है ताकि वो सेहत अच्छी रहती है फिर।
1: ओके
0: जी चलें फटाफट।
1: जी मैम, तो हम फटाफट चलते हैं और आज का रास्ता देते हैं कि उम्मीदें होती हैं संग तो बिगड़े हुए भी बन जाते हैं रंग। उम्मीदें होती हैं संग तो बिगड़े भी बन जाते हैं रंग, और जब आप हो संग तो फिर तो हम ढूंढेंगे बहुत ही सारे उम्मीदों के नए रंग। तो आइए चलते हैं इसी बात पर आरजे समता के संग, जानते हैं क्या है नया रंगा रंग।
0: वेरी गुड, वेरी नाइस,
1: थैंक यू थैंक यू।
0: ये डांट खाने के बाद इसका असर है देख लो। मतलब इतने दिनों से हम लोग ये शो को कंडक्ट कर रहे हैं लेकिन कभी कभी इनकी जो आदतें हैं ना वो फिर से वो बैक टू बैक हो जाती हैं। खैर कोई नहीं, आइए तो आज जैसा कि है नई उम्मीदों का सवेरा, जो कि हमारी आज पोएम का टॉपिक है वो है नई उम्मीदों का सवेरा। शादी की शहनाई, मुझे पता था यही सब आज मुझे निकल के मिलने वाला है। ये शादी शहनाई दुल्हन दूल्हा पता नहीं क्या क्या। शादी की शहनाई जब आंगन में बजती है, एक लड़की तब दुल्हन के रूप में सजती है। आंखों के लिए नई उम्मीदों का प्यारा सा सवेरा, पर दिल के कोने में होता है अनजान सा अंधेरा। मायके का वो लाड प्यार पीछे छूट जाता है, बचपन की सहेलियों का साथ भी दूर हो जाता है। एक नए सफर की ओर जब कदम वो बढ़ाती है, उम्मीदों के साथ एक अनजाना डर भी वो पाती है। कैसा होगा नया घर, कैसे होंगे वहां के लोग, क्या समझ पाएंगे। कैसा होगा नया घर, कैसे होंगे वहां के लोग, क्या समझ पाएंगे सब आपके जज्बातों का संजोग। क्या बिटिया जैसा ही प्यार उस घर में मिल पाएगा, यही सोचकर उसका मासूम दिल थोड़ा घबराएगा। पर यह नया सवेरा उसके जीवन को महकाएगा, हर डर धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाएगा। प्यार और विश्वास वो नया संसार सजाएगी, वो लक्ष्मी बनकर उस घर में खुशियां ही खुशियां लाएगी।
1: वाह जबरदस्त, और बहुत ही प्यारा, और मैम सुना रही थी तो और भी प्यारा लग रहा था, स्पेशली पहले की दो लाइन।

0: वो शादी ब्याह दुल्हा दुल्हन यही सब दिमाग में चल रहा है तुम्हारे आजकल। हाँ और क्या, वही सब चल ही रहा है, वही सब तुम्हारे दिमाग में है।
1: हाँ दिमाग में तो कुछ ऐसा ही, मतलब जस्ट मैंने कल कुछ देखा।
0: क्या कल क्या देखा तुमने, पे कहाँ पे सपना देखा है?
1: नहीं सपना नहीं देखा मैम, जस्ट देखा मतलब मैं कहीं गई थी तो मैंने ऐसा कुछ देखा।
0: क्या?
1: जब मैं वापस आ रही थी तो कल मैं हनुमानगढ़ी मंदिर गई थी, तो वहाँ से जब मैं वापस आ रही थी तो वो जैसे होता है ना लड़का लड़की मिलते हैं, मतलब फर्स्ट मीटिंग जब होती है।
0: अच्छा
1: तो,
0: किसी की सगाई वगाई हो रही थी।
1: हाँ तो वहाँ भी मंदिर है तो मतलब ये सब होता रहता है। तो मैं वापस आई तो मैंने देखा कि दो लोग बैठे थे और फर्स्ट मीटिंग चल रही थी,
0: बातें मतलब
1: बातें हो रही थी, और मतलब दोनों फैमिली बैठी हुई थी और लड़की बेचारी बिल्कुल चुपचाप वो सहमी सी एकदम बैठी हुई थी। तो मैंने जस्ट ये सोचा कि इतना सहमने की तो फिर कोई जरूरत नहीं होती ना, मतलब थोड़ा सा एक वो रहना चाहिए। और दूसरी तरफ लड़का आराम से मस्ती से बैठा हुआ था, मतलब उसको ये नहीं लग रहा था कि उसको भी कोई ऐसा फियर है, लड़की को देखकर लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा उसको फियर है। और सब लोग उसी से क्वेश्चन कर रहे थे कि बेटा ये बताओ वो बताओ, तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ, मतलब लड़के से भी पूछ रहे थे लेकिन थोड़ा सा जस्ट ये हुआ कि हाँ लड़कियाँ थोड़ा सा डर जाती हैं मतलब जब ऐसी कोई बात होती है। तो उस पर मैंने सोचा कि
0: तो तुम्हें उसमें मेरी कहाँ याद आ गई?
1: याद आ गई, मतलब आपकी याद तो मुझे ऐसे भी आती रहती है।
0: नहीं तो वैसे वहाँ क्यों मेरी याद आई, मुझे समझ
1: आ गई बस, अब कुछ बता दूँ क्यों आ गई?
0: बता दो।
1: बता दूँ?
0: हाँ हाँ
1: बता देती हूँ, वरना कहीं मैम फिर से
0: डांटना पड़ जाए।
1: डांटना पड़ जाए तो बस मुझे ऐसे ही याद आ गई कि कभी तो जैसे मैम ने कल बोला था ना।
0: पर मेरी हाँ मुझे पता था कि तुम घूम फिर के वहीं आओगी। पर तुम्हें बता दूं कि मैं फर्स्ट मीटिंग हो सेकंड मीटिंग हो या फिर एक मुलाकात हो, मैं कभी भी सहमने वालों में से नहीं हूं। मेरे सामने वाले सहम जाएंगे,
1: ये तो मुझे पता है।
0: मेरे से जो मेरे सामने वाले है ना वो सहम जाएंगे कि आज समता मिलने आ रही है आज मुझसे। समझ में आया?
1: समझ में आया।
0: हाँ तो मैं नहीं सहमने वाली हूँ। सहमने वालों का दिन अब लड़कियों का नहीं होता है, अब लड़कों का है।
1: वो तो होता है मैम,
0: ठीक है। अब सहमने वाले वो युग चले गए कि हाँ लड़कियों की फर्स्ट मीटिंग है, सगाई के लिए देखने आ रहे हैं, उसको चलाओ, उसको बैठाओ, उसको नचाओ, उसको गवाओ, कि भाई एक घड़ा भी लेते हैं तो उसको ठोक बजा के लेते हैं। जी नहीं, नेवर। आज की नारी सशक्त नारी है, लड़कियों को चुनने का अधिकार है कि कौन सा लड़का मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। लड़कों को चुनने का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि एक लड़की ही अपना सब कुछ सर्वस्व छोड़ करके वो उसके घर को सजाती है, उसके आंगन को हमेशा के लिए एक फैमिली देती है, एक परिवार देती है। लड़का अपने घर को नहीं छोड़ के आता है, लड़की जाती है छोड़ करके और वो उस आंगन को महकाती है दियों से, प्यार से, उम्मीदों से, सब चीजों से। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सम्मान लड़कों का भी है, ये नहीं बोलना चाह रहे कि लड़कों का सम्मान नहीं है, भाई शादी तो आके लड़के से ही होगी ना। लेकिन अगर देखा जाए तो ज्यादा सम्मान की जैसे कहता ना सहमना वहमना आज के युग में नहीं है बिल्कुल भी। लड़के को लड़की भी चाहती है कि लड़के को रिस्पेक्ट करे एंड लड़का भी उसकी रिस्पेक्ट करे। और आजकल जैसे कि बहुत सारे केसेस भी सुनने को मिल रहे हैं, तो कहीं पे भी शादी किसी भी बच्ची की हो, मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल उसके बैकग्राउंड को, उसके घर वालों को सोच समझ करके, देख दाख करके ही करना चाहिए और उन बच्चों को टाइम देना चाहिए एक दूसरे को समझने का एटलीस्ट। क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि आजकल के बच्चों को ये सब समझाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी अपने आप के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सोच के रखते हैं। पर जैसे कि बहुत सारी आजकल केसेस सुनने को आते हैं, लड़की ने उसको ये कर दिया, लड़की ने, तो वो लड़कियां भी सही नहीं हो रहा है जो कि आजकल हो रहा है, मतलब देश दुनिया में हम लोग सुनते रहते हैं, आए दिन सोशल मीडिया पे केसेस आते रहते हैं। पर हमें अपनी मर्यादा में रह करके ही अपने सामने वालों को प्यार सम्मान और उसके घर को समझना होता है।
1: राइट तो मुझे लगता है शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई और मैम ने बहुत ही अच्छे से आपको अभी बताया जो मैं बताना चाहती थी, वो भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से ब्रीफ कर दिया, क्योंकि शायद इतने अच्छे से मैं ब्रीफ नहीं कर पाती। तो इसीलिए ना कि हमारी, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी मैम की शादी जिससे भी होगी ना, पहले तो बहुत लकी होगा और दूसरा ये है कि बेचारा थोड़ा सोचेगा भी। अच्छा वाला मैम अब ऐसे मुझे मत देखिए,
0: ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा। आगे नहीं आता
1: आगे?
0: बस कुछ नहीं,
1: तुमको मैं चुरा लूंगा।
0: अच्छा तुम्हें आता है गाना? दिल में बसा लूंगा।
1: वाह तो दिल में बसाने वाला जरूर मिलेगा। और हमारी तो मैम इतनी अच्छी है ना कि वो थोड़ा सा भी अगर उसे डांट देंगी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हुआ, तो वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगा लेकिन फिर उसको एहसास होगा कि अरे चलो ना प्यार वाला डांटा है, प्यार वाला, ऐसा भी एहसास होगा। किसी ने मुझसे कहा था, मुझसे पूछा था किसी ने, डांटती है, तो मैंने जवाब दिया था प्यार से डांटती है,
0: प्यार से डांटती है।
1: उधर से फिर
0: पर पता नहीं क्यों मेरा प्यार वाला डांट ना, मेरी असली वाली डांट जो होती है ना वो कोई बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है, पता नहीं क्यों ऐसे। हाँ ऐसा ही कुछ है। और प्यार वाली मैं अब प्यार वाला ही डांटती हूँ, अगर अपना रौद्र रूप में अगर डांटना शुरू कर दिया तो शायद ही फिर कोई, फिर आने वाले 4-5 दिन तो बिल्कुल मेरे से दूरी बना के रखते हैं लोग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हम दोनों को, खास करके अंशिका और मुझे। तो आइए चलते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की और एंड देन आपको एक प्यारा सा गाना सुनाएंगे।
1: तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ भी जो अभी हम बात कर रहे थे कुछ उसी से रिलेटेड है कि डर को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। और आप एक नए घर जाएंगे, आपको एक नया, हो सकता है सब कुछ बदला हुआ मिले, लेकिन फिर भी आजकल जो कहीं ना कहीं झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं या मैरिड लाइफ जो बिगड़ती है स्पेशली नई शादी में, वो इसलिए बिगड़ती है क्योंकि हम बहुत सारी उम्मीदें लेकर जाते हैं, मेरा होने वाला पति ऐसा होगा, ये करेगा वो करेगा, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी पर भी नहीं लेकर जानी चाहिए। अपनी उम्मीदों को थोड़ा सा काबू रखिए क्योंकि जहाँ ज्यादा उम्मीदें होती हैं वहाँ कई बार उम्मीदें बोझ बन जाती हैं, इसलिए अपनी उम्मीदें रखें ऐसा नहीं है, बट थोड़ी सी लिमिट में रखें ताकि ना आपको प्रॉब्लम हो और ना ही सामने वाले को प्रॉब्लम हो।
0: एक्चुअली वो चीज़ एक बार मैंने कहीं पढ़ा भी था कि एक्सपेक्टेशन एंड अटैचमेंट ऑलवेज हर्ट। एक्सपेक्टेशन एंड अटैचमेंट ऑलवेज हर्ट, क्योंकि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं और अटैचमेंट होता है तो ही वहाँ पर दिल दुखता भी है। तो इसीलिए नो एक्सपेक्टेशन एंड नो ज़्यादा वाला टचिंग वगैरह कुछ, ठीक है, अटैचमेंट। तो बिल्कुल आपका जो जो कि आपकी उम्मीदों पर मान लीजिए कोई अगर खरा नहीं भी उतर रहा है तो वो उतना आपका दिल नहीं दुखेगा, और ज्यादा उम्मीदें ज्यादा अटैचमेंट दुख का कारण।
1: समझ में आया।
0: इसीलिए उम्मीदों को अपने कंट्रोल करें, अपने जज्बातों को कंट्रोल करें और अपने शो को आगे बढ़ाएं। और लेते हैं आप ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे आज के सेकेंड ब्यूटीफुल टॉपिक पर। तो बस हम यू गए यू आए।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है
7: RJ अंशिका।
3: तो फटाफट शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट को लेकर के। आइए देखते हैं कि आज का सेगमेंट क्या है।
7: आज है हमारे पास कि जो अभी हमने आपको इतनी प्यारी पोएट्री सुनाई वो भी शादी पे थी, ब्रेक पे जाने से पहले जो बातें की वो भी शादी पे थी, बस ब्रेक पे जाने से पहले जो सॉन्ग गाया वो शादी वाला नहीं था। तो शादी शादी शादी आज महिलाओं का दिन है भाई, क्यों चल रही है, उसका भी तो कुछ रीजन है। तो आज रीजन ये है कि हमारा पहला टॉपिक ही है जो कि है प्री वेडिंग एंजाइटी, यानी कि शादी के पहले का डर, जो कि दोनों में होता है। मतलब ऐसा तो सिर्फ कहा जाता है कि लड़कियों में होता है, ऐसा नहीं है, लड़कों में भी होता है, क्योंकि उन्हें भी किसी नई मतलब नए इंसान के साथ जुड़ना होता है, तो कहीं ना कहीं दोनों में होता है। तो क्या होता है, कैसे शुरू होता है, ये मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। और फिर आता है जो पार्ट की हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो भाई दूर करने का, भगाने का, ठीक करने का, ये डिपार्टमेंट हमने किसी को दे रखा है
3: जी,
7: कोई हमारे पास है जो बहुत अच्छे से ये काम करती है। तो चलिए बताते हैं कि ये है क्या।
3: ओके,
7: तो सबसे पहले ये डर शुरू कहाँ से होता है। देखिए, जब जैसे अचानक से जब किसी से मैम बात होती है और अचानक से आपसे कहा जाता है कि लड़की मिलने आने वाली है, या फिर हम कहते हैं ना कि अरे देखने जाना है, लड़की देखने जाना है, तो जैसे सडन किसी से अगर आप बात करते हैं तो उसमें वो डर नॉर्मल है। लेकिन कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें ये लगता है कि जो भी आएगी या आएगा, मतलब लड़की वालों को लगता है कि कैसा लड़का होगा और लड़के वालों को लगता है कि लड़की कैसी होगी, क्योंकि हमारे फैमिली कल्चर जो है उससे बिल्कुल शायद अलग आए। मतलब कहने का सी है कि किसी के घर में अगर सिंपल दाल भी बनती है तो वो तो अलग अलग तरीकों से बनती है। अगर मैं अपने घर की खाऊं या दूसरे के घर की खाऊं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो मुझे मिल ही जाएगा। तो कहने का सेंस यही है कि बिल्कुल अलग हो जाता है, हमें लगता है कि वो कैसे हमारे घर में एडजस्ट कर पाएगी, क्या समझ भी पाएगी या नहीं। और लड़की को तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही डर होता है, क्योंकि उसको ये भी होता है ना कि हम अपने मम्मी पापा का घर छोड़ के जाएंगे तो कैसे चीज़ें होंगी, कैसे हम समझ पाएंगे, क्या नई जगह एडजस्ट हो भी पाएंगे या नहीं, हमारे मम्मी पापा ने हमें किस तरह रखा है, हम जिनके घर जाएंगे वो कैसे ट्रीट करेंगे, हस्बैंड अगर मिल रहे हैं तो कैसे मिलेंगे, मतलब केयर करेंगे या नहीं, ये सारे सवाल होते हैं। और ये सारे सवाल ही आपके अंदर थोड़ा सा ही सही लेकिन डर जरूर पैदा कर देते
8: हैं। Exactly, और वैसे भी डर होने वाजिब भी है। अगर एक लड़की अपना सर्वस्व छोड़ के जाती है यहाँ पर, तो एक नई जगह पर, जैसे हम कोई भी एक पौधा कहीं से भी लेकर के आते हैं और उसकी जड़ें जो वहाँ होती हैं, और हम जब उसे उठाते हैं और उसे एक नई जगह पर जब हम उसे फिर से पोषित करते हैं, तो थोड़ा समय तो लगता है ना, उसके बाद ही उसमें फल फूल सब आते हैं।
7: जी मैम,
8: इस एग्जाम्पल को देख के देखो ना कि आप कहीं कभी भी आप अगर कहीं भी एक पौधा लेके आती हो, और शादी के बाद कहा जाता है कि लड़की का दूसरा जन्म शुरू होता है।
7: जी मैम,
8: तो इन सारे चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है, हमारे ज़िंदगी का एक वो पार्ट होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि वो एक वर्ड होता है जो मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं आ रहा है, संजीदगी वो वर्ड नहीं आ रहा था मेरे मुंह में, तो उससे वो हम अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं।
7: बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डर भी होता है और थोड़ा सा दबाव भी होता है, जिनका स्वभाव थोड़ा सा चुलबुला होता है।
8: एक मिनट, क्रिकेट लवर आप जो भी हैं, मंजू जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप रेडियो ज्ञानस्थली के फर्स्ट बर्थडे पर आई थी और आपने मुझे, आप मेरे से मिले थे, एंड ठीक है आप हमारी आप लिसनर हैं, एंड कमल नयन जी, एंड प्लीज़ आप सभी से, अभी तक मैं 3-4 दिन से देख रही थी तो आप लोगों के मैसेजेस आपस में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और अब आप लोगों की चैटिंग मेरे इस पे नहीं आएगी प्लीज़, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस होते हैं वो हमें पढ़ने को नहीं मिलते हैं, तो आप लोग प्लीज़ आपस में चैट ना करिए। अगर आपको आपस में चैट करनी है तो आप लोग पर्सनल जा करके आप चैट कर सकते हैं, बट इस चैट बॉक्स में इनफैक्ट, मतलब एटलीस्ट जब तक सुन सहेली चल रहा है तब तक तो नहीं।
7: तो नहीं होनी चाहिए बातें, क्योंकि ध्यान की ज़रूरत इधर है, इधर ध्यान दें और सुने और समझें, क्योंकि आप ही के काम की बात है ना मैम। हो सकता है आपके घर में भी आपकी बेटी हो या बेटा हो, तो आप उनके लिए सुन सकते हैं, उनको बता सकते हैं, और जो खुद सिंगल,
8: क्योंकि जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस होते हैं अंशिका, वो फिर ऊपर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा बातें होती हैं और फिर हम लोग चैट बॉक्स में आ नहीं पाते हैं, और हाँ। फिर आप लोगों की शिकायत होती है कि आप चैट बॉक्स में हमारे मैसेजेस को क्यों नहीं पढ़ते, तो भाई कैसे पढ़ें, जब आप लोगों की चैटिंग इतनी होती है तो हम लोग कैसे ही आपके मैसेजेस को पढ़ेंगे।
7: बिल्कुल, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैम ने अभी बताया कि एक पौधे को जब हम दूसरी जगह लगाते हैं तो कैसे बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम हो जाती है, तो ठीक उसी तरीके से है कि जो बहुत चुलबुले स्वभाव के होते हैं, जैसे मैम ने अभी एक वर्ड यूज़ किया था संजीदा, तो हम कहते हैं कि जो सीरियस है वो हर जगह एडजस्ट हो सकता है। सीरियस होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम चुपचाप ऐसे बैठे रहेंगे और बहुत सीरियस होंगे, चुपचाप होंगे, शांत होंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन उनके लिए ये प्री वेजिंग एंजाइटी बढ़ जाती है जो चुलबुले स्वभाव के थोड़े होते हैं, मतलब जैसे चंचल होते हैं, जैसे कहा जाता है ना कि अरे वो तो बहुत चंचल है, वो तो किसी की बात सीरियस नहीं लेते जो बातों को जल्दी, उनके लिए ये एंजाइटी डबल इसलिए हो जाती है क्योंकि उनके स्वभाव में ही होता है कि वो किसी की बात को सीरियसली नहीं लेंगे, इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि लड़कियों को शादी से पहले सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि
8: पता नहीं क्यों कहते हैं वो ऐसा,
7: कहते हैं मैम ऐसा,
8: पर मैं सीरियस नहीं हूँ और ना ही तुम सीरियस हो।
7: नहीं मैं तो नहीं,
8: हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसे सीरियस होने की कोई आवश्यकता नहीं है आजकल,
7: तो जंग लड़ने थोड़े ही जा रहे हैं।
8: नहीं एक्चुअली हाँ ये है, वो एक मैनर होता है कि अगर हाँ। सामने वाले, सामने हमारे लॉज बैठे हैं सब लोग, फैमिली के मेंबर्स, और हम वहाँ पर बैठ के ही हु कर रहे हैं, तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना फिर।
7: राइट, ये तो सही है, तो मैनर वाला होना चाहिए, डर वाला नहीं होना चाहिए, वैसे जो भी है, तो आपका स्वभाव सीरियस होना चाहिए जब आपकी स्पेशली शादी की बात हो, क्योंकि जब आप सीरियस होंगे तो चीजों को बेहतर समझ पाएंगे।
8: बिल्कुल,
7: क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि एक बेटी है, तो अपने घर में आप टूटा फूटा कच्चा पक्का भी अगर बनाओगे तो आपके पापा ये नहीं कहेंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन अगर आप अपने ससुराल में वो चीज करेंगे तो वो शायद आपके मुंह पे बोल दिया जाए कि अरे इतनी एज है और आपकी शादी हो गई और आपको बनाना नहीं आता है, वो सडन आपको बोल दिया जाएगा, वहां पर आपके लिए नहीं सोचा जाएगा कि उसे बुरा लगेगा, क्योंकि आप नए उस फैमिली में गए हो, और अनजान लोग जब हमसे मिलते हैं ना तो वो हमारे बारे में कोई भी राय बस एक मिनट में बना लेते हैं, कि अगर जैसे मान लीजिए 4 लोग बैठे हैं और कोई सामने से यूं ही गुजर जाता है तो कोई भी राय बस यूं बन जाती है कि अरे ये ऐसी है ना, वो वैसी है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा काबू रखने की भी ज़रूरत होती है।
8: बिल्कुल,
7: कई बार जब हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये डर हमारे अंदर बहुत बढ़ जाता है। जैसे कंट्रोल ना करने का मतलब है कि कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं कि बस ज़रा सा किसी ने कुछ बोल नहीं दिया कि बस शुरू हुए तो फिर रुके ही नहीं, तो वो एक बिहेवियर नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा एक लड़के को भी सोचना चाहिए कि जब एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आती है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको संभालें। अगर नई चीज़ वो आपके घर में कुछ नहीं जानती है तो नई चीज़ें धीरे धीरे आप बता दो, वो सीख जाएगी। लेकिन किसी से ये उम्मीद करना कि वो 2 दिन में 3 दिन में जो 25 साल जहाँ उसने गुजारे हैं वो उस जगह को उस चीज़ को भूल जाए, तो ये भी तो सही नहीं है ना मैम। ऐसा तो होता नहीं है कि 25 साल हम जहाँ रहे हैं, अगर कोई सामान भी 10 दिन घर में पड़ा होता है तो उसकी आदत हो जाती है, जब वो चला जाता है तो लगता है अरे वो जगह खाली लग रही है, तो कोई कैसे भूल सकता है। तो थोड़ा सा बताने और संभालने की ज़रूरत होती है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने ऊपर काबू करें, इससे आपको ज्यादा डर महसूस नहीं होगा। और दूसरी चीज है कि जिम्मेदारियों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। एक लड़की जब शादी करके जाती है तो उसको लगता है अरे यार सासू माँ ने कितना काम दे दिया, अब बताओ मैं कैसे करूंगी, दिन भर काम ही। कभी कोई सास कुछ कहते हैं, कभी मेरी पति कुछ कहते हैं, कभी मेरी नंदे कुछ कहती हैं, मैं कैसे इतना काम करूं। तो आप एक बार ये सोचिए कि क्या आप अपने घर पे काम नहीं करते थे? अगर आपके छोटे भाई बहन होते, मम्मी पापा होते, तो क्या आप उनके लिए काम नहीं करते? करते ना, तो बस वही करना है। लेकिन हमें लगने लगता है कि हम जो कि बहू हैं,
8: लेकिन लेकिन अंशिका ये भी है कि माँ बाप को अगर माँ बाप लोग समझे तब तो,
7: हाँ
8: माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते, माँ बाप को सास ससुर को माँ बाप समझे तब तो। यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर मेरी माँ होती तो ये काम करती, ऐसा हो जाता है। मतलब आजकल की बहुओं का ये है, हम तो देख रहे हैं कि सुबह अगर 9 बजे उठ रही हैं तो उनको मम्मी चाय लेकर के जाए और चाय पिलाए और उनसे ये कहे बहू बेटा उठ गई तुम, चलो तुम जाओ रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। और अगर ये सब नहीं मिल रहा है तो फिर ये कहा, ये सुनने को मिल रहा है कि भाई अगर तुम्हारी बेटी होती यहाँ पर तो
7: थोड़ा सा मैं इससे वो करती हूँ कि जैसे सबसे पहली बात तो आप सुबह अपने मायके में आप 10 बजे भी उठते हो, ठीक है, वो आपका घर था। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होता है मैम कि हम बेटी हैं तो सारी मनमानियाँ चलती हैं, लेकिन जब आप किसी के घर की बहू हैं तो सुबह उठना, चाय देना या जो भी उस घर का रूटीन है वो फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। हम क्यों कहते हैं कि एक लड़की को जिम्मेदार होना चाहिए? अगर वो अपने घर की जिम्मेदारियां निभाएगी तो ही ठीक है। क्यों एक लड़की को ये सिखाया जाता है कि बेटा देखो खाना बनाना आना चाहिए, भला आप बनाओ या ना बनाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों हम लड़कियों से नहीं कहते हैं कि अरे नहीं नहीं किचन में जाने की जरूरत नहीं है, रहने दो मत बनाओ। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ससुराल आपको जाना है तो आपको करना है। यहाँ एक से एक ऐसी लड़कियां होती हैं मैम जो सुबह जॉब भी करती हैं तो वो अपने सास ससुर को खाना लंच सब कुछ दे के भी जाती हैं कि मम्मी मैंने बना के रख दिया और अब मैं जॉब के लिए जा रही हूँ।
8: बिल्कुल, तो यही सब चीजें होती हैं जो एक बेटी और बहू के बीच का जो अंतराल होता है। ये नहीं होता है कि आप ससुराल में जा करके जो बेटियां हैं वो बहू बन जाएं और बहुएं जो हैं वो आराम से बैठे और उनकी सास उनको चाय दे रही है, ऐसा कुछ नहीं। एक मर्यादा भी होती है और मर्यादा के साथ साथ जब आप कहते हैं ना कि मैंने एक्चुअली मैं जिनसे जुड़ी हुई हूँ मैं जुड़ी हूँ वो हमारे बाबा से हमेशा से ये कहते हैं कि अधिकार सेवा से अधिकार मिलते हैं। तो अगर आप सेवा करेंगे कहीं पे भी, यहाँ सेवा का मतलब है कि अगर आप कहीं पे भी अगर अपने घर में कर रहे हैं तो आपको उससे अधिकार मिलेंगे। और अगर आप अपने जॉब की जगह पर हैं तो वहां सेवा नहीं होती है, वहां काम करने से, वहां पर जिम्मेदारियां उठाने से आपको अधिकार मिलते हैं।
7: बिल्कुल,
8: तो ये सेम चीज है कि आप सेवा से आपको अधिकार की बिल्कुल आपको मिलेंगे।
7: बिल्कुल।
8: तो अगर आपने सेवा ढंग से करी है तो उसके बाद में ये आपका पूरा अधिकार हो जाता है। आप अधिकार से अपनी सास को कह सकती है मम्मी मैंने ये कर लिया है तो आप अब मैं यहाँ पर जाऊं, मैं ये चीज करूं और मैं ये करूंगी। तो उसमें आपकी सास ससुर आपकी नंद और आपको सब लोग ये कहेंगे कि हाँ बेटा तुम इतने प्यार से सब कुछ कर रही हो तो तुम्हें ये पूरा अधिकार है करने का। और जहाँ जहाँ पर सेवा भाव ही नहीं, जहाँ कोई काम ही नहीं और वहाँ पर भी अगर रोबबाजी हो चल रही है

0: रहे हैं तो हम कर दे रहे हैं, तो उनको भी समझ में आएगा कि अच्छा दूसरा काम कर रही है और आके अभी कर देगी।
1: बिल्कुल,
0: देखिए आपकी, देखो जैसे कहते हैं मैम कि मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर, ठीक उसी तरीके से अगर आप अपना घर मानेंगे तो वो आपका घर है, नहीं मानेंगे तो नहीं है। तो इसलिए अच्छी वाली अभी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए,
1: अभी से ट्रेनिंग
0: आगे काम आती है।
1: बहुत ज्यादा ट्रेनिंग ले ली तुमने तो आज, ठीक है। तो चलिए अब एक गाना
0: सुना देते हैं। ट्रेन भी तो मैं किसके अंडर हो रही हूँ,
1: मेरे अंडर में ट्रेनिंग चल रही है ना, तो चलिए।
0: सास इतनी अच्छी मिली है मुझे।
1: नहीं मुझे आपकी, मुझे आप जैसी बहू नहीं चाहिए। हाँ? मैं, मुझे बहू नहीं चाहिए। और
0: ऐसा ऐसा कह दिया, दिल तोड़ दिया आपने मैम मेरा, कि मुझे आप जैसी बहू नहीं चाहिए।
1: चले दिल तोड़ दिया, काम करें।
0: हाँ करते हैं,
1: सासू और बहू।
0: वैसे अगर होता कोई तो मैं तो बहू बनने के लिए रेडी होती, मुझे कोई प्रॉब्लम, अच्छी सास मिल जाती ना मुझे, फिर मेरी सहेली भी होती, सास भी होती, अच्छी
1: सहेली कम सास ज्यादा बनते हैं हम,
0: कोई बात नहीं तब भी मेरी अच्छी कट जाती।
1: चलें
0: चलें
1: गाना सुने।
0: यस यस,
1: तो चलिए यहाँ ब्रेक लेते हैं और ये सास बहू का खेल तो चलता ही रहेगा, और आ करके फिर एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे। तब तक के लिए सुनते रहे 89.6 FM पे आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है
0: सुन सहेली।
1: स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका। लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो जो कि है सुन सहेली। सुन सहेली में वापस हाजिर हैं आपकी सहेलियां यानी आपकी RJ समता और RJ अंशिका। तो आइए चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ। भाई अभी तक हमने बात की जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक था, अच्छा लगा बात करके। अब आते हैं दूसरे वाले टॉपिक पे जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। अब तक जो रिलेटेड था वो वेल्थ से था, ये हेल्थ से।
4: What about wealth
0: की अब तक जो हमने बात की वो हमारी mental health के लिए था, mental peace के
4: तो
0: लिए।
4: तो wealth कहाँ हुआ? Wealth means क्या होता है? Wealth means पैसा होता है।
0: Oh, sorry. हाँ तो
4: आज ये रास्ते में, अभी ये जब ये ऑफ करेंगे ना, ये तब भी डांट खाएगी मेरे से। आज इसके डांट खाने का दिन है। आज ये
0: दिन है, आज लगता है कहीं, वो कहते हैं ना कभी कभी
4: साइत नहीं अच्छी होती है।
0: हाँ,
4: तो आज की साइत तुम्हारे लिए अच्छी नहीं।
0: आज लगता है मेरी ग्रह दशा जो है, मेरी ग्रह राशि जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं,
4: कोई बात नहीं। अभी तक हम लोग कर रहे थे, जैसे हम जाते हैं कहीं पर तो नई नई शादी होती है, आजकल शादियों का सीजन चल रहा है तो इसके दिमाग में शादियां ही गूंज रही है। देवरानी, जिठानी और नाजिया जी कह रही है कि मैम आपका कोई देवर हो तो उसके साथ मेरी शादी करा देना, हम तीनों पंचायत करेंगे। जी बिल्कुल, हम अब मैंने सोच लिया है कि 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन की फैमिली, जो कि है समता मैम और उसमें रहेंगी अंशिका जो कि मेरी बहू होने वाली है, मेरे देवर होंगे जिनकी शादी मैं कराऊंगी नाजिया से। तो कुल मिलाकर के 89.6 FM की पूरी फैमिली जो बनेगी वो मेरी बनेगी, जिसमें मेरे बच्चे भी होंगे तो वो भी 89 के किसी न किसी सदस्य जुड़े हुए होंगे। तो ये था हमारी फैमिली। तो आइए आगे बढ़ते हैं,
0: आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड। जैसे कि महिलाओं में हमेशा होता है ना कि एक मेन प्रॉब्लम होती है जो कि उन्हें पीरियड्स के टाइम फेस करनी पड़ती है हमेशा, जो कि होती है कि ब्लड क्लॉट्स होने लगते हैं, यानी कि सीधी भाषा में हम बोलें तो कहीं ना कहीं ब्लड के जो थक्के आने लगते हैं। और हम इस चीज़ को इग्नोर भी बहुत करते हैं कि अरे होगा ना, ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि इग्नोर करने से ये काफी सीरियस हो जाती है। तो आज मैं बताऊंगी कि सबसे पहले कि ये होता क्यों है। तो सबसे पहले ये तब होता है जब हम एनेमिक होते हैं, यानी कि हमारे अंदर ब्लड की कमी होती है। ये भी एक सिम्टम्स है कि आपके अंदर ब्लड की कमी है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि खून अच्छे से सर्कुलेशन होता है ब्लड का, जब ब्लड अच्छी से बॉडी में होता है। कभी किसी का हाथ कट जाता है तो कितना ब्लड निकलता है, तब लगता है कि मतलब पूरा बॉडी में ब्लड ही ब्लड।
4: पर ऐसा इसका उल्टा कहा जाता है, अगर आपको थोड़ा सा लगे और अगर ब्लड बहुत ज्यादा बहे तो इसका मतलब होता है कि ब्लड की कमी है, और अगर ब्लड ना बहे तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर ब्लड है।
0: ओके
4: ऐसा इसका सिम्टम्स उल्टे होते हैं,
0: ये तो मुझे पता ही नहीं था।
4: तो काटो पता चल जाएगा, अभी कुछ अभी कोई चीज है काटो तो
0: कुछ है,
4: अगर किसी से काटो चाकू वाकू से तो पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में ब्लड है कि नहीं है।
0: नहीं मेरे पास तो है, वैसे भी मुझे कुछ लोग कुछ ऐसे चीजों को लेकर के कहते हैं, इसलिए मेरे पास तो खून है।
4: मेरे पास
0: आपके पास देखिए कितने अच्छे हैं, रेडिश रेडिश।
4: ये रेडिश है तुमको लग
0: रहा है? देखिए वो सर्कल
4: है,
0: है।
4: चलो खून पीते हैं हम ना।
0: वही मैं अभी मैं सोच रही थी ऐसा कुछ, ये ऐसे शब्द प्यारे शब्द मेरे लिए भी कुछ लोग कहते हैं।
4: हाँ।
0: तो इसलिए खून हमारे पास तो भाई ज्यादा है, मेरे पास भी है, मैम के पास।
4: तुम्हें बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं कि ये मेरा खून पीती है, यानी कि इसकी मम्मी इसको हमेशा कहती है कि तुम मेरा खून पीती हो, है ना?
0: है मैम, है।
4: हाँ, समझ गए,
0: है, जो मुझे अच्छे अच्छे शब्द से नवाजते हैं और भी बहुत कुछ कहते हैं, अभी फिलहाल के लिए यही वाला था
4: जी।
0: तो ये होता है जैसा मैम ने अभी आपको बताया, बिल्कुल वही है। और दूसरी चीज ये है कि एक सिम्टम, एक कारण और होता है हमारी बॉडी में, जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं उनकी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। जैसे हम कहते हैं ना 70% पानी है, तो और ब्लड जब सर्कुलेशन की बात आती है तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मेरा जो ब्लड है वो अच्छे से बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता है।
4: हाँ।
0: और वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप पानी नहीं पीते, जैसे कहते हैं ना खून गाढ़ा
4: हो जाता है। हाँ।
0: तो फिर वो बॉडी में सर्कुलेट कैसे होगा? उसे नसों से जाने के लिए पतला होना पड़ता है, और पतला करने का काम करता है पानी। इसलिए पानी पीना बहुत जरूरी है। कहा जाता है एक रिसर्च के हिसाब से कि जो लोग दिन में आधा लीटर से भी कम पानी पीते हैं उनके में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है।
4: ओके।
0: और धीरे धीरे जगह जगह पे ब्लड क्लॉट्स होने लगते हैं।
4: हाँ।
0: जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को गले में भी हो जाता है, क्लॉट फंस जाता है। आपने सुना होगा कि ब्लड की जो थक्का है वो गले में फंसा और उनकी डेथ हो गई। ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि हम प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं, यानी तो इसकी वजह से कई बार ऐसी चीजें हो जाती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि क्या करना चाहिए। करना ये चाहिए सबसे पहले तो कि जब ऐसी चीज़ें बार बार होने लगें तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और स्पेशली जब पीरियड के टाइम ये चीज़ें महिलाओं को होती हैं तो दो तीन चीज़ें ऐसी हैं, घर के ही हैक्स हैं जो आपको ज़रूर यूज़ करने चाहिए। गर्म पानी से सिकाई ज़रूर करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जैसे आप ब्लड के थक्के जो होते हैं जब आप गर्म पानी से सिकाई करते हैं तो वो अच्छे से सर्कुलेट होने शुरू हो जाते हैं। जीरा और अजवाइन का पानी ज़रूर पीना चाहिए।
4: और ऐसे ही ब्लड क्लॉटिंग के लिए मतलब मुझे याद है एक चीज़, एक बार की बात है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और पैर में चोट लगी थी, तो ब्लैक पूरा वो मतलब क्लॉटिंग हो गई थी। तो मतलब कोई भी उसमें देख रहा था तो मुझे हर एक नया जैसे हर कोई भाई कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला था जब फ्रैक्चर हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया था कि ब्लड क्लॉट ना हो उसके कारण से आइस की उसमें सिकाई करनी है, मतलब बर्फ की सिकाई करनी है। अच्छा, उल्टा इसका लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी की सिकाई करते हैं पैर में या कमर पे या कहीं पे भी। तो मुझे मतलब एक डॉक्टर थे, लखनऊ के डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी आपको अगर चोट लगी है और वहाँ पर काला निशान हो गया है, वो धीरे धीरे सब कलर में आने लगता है, ब्लू भी आएगा, नीला भी आएगा। हाँ। तो पीला भी आएगा, वो पूरा अपना रंग पूरा लेता है वो। तो वहाँ पर आप बर्फ़ को एक कपड़े में ले लें, जो हल्का कपड़ा, कोई कॉटन का कपड़ा हो, उसमें उसको बर्फ़ को रख करके उसकी सिकाई करिए दिन में दो बार। जो अगर ब्लड जमा भी होगा तो धीरे धीरे वो पिघल करके अपनी जगह ले लेगा। समझ में आया?
0: समझ में आया। इसीलिए कहते हैं
4: आगे बढ़ो,
0: आगे बढ़ते हैं। वैसे भी लगता है आज मैम का मूड कुछ अच्छा नहीं है। आज पक्का मैम की किसी के साथ लड़ाई हो गई है, मुझे ऐसे लगा।
4: कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई है,
0: कुछ लड़ाई नहीं हुई,
4: क्योंकि काम के टाइम पर केवल काम, प्यार के टाइम पर केवल प्यार, बातों के टाइम पर केवल बातें।
0: और किस टाइम पर?
4: खाने के टाइम पे बस, हमने पता था, तुम यही कहो। खाने के टाइम पर हम भूल गए थे ना कहना, खाने के टाइम पर केवल खाना, फिर इधर उधर नहीं देखना है।
0: और गाने के टाइम पे केवल गाना,
4: ओनली गाना। आगे बढ़े
0: जी मैम,
4: बस चलो
0: चलिए। तो मैं ये बता रही थी कि सबसे पहले ऐसे हैक्स आपको करने चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि दवाई ज़रूर लेनी चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कहते नहीं है मैम कि प्यास लगने पे ही गड्ढा खोदते हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि जब बिल्कुल हेल्थ पे बिल्कुल पड़ गए ना बिस्तर पे, तभी उनको लगता है कि मुझे दवाई खानी चाहिए। ऐसा नहीं करना है। अगर हल्की सी भी आपको हो रही है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं और वो आपको मेडिसिन दे रहे हैं, तो आप मेडिसिन रेगुलर खाइए। जैसे बहुत लोगों की आदत होती है दो दिन बुखार, मतलब कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, दो दिन मेडिसिन खाई ठीक हो गई, उसके बाद वो मेडिसिन छोड़ दिया, और जो कि डॉक्टर आपको कहते हैं कि 15 दिन का, 10 दिन का या जितने भी दिन का आप कोर्स कंप्लीट,
4: पूरा कोर्स कंप्लीट करो,
0: और वो करना चाहिए क्योंकि वो आप ही की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें हैं, और थोड़ी सी अपने खाने में सुधार करना चाहिए। बाहर के फूड्स नहीं खाने चाहिए, पैकेज फूड नहीं खाना चाहिए, ये चाउमीन बर्गर वगैरह नहीं खाना चाहिए, घर के फ्रूट्स और हेल्दी चीजें ही खानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी क्लीन रहती है, डिटॉक्स रहती है और हमें बहुत फायदा होता है।
4: एग्जैक्टली, और मेरा अगर आप माने तो आपको वीक में एक बार पैकेट जरूर खाना चाहिए, इससे आपकी बॉडी जो होती है वो डिटॉक्स होती है। वीक में एक बार पैकेट वाला फूड जरूर खाना चाहिए, जैसे चिप्स वगैरह नहीं आती है बहुत सारी, तो वीक में एक दिन किसी भी दिन, क्योंकि बहुत अच्छा खाने पर भी हम उसके आदी हो जाते हैं, और कभी जब हम बाहर जाते हैं और हमें अचानक से कुछ खाने को ऐसा मिल जाता है तो हमें फिर वो आदत नहीं होती है। तो इसीलिए वीक में एक दिन कुछ ऐसा चटर पटर बाहर का खा लेना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी और आपका पेट डिटॉक्स रहे। समझ में आया?
0: समझ में आया।
4: चलो, तो आप ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं लगाते हैं, मैम के दिमाग में चोट लगी थी। हाँ नाजिया जी, आपने सही सही पकड़ा है, और इसीलिए कभी कभी सटक जाता है। नाजिया अंसारी कह रही हैं कि मैम के दिमाग में चोट लगी थी।
0: ऐसा नहीं है नाजिया जी, और मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा मुझे लगता है इस तरह की चीजें जो है वो नहीं कहनी चाहिए। मतलब अभी आपने सुना ना कि हम सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे थे, और मैम ने टॉपिक के थ्रू बताया कि किस तरीके से वो उससे वो जो उन्होंने चीज बताई ना कि बर्फ से सेकाई करनी चाहिए, तो उनका मीन वो सारी
4: मतलब कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं देना है।
0: क्लेरिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, जस्ट कह रही हूँ कि मतलब इस तरीके से।
4: तो चलिए यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और उसके बाद एक मॉरल स्टोरी जो कि लेके आते हैं आज की एक महिला, एक सशक्त महिला को समर्पित। तो बस हम यूं गए यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस, फुल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आगे हैं आपकी आज समता और साथ में हैं
4: RJ अंशिक।
3: तो फटाफट शुरू करते हैं आज की मॉरल स्टोरी को लेकर के। लेकिन मैं बता दूं कि एक चीज और है अंशिका, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप रिलैक्स करें थोड़ा सा, उसके बाद आप स्टोरी बताइएगा।
4: ओके,
3: मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्या एक नारी या एक लड़की जो भी जब बचपन में होती है, तो क्या उसका पेरेंट्स को जरूरी है उसको पढ़ाना आज के युग में?
4: बहुत जरूरी है।
3: क्यों?
4: क्योंकि
3: ये भी कहा जाता है कि आजकल की जो लड़कियां हैं, अगर वो ज्यादा पढ़ ले रही हैं तो उन लोगों के पर निकल आ रहे हैं।
4: ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका आई थिंक अपोजिट होता है कि अगर आप पढ़े हुए होते हो तो आपको एक सिंसियरिटी होती है, चीजों के मायने होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट खुली हुई सोच होती है। पढ़ाई कभी किसी को पीछे नहीं खींचती है या जैसे आज कहा जाता है कि पर निकल आए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और जिनको भी जो भी थोड़ा गलत वे में है वे जो में भी लड़कियां, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कसूर आपकी माहौल का होता है, कहते हैं ना परवरिश का, तो कहीं ना कहीं कसूर होता है कि हम गलत चीजें बहुत जल्दी बोरो कर लेते हैं और फिर उन्हें अपने बिहेवियर में ले आते हैं और फिर हमारा बिहेवियर खराब हो जाता है।
3: Exactly. तो मेरे कहने का सेंस केवल यही था कि अगर हम अपनी बच्चियों को, स्पेशली गर्ल्स को, बचपन से ही वो शिक्षा दें कि आपको किसी और के घर जाना है और आपको किसी और का घर सजाना है, तो उनके अंदर का जो एक ये रहता है ना, एक एटीट्यूड वाला होता है, तो वो उन चीजों को कम कर पाती है। साथ ही साथ उन्हें ये पता होता है कि अगर मैं बाहर जाऊंगी पढ़ने तो भी मेरे साथ न माँ चलने वाली है, ना ही पिता चलने वाले और ना ही कोई घर का और सदस्य आपके साथ वहाँ जाने वाला है। हमें जो भी मैनेज करना है, हमें खुद ही मैनेज करना है।
4: बिल्कुल। देखिए, कहते हैं कि जब एक माँ शिक्षित होती है, अगर पढ़ी लिखी होती है, तो उसके घर में जब बेटी या बेटा कोई भी होगा तो वो चाहेगी मेरे बच्चे भी पढ़ें।
3: बिल्कुल।
4: और ये थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं होता है कि जिन पेरेंट्स को एजुकेशन नहीं मिली होती है, फिर उनको ये लगता है कि बच्चे को पढ़ाने की क्या नीड है, रहने दो, हमने भी तो बिना एजुकेशन के अपनी लाइफ बिताई है, तो वैसे मेरा बच्चा भी बिता ले।
3: बिल्कुल।
4: ये एक मानसिकता बन जाती है।
3: मानसिकता बन।
4: लेकिन जिस घर में एजुकेशन का माहौल होता है, उस घर में वो सोचते हैं नहीं, हमने अगर अच्छी पढ़ाई की है तो कल अगर हमारे बच्चे हैं तो वो भी अच्छी पढ़ाई करेंगे और अच्छी लाइन में जाएंगे। तो एक लड़की का तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल।
4: लेकिन जिस तरह हमारे पास सब कुछ होता है, हम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब आपके पास सारी चीजें होती है लेकिन कभी फोन है, हम कभी उसका गलत यूज नहीं करते, मतलब जिन्हें पता है कि किस वे में सही यूज करना चाहिए वो कभी गलत यूज नहीं करते। ठीक उसी तरह अपने रिश्तों का भी कभी गलत यूज नहीं करना चाहिए। सेंस ये है कि जैसे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस वे में वो करो, जैसे हमारे रिश्ते होते हैं, सास कुछ कहती है तो क्यों वो बुराई बन जाती है, और अच्छा माँ डांटती है तो हम माँ कितना भी डांटे, मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती है, लेकिन आधे घंटे बाद मैं जाती हूँ फिर उन्हीं से गले लगती हूँ, मुझे ठीक है डांटा तो डांटा। लेकिन यही अगर अभी आपकी सास आपको कुछ कह देती है तो आजकल की बहुओं के मुंह से क्या निकलता है, अरे यार मेरी सास इतना ताना मारती है कि हम तुम्हें क्या बताएं। तो मम्मी के मुंह से जो ताना नहीं लगता, वो सास के मुंह से ताना क्यों लगता है?
3: बिल्कुल।
4: वो आपकी एक माइंड सेट है कि आपको ऐसा लगता है, मुझे तो नहीं लगेगा, मुझे तो अच्छा ही लगेगा।
3: सच्ची
4: ठीक है। मैम का रिएक्शन देखो, मैम के मन में ये सोच रही होंगी कि बड़ी जल्दी है इसको जाने की।
3: हाँ,
4: ऐसे सोच रही है ना।
3: अब ये ज्यादा बातें करती है ना, शादी ब्याह और ससुराल, देवरानी जिठानी,
4: सास,
3: तो मुझे लग रहा है इनके पापा से मुझे बात करनी पड़ेगी।
4: अरे नहीं
3: अंकल, ऐसा है आप लोकल में देखना।
4: नहीं नहीं नहीं
3: मैम, क्योंकि इनको मैं जाने तो देने वाली नहीं हूँ सुन सहेली छोड़ के, ठीक है, तो इनके लिए लोकल में कहीं ढूंढा जाए। मैं लिस्नर्स आपको भी कह दे रही हूँ,
4: मैं उससे कह दूंगी ना कि मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ कहीं।
3: किससे?
4: सोच लो।
3: किससे?
4: किससे क्या मैम? काम से।
3: अच्छा तुमने कहा नहीं, यहाँ तो बात घुमाई गई है।
4: नहीं नहीं, अरे
3: किससे कह देंगी कि आप कमिटेड हैं?
4: नहीं, जब मेरी शादी होने वाली होगी तो मेरा होने वाला जो पति होगा
3: उसको कह देंगी उसको कि मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ।
4: हाँ, कि मैं ऑलरेडी कहीं हूँ
3: काम को लेकर।
4: मेरी मैम है जो मुझे जाने
3: 89.6 FM से कमिटेड है। ओके,
4: तो सोच समझ के आप हाँ करें कि आप झेल सकते हैं मुझे या नहीं झेल सकते। सोच लीजिएगा
3: ये बात,
4: क्योंकि फिर मेरे पास कोई है।
3: ये बात एक अब समझ में आई मुझे।
4: ये था मैम। अच्छा। और कुछ नहीं।
3: चले अब एक मॉरल स्टोरी की तरफ चले।
4: Sure.
3: तो आइए दोस्तों सुनाते हैं आज की वेडनेसडे स्पेशल, यानी कि आज हमारा विमेन सेंटर प्रोग्राम था। और आज लास्ट बट नॉट लीस्ट में हम एक स्टोरी लेके आते हैं, आप सभी को पता है, जो कि हमारी महिलाओं को समर्पित होती है, स्पेशली जो कि उनके एक संघर्ष की कहानी हम बताते हैं।
4: तो आज हम कहानी जिनकी बताने वाले हैं वो आती है उत्तर प्रदेश के छोटे से गाँव से, जिनका की नाम है सुनीता।
3: Okay.
4: बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई। वो बताती हैं कि मेरी एज सिर्फ 18 से 20 साल की थी जब मेरी शादी कर दी गई। बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, बहुत कुछ था, और उन पर जब मैं नई नई गई अपने ससुराल में तो मेरी सास जो थी और मेरा परिवार जो था उसने मुझे मैं पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, वो बताती हैं, और फिर उनके पति और उनके सास ने उनको पढ़ाया क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी। लेकिन वो बताती हैं कि मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की, और फिर उस बीच में काफ़ी चीज़ें हुई उनकी लाइफ में। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि अपने लिए एक जगह बनती नहीं, बनानी पड़ती है। तो उन्होंने अपने घर को समझाया, घर वालों को, और अपने लिए एक जगह बनाई। वो बताती हैं कि मैं सुबह पूरा काम करती थी और फिर मैं पढ़ने जाती थी और मेरी सास मुझे कुछ नहीं कहती थी। तो कुछ लोगों ने उनकी सास से कहा कि गांव में रहकर बहू को पढ़ाने से क्या फ़ायदा, अगर ज़्यादा पढ़ जाएगी तो बेटे से आगे निकल जाएगी। तो उनकी सास ने बोला कि मुझे मेरी बहू पे भरोसा है, वो कोई गलती नहीं करेगी, वो पढ़ना चाहती है और हम उसे पढ़ाएंगे। काफ़ी टाइम बीता और वो बताती हैं कि आज वो पूरी तरीके से शिक्षित हैं और अपने ही गांव में कौशल विकास के माध्यम से एक कंप्यूटर ऑपरेटर सेंटर चलाती हैं, जहां गांव की लड़कियों को और महिलाओं को कंप्यूटर चलाना वो सिखाती हैं, और आज वो उससे अपनी आय अच्छी खासी अर्जित करती हैं। तो इस स्टोरी में हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जैसे एक होता है ना कि किसी भी चीज़ के लिए कभी हड़बड़ाना नहीं चाहिए। आजकल की लड़कियों में मैंने देखा है कि पेशेंस बिल्कुल नहीं है। मुझे नौकरी करनी है तो मतलब बिल्कुल वो है कि उनको करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको जॉब करनी है, अच्छी बात है, लेकिन हमें हमारे अपनों को राजी करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। यहाँ मम्मी पापा ही होते हैं, अगर मैं अभी कहूँ कि पापा मुझे दिल्ली जाना है जॉब करने, तो शायद मेरे पापा इतनी जल्दी एग्री नहीं करेंगे। मुझे उन्हें थोड़ा समझाना पड़ेगा, थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से आपको अपनी फैमिली को कन्विंस करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। कभी किसी चीज़ के लिए कहते हैं ना, अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए। पेशेंस है तो सब कुछ है, पेशेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर तो लगता है कि वही हो जाता है कि आप किसी से कहेंगे कुछ और अगला समझेगा कुछ और। सो इसलिए हमेशा पेशेंस रखना चाहिए।
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल, पेशेंस से बहुत सारे काम जो होते हैं ना वो
4: यूं हो जाते,
3: सुधरते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमने पहले से कुछ सोच कर रखा है और वो मुझे थोड़ा सा सब्र करने के बाद मिला तो उसका फल क्या होता है? सब्र।
4: अच्छा।
3: करो, अब इसमें मुस्कुराने की क्या जरूरत है? सुजीत जी कह रहे हैं कि आप दोनों में से समता मैम है, आप दोनों में समता मैम है, अगर है तो कुछ बोल कर जाएंगी जिससे मैं उनकी आवाज पहचान सकूं।
4: ओके
3: जी,
4: तो मैम आपको दो लाइन सॉन्ग सुना देंगे।
3: नहीं, अभी तो हम दोनों में से ये पहचान ही नहीं पा रहे ना कि समता मैम कौन है।
4: तो वो उन्होंने बोला लास्ट में मैम ऐसा कुछ बोल के जाए
3: जी
4: कि मैं उनको पहचान सकूं।
3: जी, तो मैं सोच रही हूँ कि सशक्त नारी पे नहीं, अभी अभी हम दोनों में से जो भी वो लास्ट की दो लाइन कोई बोलेगा
4: हाँ,
3: तो उसमें से आप पहचान जाइएगा कि समता मैम कौन है।
4: तो चलिए, हम आई थिंक की बातें करते करते हमारा टाइम जो है वो हमें इशारा कर रहा है, तो हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे और आपसे टाइम के अकॉर्डिंग बातें भी करेंगे। अभी हमारा समय जो है वो काफ़ी काफ़ी काफ़ी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना कम समय में और कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाता है।
3: तो चलें
4: जी,
3: अब आप सुनेंगे वो आवाज़ जो कि मतलब मुझे लगता है कि जो कि आप सोच रहे हैं कि समता मैम को पहचानना चाह रहे हैं, तो दोनों में से नेक्स्ट आवाज जो होगी वो होगी
4: मैम की। तो आइए सुनते हैं। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं रास्ता आज भी दे देती हूँ, ऐसे टाइम नहीं है।
3: रास्ता देने वाले का टाइम नहीं है,
4: तो निकालते हैं।
3: औरत सिर्फ एक नाम ही नहीं, एक पहचान है, हर रिश्ते की खूबसूरत सी जान है। टूटकर भी जो मुस्कुराकर जानती है, टूटकर भी जो मुस्कुराना जानती है, वही तो असली शक्ति की मिसाल है। हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ आपकी आज समता, और जो कि लेकर के आती हूँ सुन सहेली प्रोग्राम, और मेरे साथ जो अगली आवाज सुनेंगे वो है मेरे साथ आरजे अंशिका।
4: बिल्कुल लेकर आते हैं, और आज भी हम लेकर आए थे, आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा हो और सुनकर बहुत सारा एंजॉय किया हो और सुजीत जी ने पहचान लिया हो
3: जी
4: कि कौन है आरजे समता।
3: तो मैं हूँ आरजे समता एंड सुजीत जी, थैंक यू सो मच, एंड सभी लिसनर्स का तहे दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू जो आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। तो हम मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए सुनते रहे हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम को भी, जो कि है कॉलेज इन गोंडा, और मैं मिलूंगी और अंशिका कल सेम प्लेस पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय
4: बाय दोस्तों।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9876 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: बल्ली कितने?
5: ओ देश मेरे

नमस्कार, नमस्ते, गुड आफ्टरनून भैया, बहनों, बबुनी और बाबू, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त तो चला है 3:04 बाद स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM। यह गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी अर्जुन अदी मौजूद हैं आप सभी के साथ लेकर के आपके फरमाइशों का कार्यक्रम कॉल ट्यून गोंडा, जिसमें करते हैं आप कॉल और हम ट्यून करते हैं आपके डिमांडेड गाने आपके नाम से, प्लस आपके डेडिकेटेड मैसेजेस और चैट बॉक्स में हमारी गपशप। तो इंतजार किस बात का है बॉस? आइए आपके गानों को ट्यून करते हैं, आपकी फरमाइशों को ट्यून करते हैं, क्योंकि वक्त हो चला है हमारी पहली फरमाइश की ओर चलने का। लेकिन इस फरमाइश को ट्यून करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपकी फरमाइश अब तक नहीं पहुंची है तो इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आप जितना लेट करते जाते हैं उतनी फरमाइशें आपकी देरी से होती जाती है। तो उठाइए अपना फोन, डायल कीजिए 6393316429, आई रिपीट 6393316429, और अपनी फरमाइशें भेज दीजिए अपनी आरजू नदी के पास और हम चलेंगे हमारी पहली फरमाइश को ट्यून करने। प्लस चैट बॉक्स में लगाइएगा अपनी हाजिरी, अपनी अटेंडेंस की, आप मौजूद हैं मेरे साथ एंजॉय करने के लिए पूरे एक घंटे आपके अपने फरमाइशों का कार्यक्रम कॉल ट्यून गोंडा। पहली फरमाइश हमारे पास आई है सबलू जी की और वो कह रहे हैं महंगाई मार गई। ये बात तो यह सच है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। आजकल पानी की कीमत भी 20 से 30 रुपये हो चुका है, तो सोचिए ज़रा पानी कितना महंगा हो चुका है, तो बाकी महंगाई का हाल है। रोटी कपड़ा मकान से सुनते रहिए एक बहुत ही बेहतरीन और रियलिस्टिक नगमा लताजी मुकेश की आवाज में, महंगाई मार गई।

और बढ़ते हैं और अगली फरमाइश आए हाय हाय क्या बात है भैया, राहत फतेह अली खान की आवाज में गाना आया है। समरीन जी की फरमाइश है इश्क जान, और मुझे लगता है समरीन जी का बेहद ही पसंदीदा गाना है, बिकॉज समरीन जी ने इस गाने को अक्सर अपनी डिमांड में लिया है। और एक बात कहूँ, सीक्रेट वाली बात है कि ये गाना हमको भी बड़ा पसंद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की फरमाइश करने के लिए। आइए एंजॉय करते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज में, थोड़ी सी राहत पाते हैं। मिलते हैं अगले गाने पर, अगली फरमाइश पर। तब तक के लिए आप अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429। भूलिएगा नहीं।

राहत फतेह अली खान की आवाज़ और समरीन जी की फरमाइश इसके जहाँ मतलब इश्क के जहाँ, और इसको सुनने के बाद आपको भी कुछ कुछ होता है ना, मतलब राहत तो मिलती है ना, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। और मुझे बहुत पसंद आता है इस तरह का गाना जिसमें उर्दू के अल्फाज हों, हिंदी के जज्बात हों और राहत फतेह अली खान की आवाज़ हो। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे चैट बॉक्स में, और इम्तियाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो क्या ख्याल है, अगली फरमाइश की तरफ बढ़े? अगर हाँ तो आइए चलते हैं और सुनील जी की फरमाइश को ट्यून कर लेते हैं। फिलहाल सुनील जी थोड़े से उदास लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने गाने की फरमाइश भी उदास उदास की है, और उन्होंने कह भी दिया कि जिंदगी बड़ी उदास है। क्यों उदास है भैया, आपकी ज़िंदगी खुश मिजाज होनी चाहिए। जैसे मैं सुबह आपको बता कर गई थी, ज़िंदगी में खुश रहिए, जो होता है होने दीजिए, जो बीत गया उसे जाने दीजिए। क्या कर रहे हैं बॉस? ओके, अगर आप उदास नहीं है, सिर्फ आपका गाना ही उदास है, तो आइए ट्यून कर लेते हैं, सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं। कसूर फिल्म से आप सुनने जा रहे हैं बेहद ही खूबसूरत गाना। हम मिलेंगे अगली फरमाइश को लेकर के, तब तक ये सुन रही है रेडियो कैनस 89.6 FM, यही गोना शहर की धड़कन पर आपकी अपनी आर्जुनती मौजूद है। और कॉल ट्यून गोना में आप अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं 6393316429 पर।

0: सुनील कुशवाहा जी की फरमाइश, बड़ी उदास है जिंदगी कसूर फिल्म से आप सुन रहे हैं कुमार सानू की आवाज में। नदीम श्रवण का म्यूजिक और समीर साहब के बोल हैं। और ऑफ कोर्स हमारे साथ चैट बॉक्स में जुड़े हैं धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास, लिख रहे हैं उन्नति जी नमस्ते,
1: नमस्ते टू यू।
0: एंड साथ ही लिखा गुड आफ्टरनून, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। कॉलर ट्यून गोंडा सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्ते। और हमें लगता है कि मैं सबका जवाब दे सकती हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल देती हूँ सबकी तरफ से आपको भी नमस्ते। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और इम्तियाज जी, आपको अपने फरमाइशी गीतों के लिए कॉल करना पड़ेगा, कॉलिंग नंबर वही है 6393316429। और आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश को ट्यून करने के लिए, क्योंकि अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे पास अमित कुमार जी की तरफ से। और ध्वनि भानुशाली की आवाज में आप सुनने जा रहे हैं ले जा रे, आइए एंजॉय करिए। हम मिलेंगे अगले गाने पर, अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए सुनते रहिए कॉलर ट्यून गो 99.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर।
2: I'll stay here, just me।

0: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहन हूँ, तो मैं बता रही हूँ।
1: पर क्यों?
0: क्योंकि ये देखो, #you, #ouch, #her, और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।

अमित कुमार जी की फरमाइश के बाद अब बारी है हमारे ही धर्मेंद्र जी की, और उन्होंने फरमाइश की है चेहरा तुम्हारा कितना है प्यारा। अरे वाह, तारीफ तो भैया 90s वालों ने ही की है। अगर तारीफ की बात की जाए तो थोड़ा सा पीछे जाएं, यानी कि 90s, 60s, 80s, 50s, उस दौरान में क्या तारीफें लिखी जाती थी, मतलब मजा आ जाता था सुन के। ऐसा लगता था ना कि चांद है वो आसमां से उतर कर जमीन पर आ गया है, और शायरों ने क्या शायरी लिखी है। फिलहाल के लिए आइए सुनते हैं, एंजॉय करते हैं धर्मेंद्र जी की फरमाइश, और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

कुमार सानू की आवाज में आप एंजॉय कर रहे हैं चेहरा तुम्हारा कितना है प्यारा, हमारे धर्मेंद्र जी की फरमाइश थी ये। और अगली फरमाइश आई है हमारे पास रिजु जी की, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे लिसनर्स। मेरा तो समझ में आता है कि हम बकवास कर रहे हैं, लेकिन हमारे चैट बॉक्स में इतनी खामोशी क्यों है? आपको पता है खामोशी और मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मैं जहाँ होती हूँ वहाँ दिन भर नॉन स्टॉप बक बक बक बक चलती है, लेकिन आप इतने खामोश क्यों हो रहे हैं? फिलहाल हम आपको बता दें हमारे साथ रीना शर्मा जी जुड़ गई हैं जो हमें लिख कर भेज रही हैं। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू यू। रीना शर्मा जी कैसी हैं आप? हालांकि हमें आपका मैसेज चैट बॉक्स में तो नहीं मिला, बट मिल गया है इसी बात पर हम खुश हो चुके हैं और आई होप आप अच्छी होंगी। और हमारे साथ जुड़े हैं सऊदी से मुस्तफा जी, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून टू यू। मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। और आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश, ऊंची ऊंची दीवारें, जो मैंने नहीं खड़ी करी हैं, खड़ी हो चुकी हैं क्योंकि मिस्त्री वाले भैया ने खड़ी करके आई हैं। फिलहाल के लिए आइए रिजु जी की फरमाइश को सुन लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, ऊंची ऊंची दीवारों को गिराने की कोशिश करते हैं और हम मिलेंगे अगली फरमाइश पर, अगले गाने पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

अरिजीत सिंह की आवाज, रिजू जी की फरमाइश, ऊंची ऊंची दीवारें, और वक्त है अब अपनी अगली फरमाइश को ट्यून करने का। एनी गेस किसकी हो सकती है? चलिए मैं आपको मौका देती हूँ जानने के लिए, सिर्फ गाना प्ले करते हैं और देखते हैं कि आप गेस कर पाते हैं कि किन जनाब की फरमाइशी सॉन्ग ये होता है। एंजॉय करें आपके आ जाने से, और इस फरमाइश के बाद हम आते हैं और नाम बताते हैं उन जनाब का जिन्होंने अपनी फरमाइश भेजी थी हमें। बहुत ही प्यारा सा गाना है, गोविंदा पर फिल्माया गया सॉन्ग है, 90s का गाना है, ऑफ कोर्स मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे कॉल ट्यून गुड विद राज यूनिट 89.6 FM रेडियो ज्ञान स्लीपर। अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं 6393315649 यानी कि 6393316429 पर।

और ये गाना अगर आप गैस नहीं कर पाए हैं कि किन जनाब ने भेजा था, किन की फरमाइश है, तो आइए हम ही आपको बता देते हैं। ये वाला गाना हमारे देवी प्रसाद जी का था। देवी प्रसाद जी ऐसे गाने की फरमाइश बहुत करते थे। बीच में उन्होंने सैड सॉन्ग की फरमाइश करना शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे याद है कि उनका एंथम सॉन्ग हुआ करता था। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और अगला सॉन्ग जो आया है वो आया हमारी सबिया जी की पसंद का, सबिया जी की फरमाइश। सबिया जी की फरमाइश आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार करते हैं, बेशक करते हैं, बहुत करते हैं, बे इंतहा करते हैं, बेपनाह करते हैं। ओके, ये सब मुझे नहीं कह रहा था फिलहाल के लिए, सिर्फ गाने का नाम था प्यार करते हैं, पायल देव और लक्ष्य कपूर की आवाज में। एंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉल अ ट्यून गोंड आउट विद योर आरजे उन्नति। एंड इसके बाद हम मिलेंगे अपनी अगली फरमाइश को लेकर के गुलबसा जी की, रीना शर्मा जी की, रमेश कुमार जी की, राजू लवण्या जी की।

बात है भैया, सबिया जी की फरमाइश बहुत ही खूबसूरत थी। तुमसे प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, आते जाते सिर्फ तेरा नाम लेते हैं, तुमको याद करते हैं। फिलहाल के लिए आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हम खुद रेडियो पर सुनकर बहुत डांस किया करते थे, और अगेन मैं रेडियो पर प्ले करने जा रही हूँ गुलाबशाह सिद्दीकी जी की फरमाइश, अखिया मिलाऊं कभी अखिया चुराऊं, राजा फिल्म से आप सुनने जा रहे हैं माधुरी दीक्षित पे फिल्माया गया गाना। अलका जी और उदित जी की आवाज में सुपर डुपर हिट सॉन्ग है ये अपने वक्त का, तो एंजॉय करते रहिए। एंड हमारे साथ मंजू जी जुड़ गई हैं, चैट बॉक्स में लिख रही हैं, गुड आफ्टरनून माय स्वीट हार्ट मैम, ओह माय गॉड, गुड आफ्टरनून टू यू माय स्वीट हार्ट लिसनर, कैसी हैं आप? दोबारा आपसे मुलाकात करके दिल हो गया मेरा खुश, और हम प्ले करेंगे अपनी फरमाइश। हम मिलते हैं इस फरमाइश के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: अगर रखियां मिल चुकी हो और रखियां आपने चुरा ली हो तो क्या ख्याल है आगे बढ़ा जाए? अलका जी और उदित जी की आवाज में आप इंजॉय कर रहे थे राजा फिल्म से अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ हमारी गुलफशाह सिद्दीकी जी की फरमाइश। और अब बारी है हमारी अगली फरमाइश की, जो किसी और ने नहीं हमें मिली है उत्तराखंड से हमारी अपनी लिसनर रीना शर्मा जी की फरमाइश। तो आइए ट्यून करते हैं उनकी डिमांड को और इंजॉय करते हैं सच हुए सपने तेरे हैं। मेरे सपने सच हो गए और मुझे पता भी नहीं चला, क्या बात है। आइए अपने सपने को अनाउंस करते हैं, एंजॉय करते हैं और हम मिलेंगे अगले गाने पर। तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहिए काला बाजार फिल्म से 1960 में आया ये गाना जो कि हमको कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है। फिलहाल कोई बात नहीं, धोखों के साथ तो हम जिंदगी भर रहते हैं। एंड अगेन आपके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं चैट बॉक्स में और जिन्होंने अभी तक अपने मैसेजेस नहीं भेजे हैं उनका इंतजार है, क्यों नहीं भेजे, भेजिए, शुरू कीजिए, चलिए हाजिरी लगाइए अपनी अपनी।
1: चिक चिक चिक चक चक चिक चिक चक चक चिक चिक चक चक चिक चिक चक चक चिक चिक चिक चक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक

वाहिदा रहमान पर फिल्माया गया गाना काला बाजार फिल्म से आप एंजॉय कर रहे थे। रीना शर्मा जी की फरमाइश और बारी है हमारी अगली फरमाइश की जो कि रमेश कुमार जी की है। जाने मन ओके जाने मन तो खूब है, आइए एंजॉय करिए सोनू निगम और सुधीर चौहान की आवाज में समीर जी के बोल आनंद राज का म्यूजिक यानी कि संगीत अक्षय कुमार पर फिल्माया गया गाना एक अनोखी कहानी 2002 में आई फिल्म के साथ। हम मिलेंगे अगली फरमाइश पर।

भैया अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि अगली फरमाइश आपका इंतजार कर रही है। आप एंजॉय कर रहे थे रमेश कुमार जी की फरमाइश, जाने मन तो खूब है, और अब बारी हमारी अगली फरमाइश की जो कि राजू जी की है। आज जाने की जिद ना करो। अरे क्या बात है भैया, बहुत ही बढ़िया गाना आपने चूज कर लिया है। तो आइए आपको हम ओल्ड वर्जन सुनाते हैं आज जाने की जिद ना करो, और बिल्कुल नहीं करेंगे, एंजॉय करते रहेंगे आपके साथ कॉलर चिंगोंडा बस कुछ मिनटों तक। और इसके बाद हम मिलेंगे अपनी अगली फरमाइश को लेकर के, जो कि इरशाद जी की, दीपांशु तिवारी जी की, अजय मिश्रा जी की, रईस की, महेंद्र जी की, मंजू यादव की और उस्मान खान की होने वाली है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं कॉल ऑफ ट्यून गोंडा विद राज चुनौती 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर।

और हमने कुछ ज्यादा ही पुराने जमाने का गाना एंजॉय कर लिया है। एक्चुअली इस तरह के जो नगमे होते हैं, जो गजलें होती है ना, वो इवनिंग के लिए होती है, जब हम आराम से सोने के लिए जा रहे हों और उस लम्हे में, उस वक्त में जब ये गजलें आती हैं तो पता नहीं क्यों रूह को एक अलग से तसल्ली मिलती है। चलिए आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और आप एंजॉय करने जा रहे हैं इरशाद जी की फरमाइश दुनिया से, दुनिया वालों से। अब क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे इरशाद जी, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। इरशाद और आप एंजॉय कीजिए ये बेहतरीन सा नगमा जो कि हमारे धर्मेंद्र बाजी पर फिल्माया गया है और उनके साथ है हेमा मालिनी जी, आशा भोसले, महेंद्र कपूर सिंगर हैं और आनंद बख्शी के बोल हैं। एंजॉय करते रहिए। एंड कमल नैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं चैट बॉक्स में, आपका वेलकम करते हैं कॉल ट्यून गोना में।

हाँ जी, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपनी अगली फरमाइश की और दीपांशु तिवारी जी की फरमाइश को ट्यून करते हैं, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा। कुमार सानू की आवाज, चमत्कार फिल्म, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और अगली फरमाइश होने वाली है अजय मिश्रा जी की, सो बने रहिए।

अजय मिश्रा जी की फरमाइश को आप एंजॉय कर रहे हैं कच्चे धागे फिल्म से दिल परदेसी हो गया। और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारी अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है रईस जी की फरमाइश, आशा जी की आवाज़ में आप एंजॉय करने जा रहे हैं पिया तू अब तो आ जा। चलिए एंजॉय करते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जो आज भी लोगों के दिलों में राज कर रहा है, एक ऐसा गाना। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर, और आप एंजॉय करेंगे महेंद्र जी की फरमाइश पर मैं हूं ना फिल्म से तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे। मिलेंगे अगली फरमाइश को लेकर के, और कोशिश करूंगी आज सभी की फरमाइश पूरी कर जाए, किसी की भी ना बाकी रहे।

इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे अगली फरमाइश की ओर और आप इंजॉय करने जा रहे हैं मंजू यादव जी की फरमाइश, तू शायर है तो मैं तेरी शायर। माधुरी दीक्षित का बेहद ही खूबसूरत गाना, इंजॉय करते रहिए। हम मिलते हैं अपनी आखिरी की दो फरमाइशों को लेकर के उस्मान खान और शर्मा प्रसाद जी की फरमाइश को। स्टेडी मंडी।

भाई इस खूबसूरत से गाने को बीच में रोकने के लिए तहे दिल से माफी चाहूंगी, लेकिन क्या करूं, वक्त को मद्देनजर रखते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और आप एंजॉय कीजिए उस्मान खान की फरमाइश प्यार हमारा अमर रहेगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगली यानी कि आखिरी फरमाइश के साथ। स्टे ट्यून्ड।

उस्मान खान जी की फरमाइश आप सुन रहे हैं, प्यार हमारा अमर रहेगा। कमल लैन जी ने इसके लिए भेजे हैं बहुत सारे इमोजीज, नाइस सॉन्ग भी लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चलेंगे अपनी आखिरी फरमाइश को ट्यून करने। शर्मा प्रसाद जी की फरमाइश आ चुकी है हमारे पास, तेरा फूलों जैसा रंग, तेरा शीशे जैसा अंग। एंजॉय करते रहिए। और इसी गाने के साथ अब मैं चाहूंगी आपसे इजाजत। वैसे तो फरमाइश हमारे शर्मा जी की, लेकिन ये गाना आप सभी को डेडिकेटेड, जिनकी फरमाइशें हम तक आज नहीं आई हैं या जिन्होंने भी फरमाइश हम तक नहीं भेजी है, आप सभी को डेडिकेटेड जो लगातार हमारे साथ बने हैं रेडियो गार्डन एप्लीकेशन और फ्रीक्वेंसी के साथ। अब चाहूंगी आपसे इजाजत, परसों मुलाकात होगी यानी को फ्राइडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM कोना शहर की धड़कन पर। अभी तक आपके साथ मौजूद हैं आपकी अपनी आर्शुनती। आपका अगला कार्यक्रम है ज्ञानसली बीट्स। एंड इसी के साथ आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9861-976-9860-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक।

वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
9: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
10: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
10: आज ही कॉल करें 92 60 981 976 9260 981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
9: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
10: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
11: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670 931 251 और 8840 098 123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
12: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
13: डिलीशियस
14: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
13: और क्या क्या है खास?
14: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
13: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
15: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
16: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
15: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
16: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
15: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
16: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: स्टाफ डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैम्ब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9260-981-976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
6: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
7: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
6: सच में? क्या खास है वहाँ?
7: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
6: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
7: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
6: और फोटोग्राफी वगैरह?
7: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
6: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
7: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839-613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
6: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं NVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

हवाओं ने बारिश का पैगाम भेजा था, पर ना जाने वो पैगाम रास्ते में कहाँ रह गया। और उस पैगाम को पढ़ने वाले हमारे लिसनर्स आज पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं। सो सभी का स्वागत है आपकी आरजबीना वाली लाइफ, यानी कि शाम वाली लाइफ में। ऐसी लाइफ जो कर दे दी आपकी लाइफ को झिंगा लाला, यानी कि जहाँ होती हैं बातें आपकी, जहाँ सुनते हैं आपकी आवाज़ें और जहाँ करते हैं आपसे बातें। क्योंकि ना सिर्फ बातें होंगी बल्कि यहाँ पे आपके साथ अंताक्षरी बहुत जोरों शोरों से होगी। सो हमारे मेल कंटेस्टेंट यानी कि अनूप जी दिख रहे हैं चैट रूम में। कैसे हैं भाई अनूप जी, क्या हाल है? और सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका हाल चाल कैसा है, यानी कि आपके पैर में एक फ्रैक्चर हुआ था और उम्मीद कर रही होंगी कि रिकवरी काफ़ी अच्छी हो गई होगी उसकी, और एंड नाउ यू आर रेडी टू वॉक प्रॉपरली, मतलब आप भागने दौड़ने लगे होंगे बढ़िया से। तो जिसने मेरा इंतज़ार किया उसका इंतज़ार हो गया ख़त्म, और मुझे कौन इंतज़ार कराने वाला है ज़रा मुझे पहले बता दें। तो अनूप जी आज सब कहाँ गायब हैं? अनूप जी मुझे लग रहा है आज सब ना सोच रहे हैं कि आज हम अंताक्षरी नहीं खेलेंगे, आज कुछ और खेलेंगे। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उम्मीद कर रही हूँ कि पैर एकदम बढ़िया हो गया होगा, और जो मतलब जिस सोच से फ्रैक्चर पे वो प्लास्टर लगा, मतलब माइल्ड फ्रैक्चर था लेकिन वो फ्रैक्चर ऐसा था जो आपको आने वाले मतलब समय में परेशान कर सकता था अगर आपने प्लास्टर ना कराया होता, तो उम्मीद है एकदम सही हो गया होगा। तो ज़िंदगी के भी ऐसे ही प्लास्टर्स होते हैं जो धीरे धीरे सारे ज़ख्मों को हील कर देते हैं, चाहे वो ज़ख्म नया हो या पुराना। लेकिन आज वाला ज़ख्म तो बड़ा ख़तरनाक निकला। मतलब सुबह मैंने देखा कि आदेश आ गया कि भाई छुट्टी हो जाएगी बच्चों की, स्कूलों की, लेकिन बारिश वाला जो मैसेज था वो मुझे बहुत खुश कर गया कि बारिश मूसलाधार होगी। लेकिन ये मैसेज आने की देरी है कि उसके बाद तो बारिश का नामो निशान नहीं, गर्मी उल्टा और ज़्यादा लग रही है। ये क्या हो रहा है भाई, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही, क्या है कारण इसके पीछे का? सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। और मेरा तो दिल कह रहा है कि अब तो, मन कह रहा है कि अब कुछ और हो जाता तो ठीक था, लेकिन ऐसी बारिश तो ना ही हो, हवा तो चल जाए। आज तो हवा भी नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सो आप लोग का क्या हाल है ज़रा मुझे बताइए, क्योंकि कहते हैं ना, हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, हाल क्या

दिल चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। तो दिल को रोशन करेंगे म्यूजिक से, तो जल्दी जल्दी से आ जाइए इस शाम। आज आपको हमारे साथ शुरू करना है अंताक्षरी का जाम।

कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा

फिलहाल मेहंदी लगाने की और डोली सजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सजाने और आपको सुनने सिर्फ आरजे बीना ही आने वाली है। सो गुड इवनिंग नव्या, गुड इवनिंग मैम। आज लग रहा है टीम ए सो रही है, टीम ए से नव्या दिख रही हैं, पता नहीं ये गाने वाली नव्या है या फिर सिर्फ इधर उधर जाने वाली। फिलहाल ये बताइए कि आप सबके साथ इस शाम में आरजे बीना तो है, लेकिन गाने वाली टीम जो है आज कहीं गायब, तो क्यों ना आज अंताक्षरी का मूड थोड़ा चेंज किया जाए और सबसे कुछ नया सुना जाए। जी हाँ, मैं आप लोगों से एक एक गाना सुनूंगी, लेकिन वो गाना सिर्फ गाना नहीं होगा, वो गाना सिर्फ गाना नहीं होगा। क्यों, अब आप सोच रहे होंगे क्यों वो गाना क्यों नहीं होगा। जी हाँ, वो गाना होगा, लेकिन उस गाने के साथ आपकी कोई मेमोरी मतलब जुड़ी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं कि एक गाना है जिसकी बड़ी मतलब लंबी पुरानी सी कहानी है। एक बार की बात है कि मैं ऐसे जा रही थी, मतलब स्कूल से घर आ रही थी, पास से एक ट्रक गुजरा मेरे और मतलब उस समय मैं रही होंगी 7th-8th क्लास में। पास से ट्रक गुजरा, ट्रक की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो गाने की जो लाइन है वो मैं ज़्यादा सुन पाई। और गाने के बोल कुछ इस तरह थे, तुम करो वादा दिल ना तोड़ोगे, प्यार के खातिर दुनिया छोड़ोगे, प्यार के खातिर दुनिया छोड़ोगे। अब भाई उस समय गूगल या ये सब चीज़ों का ज़माना तो था नहीं, इंटरनेट होता भी था तो साइबर कैफ़े जाना पड़ता था, 150 रुपये दो जब जब जाके कुछ देर एक घंटे या मतलब जो भी चलाने को मिलता था। अच्छा, तो बहुत जुगाड़ लगाया, यही लाइन याद थी, तुम करो वादा दिल ना तोड़ोगे, प्यार की खातिर दुनिया छोड़ोगे। गाना बड़ा अच्छा लगा मुझे, फिर मैंने कहा भाई पता करो ये गाना किस कहाँ से आया, किस फिल्म का है। तो किसी ने मुझे बताया कि ये गाना है मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म का है। अच्छा, पहले क्या होता था, गाना ऐसे कहीं से मिल नहीं पाता था, गाना सबको भराने जाना पड़ता था, सीडी वगैरह लेनी पड़ती थी, और ज़रूरी नहीं जो जिस सीडी को आप परचेज करें तो उसमें गाना आपको इजीली मिल जाए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जल्दी से जल्दी अपनी जो कहते हैं ना कि दिमाग लगा रहे होंगे कि कैसे मैम को गाना मिला, तो मुझे किसी ने बताया कि फ़िल्म का नाम, तो मैंने उसकी सीडी खरीद ली गाना सुनने के लिए। मैंने उस फिल्म की सीडी खरीदी, मुझसे दोस्ती करोगे पूरी फिल्म देख डाली, गाना नहीं मिला। अब भाई गाना नहीं मिला, परेशानी बहुत ज़्यादा हुई। फिर मैंने कहा यार ये क्या बात हो गई, तुम करो वादा दिल ना तोड़ोगे और प्यार की खातिर दुनिया छोड़ोगे, ये कैसे, मतलब ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ, ये गाना मुझे नहीं मिल रहा है। और फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे वो ट्रक वाला मिल जाए तो मैं उस ट्रक वाले को रोक लूँगी और उससे ये गाना मतलब ज़रूर ले लूँगी कि कैसे भाई तुम बजा रहे हो, कौन सी कैसेट है तुम्हारे पास, ये है। मैंने फिर कैसेट मंगवाई अपने पापा से, स्पेशल गोंडा वो गए मतलब कि मतलब आए यहाँ पे, मतलब मेरा घर दूसरी जगह था तो मैंने कहा पापा गोंडा जा रहे हो तो मेरे लिए एक कैसेट ले आना, उसमें ये गाना होगा, तुम करो वादा दिल ना तोड़ोगे, प्यार की खातिर दुनिया छोड़ोगे। फिर पापा मेरे गए वहाँ पे ढूंढने के लिए कि गाना कहाँ है, फिल्म मतलब गाना मुझे वो नहीं मिला। हाँ, जब मैं बड़ी हुई थोड़ा इंटरनेट की दुनिया आई तो मुझे गाना फाइनली जाके कहाँ मिला, यूट्यूब पे मिला, जब मुझे बहुत पता चला इंटरनेट वगैरह के बारे में। तो ये है मेरे गाने की कहानी। तो मैं चाहती हूँ कि आपके पास भी जो कहानी है आपके गाने से जुड़ी, जो आपको बहुत फेवरेट गाना है कि उसके जुड़ी ये मेमोरी है, या आपने कभी फेयरवेल में ये गाना सुनाया था या कुछ भी, तो मैं चाहूँगी कि वो गाना और वो मेमोरी दोनों आज आप शेयर करें। मतलब अंताक्षरी तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि लड़कियों की टीम मुझे आज दिख नहीं रही है, तो फिर मैं इसके लिए बिल्कुल यही कहूँगी कि रहने देते कि अंताक्षरी के लिए लड़कियों को बुलाना ज़रूरी नहीं। चलिए आज कुछ नया करते हैं, आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, और तूफ़ानी में कुछ तूफ़ान आया है, किसी ने कुछ लिख के भेजा है, किस्मत महलों में राज करती है और हुनर सड़कों पर तमाशा
करता रह जाता है। एक हसीन लड़की राजा के दरबार में डांस कर रही थी। राजा बहुत बदसूरत था। लड़की ने राजा से एक सवाल की इजाज़त मांगी। राजा ने कहा, चलो पूछो। लड़की ने कहा, जब हुस्न बट रहा था तब आप कहाँ थे? राजा ने गुस्सा नहीं किया बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम हुस्न की लाइन में खड़ी हुस्न खरीद रही थी। आगे क्या हुआ भाई? कहानी आधी रह गई भाई। ये क्या था? कौन है शिवम? ये कहानी आधी रह गई, आपको कहानी पूरी भेजनी थी। प्यार, पहला प्यार माँ होती है, तो प्यार में सच में लोग अपनी माँ बाप तक भूल जाते हैं। ये बात सही है। सब चाय एक दूसरे को भेज रहे हैं, मुझे भी चाय चाहिए भाई। अनिल जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? सायदापुर से। और भाई सब अपनी अपनी, मुझे, मैं तो कहूँगी अपनी बातें शेयर करिए और अपने गाने को शेयर करिए, किसको कौन सा गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं अपने गाने की बात तो बता ही चुकी हूँ कि इस गाने को मुझे कहाँ मिला। मुझे ये गाना YouTube पे मिला। लेकिन ये भाई बहुत गलत चीज़ है कि मतलब आप लोग, मतलब हमारे जो बॉलीवुड वाले हैं ये सब हैं, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और हम लोग सोचते रह जाते हैं यार ये क्या है ये क्या है। तो मतलब मैं ये चाहूँगी कि मतलब जो भी चीज़ें हो बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। गाने हम लोग ढूंढते रहते थे, पहले पता ही नहीं चलता था किस फिल्म का गाना है और फिर वो गाना हमें मिलता नहीं था। तो गाना सुनाती हूँ आपको, वो जो मेरा फेवरेट वाला था। मेरी ज़ुबान से तो आपने सुना ही, अभी ये वाला सुनिए। सुन के बताइए गाना कैसा है। मेरा दिल आया तो क्या आपका भी दिल आया कि नहीं?

0: तो चलिए, पहला कॉल आ चुका है और देखते हैं किसकी कौन सी कहानी है, किस गाने से जुड़ी। हेलो,
1: शुभ संध्या मैम।
0: शुभ संध्या, कैसे हैं सबलू जी? आपकी आवाज़ पहचान पा रही हूँ मैं। क्या हाल है और कहाँ हैं आप फिलहाल?
1: अभी तो घर पे ही हैं। आपको बोल रहे कि इसी सोमवार को मेरा यात्रा होगा बाबा के नगरी में।
0: ओ, क्या बात है।
1: इसी सिलसिला में थोड़ा लंबा छुट्टी है हमारा।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो आज आप मतलब क्या सुनाने वाले हैं?
1: सुनाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप काफी आप खुश लग रही हैं और लग रहा है कि गाना भी काफी अच्छा अच्छा बजा रही
0: हैं। नहीं, मैं तो खुश हमेशा ही रहती हूँ, लेकिन आज जैसे कि अंताक्षरी का मूड ना होते हुए तो कुछ अलग होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने।
1: नहीं नहीं, आजकल आज जो है ना, हम लोग का यहाँ पर्व है, शायद क्या बोलते हैं उसको, सावनी पूजा, जिसमें हम लोग का यहाँ पकवान होता है देवता के लिए। शायद हो सकता है इसलिए सीनियर लोग अपना काम में व्यस्त हो, इसके वजह से आज सीनियर लोग ज्यादा नहीं दिख रही है।
0: ये बात हो सकती है। अब आपने पॉइंट की बात बताई मुझे।
1: तो मेरा एक छोटी सी कविता है जो कि माँ के भी ऊपर है और पत्नी के भी ऊपर है, जैसा दो ही लाइन कहेंगे, ज्यादा नहीं बड़ा।
0: दो लाइन सुनाइए चाहे चार, लेकिन गाना भी हम आपसे सुनेंगे जरूर, और उस गाने से जुड़ी
1: जी, याद जी, बिल्कुल बिल्कुल, गाना हम अपनी यादों से जुड़ा जरूर गुनगुनाएंगे।
0: चलिए, स्वागत है।
1: कहते हैं वीना जी, माँ और पत्नी एक साथ क्यों नहीं रह पाती है? माँ सोचती है कि बेटा शादी के बाद बदल गया, और पत्नी सोचती है कि मेरे पति सिर्फ माँ की ही सुनते हैं, और बेचारा बेटा दोनों के बीच में खड़ा होकर किसे खुश करे, यही सोचता रह जाता है। माँ ने तो जन्म दिया है, पत्नी ने उसे साथ निभाने की, साथ फिरा साथ वचन की कसमें ली है। दोनों का रिश्ता अपनी जगह पर अनमोल है। बस परेशानियां तब शुरू होती है जब प्यार का साथ तुलना, अधिकार और गलतफहमियां जुड़ जाती है। माँ को एक सम्मान चाहिए और पत्नी की अधिकार और बेटे दोनों का प्यार। किसी एक को जिताने के लिए दूसरे को हराना जरूरी है। जहाँ समझदारी होती है वहीं घर में माँ की मुस्कुराती हुई चेहरा नजर आती है। जी,
0: बहुत खूबसूरत बात कही आपने, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि चाहे माँ हो चाहे औरत हो या कोई भी हो, मतलब अपनी बातों को कह के दिल हल्का कर लेती हैं, लड़कों को सुना देती हैं। माँ भी अपनी जगह कोई ना कोई ताना मार के लड़के को कुछ ना कुछ कह देती है, तुम तो उसी का सुनोगे कुछ भी, लेकिन जब बात लड़कों की आती है वो तो मतलब ऐसा कर नहीं पाते।
1: वो तो है, लेकिन दोनों में एक देखते हैं कि आपस में क्यों नहीं मेल होता है। साथ तो माँ की दर्जा दिया जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं दोनों तरफ की कमियां रह जाती है, इसके वजह से यह ऑप्शन आ जाता है।
0: देखिए सबलू जी, एक तरफ झुकाव होना चाहिए, अगर एक तरफ झुकाव होगा तो दूसरी तरफ अपने आप झुकाव हो जाएगा, और क्या हो पाता है कि दोनों तरफ झुकाव हो नहीं पाता है। दोनों ही तरफ इंसान अपने विचारों को लेके उठाने की कोशिश करता है, और इसी वजह से जो ठहराव है वो नहीं बन पाता।
1: नहीं नहीं, जो कहते हैं ना कि जो झुक गया वही बहुत कुछ ले गया, यही तो है। तो अगर किसी बड़े को अगर बात को मानना पड़े, तो अगर उसकी बात मानने के लिए हमको झुकना पड़े तो क्या होता है? पल भर के लिए हम झुक जाएंगे तो उसका आशीर्वाद लेकर निकल जाएंगे ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर हर इंसान इस बात को समझना कहाँ चाहता है। बहरहाल चलिए, ये सब चीजें तो चलती रहेंगी। मैं जानना चाहती हूँ आपके दिमाग में कौन सा गाना चल रहा है जो आपकी यादों से जुड़ा है?
1: मेरा एक गाना था जो कि साथी मूवी में काफी हम दिखते थे, और मेरा दोस्त उस दिन जब सामने आया क्लास टीचर में बहाली हो गया हुआ है, तो लगा ही नहीं कि पल भर में आपस में, जब मुंबई काफी लंबा समय तक रहते थे, अभी आया मैं तो थोड़ा छुट्टी में आया, तो भाईचारा दिखे कि एक होता है ना कि लगाओ बचपन में जो था वो आज भी दिखने को उनका चेहरा पर मिला। और वो हथियार हमें मिला जिससे बचपन का साथ बिताया हुआ पल यादें ताजा हो गई। तो उनके ऊपर ही दो ही लाइन गाएंगे, हम तो उतना बड़ा एक्टर गायक नहीं है, फिर भी गा देते हैं। नहीं नहीं स्वर्ग मोही है शायद, कृष्ण गोविंदा जी का एक सॉन्ग था जो कि राजेश खन्ना साहब जी भी थे।
0: क्या बात, बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी है।

0: है इसी तरह है, लेकिन हम पूरा गाना नहीं गा पाएंगे, इसको हम तैयार करके आएंगे तो कभी मंडे को हम गा देंगे।
1: अगर आपने नहीं सुनाया है, लेकिन मैं आपकी याद को तरोताजा करने के लिए वो गाना अपने शो में अभी जरूर प्ले करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया।
0: बिल्कुल,
1: जब बात स्वर्ग मूवी की होती है तो मुझे उस फिल्म के एक एक डायलॉग, एक एक गाने को मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि इतना बेहतरीन है। तो देखिए, इन्होंने उस स्टोरी को पूरा किया और कहा कि तुम हौसले ले रही थी तो मैं किस्मत की लाइन में खड़ा किस्मत ले रहा था। ओ क्या बात है, राजा की कहानी पूरी हुई। राजा ने बताया कि जब तुम उस लाइन में खड़ी होके हुस्न खरीद रही थी, तब मैं दूसरी लाइन में खड़ा होके किस्मत खरीद रहा था। आज तुम जैसी हुस्न वालियाँ मेरी गुलाम की तरह नाच रही हैं, इसलिए शायर खूब कहते हैं हुस्न ना मांग नसीब मांग है दोस्त, हुस्न वाले तो अक्सर नसीब वालों के गुलाम हुआ करते हैं। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो नहीं है वो भाग जाएगा, यहाँ सब कुछ बिकता है। क्या बात है, यहाँ सब कुछ बिकता है और दोस्तों जरा संभल के, बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, तीनों लोकों में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी फूल की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे, जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे गए भगवान बन जाओगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या लिख रहे हैं आज शिवम, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला कॉल लेते हैं, देखते किसका है। हेलो,
2: हेलो, हाँ नमस्कार बीना जी।
1: नमस्कार, शुभ संध्या अनिल जी, स्वागत है आपकी आवाज का, कैसे हैं?
2: बस बढ़िया है, आप बताएं कैसी हैं?
1: मैं भी बिल्कुल।
2: बारिश
1: नहीं अभी यहाँ, बारिश तो नहीं, लेकिन हाँ सुबह थोड़ी बहुत शुरुआत हुई थी, पर वो शुरुआत कब अंत हो गई पता ही नहीं चला।
2: नहीं यहाँ तो बहुत तेज आती है,
1: बहुत तेज बारिश हुई,
2: नहीं बहुत तेज धूप।

0: वो गाना हम लोगों ने मतलब कंपोज किया था, कई लोग थे साथ में मिलके, वो गाना हम लोगों ने गाया था मंच पे।
1: क्या बात है?
0: हेलो,
1: क्या बात है, हम सुन रहे ध्यान से।
0: हाँ, तो वो गाने के बोल है ठगनिया काहे नैना चमका दे।
1: क्या बात है,
0: तो अगर आप कहें तो मैं थोड़ा बहुत सुनाऊं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है।
0: ठगनिया काहे नैना चमकावे, ठगनिया काहे नैना चमकावे, ठगनिया काहे नैना चमकावे, ठगनिया काहे नैना चमकावे, ठगनिया काहे नैना चमकावे। कद्दू काट के मृदंग बनायो, कद्दू काट के

आहे नैना चमकावे। रूप पहिर के रूप दिखावे, रूप पहिर के

0: काहे नैना चमकावे। धन्यवाद।
1: क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि आप निर्गुण इतना अच्छा गाने वाले हैं।
0: नहीं, प्रयास मैंने किया।
1: मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि आज आपसे मैंने गाना नहीं सुना, ये सुना। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। मतलब कोई नहीं, मतलब निर्गुण गाना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि दाल भात है कि कोई भी कर देगा आके। हाँ, ये
0: क्या ना?
1: बड़े ये बड़े मतलब ये मजे हुए सिंगर्स या कह सकते हैं जिनकी बहुत पकड़ है वही गा पाता है। क्या गाया आपने, मजा आ गया। मैं तो स्टेंजा एक एक इतने ध्यान से सुन रही थी।
0: इसका स्टेंजा चार स्टेंजा है, लेकिन चक्कर ये है कि इसमें कोरस भी है, तो कोरस में मिलता है ऊपर चढ़ने का टाइम। आप समझ गए, क्योंकि आप भी बहुत बहुत अच्छा गाते हैं।
1: थोड़ा सा कहते ना कि एक गैप मिलता है तब वो पूरा हो पाता है। कोरस ऐसे गाने बहुत मुश्किल होते हैं। फिलहाल आपने बिना कोरस के बहुत अच्छा गाया, और ऊपर से वो बालम खीरा वाली लाइन मजीरा, ओ क्या कहना, क्या कहने वाले, बहुत ध्यान से सुना।
0: आप कहेंगे तो मैं पूरा गाना आपको भेज दूंगा रिच कर ले रे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और ये सच में मतलब जैसे आपने बालम खीरा बताया, ये सच में होता है, पेड़ों पे उगता है ये बाकायदा। मतलब मैंने देखा है इसका पेड़, तो मुझे याद आया कि आपने हाँ उसी का नाम लिया इसमें। क्या बात,
0: ये टोटल निर्गुण है कि दिखाने का कुछ और होता है, कहने का करने का कुछ और।
1: हाँ हाँ, इसमें उपमा बहुत अच्छी ली जाती है, क्या कहने।
0: जी जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज अनिल जी ने अपनी एक मेमोरी के साथ जो चीज शेयर की है वो सच में बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है।

0: है, बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं अगले कॉलर को मौका देना चाहूँगी, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आज कॉलिंग डे है, तो गाने कम ही प्ले होंगे, आप लोगों से बातें ज़्यादा होंगी।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार
0: नमस्कार, गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम?
1: जी गुड इवनिंग, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश के लिए बोल रहा हूँ।
0: अविनाश कैसे हैं? स्वागत है, सबसे पहले तो आपकी आवाज़ का स्वागत है, और इतनी दूर से आप कॉल करते हैं, सबसे पहले दिल खुश हो जाता है आपकी आवाज़ सुन के।
1: जी जी, थैंक यू। और आपके कार्यक्रम में देखिए, आपका जो प्रस्तुति है वो लाजवाब है, इसलिए तो हम सभी को खींच के लाते हैं, लेकिन दूर दूर से मतलब श्रोताओं को खींच लेती हैं आप
0: क्या
1: अपनी तरफ।
0: अब ये मेरा खिंचाव है या आपका झुकाव है ये तो मैं नहीं जानती, पर हाँ ये कहीं ना कहीं दोनों तरफ से प्रेरणा एक दूसरे को मिल रही है।
1: जी जी जी, क्योंकि आप देखिए इतनी मतलब की बेहतरीन कार्यक्रम करती हैं कि हम सब जब भी सुनते हैं तो रुका नहीं जाता है, बस कॉल लगा ही लेते हैं।
0: अरे वाह क्या बात है, तो मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप लोगों से मंडे वनडे बात करने का मौका मिल रहा है। वैसे मंडे के साथ साथ वेंसडे भी जुड़ गया है इसमें। आज वैसे अंताक्षरी तो नहीं हो रही है अविनाश जी, लेकिन हाँ मैं आज कुछ नया कर रही हूँ, तो उस नए में आपसे जानना चाहती हूँ कि आप वो गाना सुनाइए जिसने आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी याद बना दी जो मतलब कोई मिटा नहीं सकता।
1: ऐसा गाना क्या याद आता है तो
0: एक गाना तो दो गाने भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो जिसने कुछ आपकी जिंदगी में छेड़ दिया, कुछ नया कर दिया, आपको सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई ये गाना ऐसा क्यों है, या इससे मैं जुड़ सकता हूँ या क्यों जुड़ सकता हूँ ये।
1: नहीं ऐसा तो देखिए, मुझे तो देशभक्ति गाने ही ज्यादा पसंद है, और मैं ऐसे गाने ही मतलब ज्यादा पसंद करते हैं, और खास करके ऐसे मतलब कि सभी गाने मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि सभी गाने में देखिए एक शब्द जो छुपा रहता है वो हम सभी के जीवन में, हो सकता है कि कुछ ना कुछ वो उन शब्दों से हमें प्रेरणा मिलता हो, तो सभी गाने को मतलब ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों में क्या है ये मतलब हम सोचते हैं एक बार।
0: क्या बात है, क्या बात है, तो बताइए क्या सुनाएंगे
1: आज? ज्यादा तो नहीं बल्कि थोड़ा सा ही गा देते हैं आज, तो एक गीत सुना देते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत मतलब आपका फेवरेट गाना होना चाहिए आप जो आप सुना रहे हो।
1: कुछ हद तक तो फेवरेट है, मतलब कि मूवी भी देखी हुई है मैंने, और ये गाना भी मतलब कि खूब चला है, 90 का दशक का बहुत ही फेमस गीत है, और इसको अभी भी जब भी सुनते हैं तो अच्छा लगता है। ओ मेरा दिल था अकेला, तूने खेले ऐसे खेला, तेरी याद में जागू रात भर, बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर, ओ दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर, बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिल बर, ओ चुपके से आंखों के रस्ते तू मेरे दिल में समाया, चाहत के जादू जगा के मुझको दीवाना बनाया, चुपके से आंखों के रस्ते तू मेरे दिल में समाया, चाहत के जादू जगा के मुझको दीवाना बनाया, पहली नजर में बनी है तू मेरे सपनों की रानी, याद रखेगी ये दुनिया अपनी वफा की कहानी, ओ तेरे प्यार पे कुर्बान मेरा दिल मेरी जान, तुझे लग जाए मेरी उम्र, बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर, धक धक धड़कता है ये दिल, बोलो ना क्या कह रहा है, पास आओ बता दो ना बाबा डर लग रहा है, मुझको गलत ना समझना, मैं नहीं बादल।

0: तेरे दिल मेरी जान तुझे लग जाए मेरी उम्र। बाजीगरो बाजीगर तू है बड़ा जादूगर। जी
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतना फील करके आप गाने को गाते हैं कि मैं क्या कहूँ। कैसे मतलब ये कैसे आप कर पाते हैं, जिस गाने को गाएंगे उसको पहले अपना बनाते हैं फिर गाते हैं, ये कैसे हो पाता है?
0: जी उसको उस गाने को मैं अपने आप में पहले ले जाता हूँ कि मतलब कि मतलब ये एक अलग सा फीलिंग आता है कि इस गाने में जैसे कि मैं ही हूँ और मैं ही सारा मोमेंट मुझे याद आता है।
1: हाँ ये बात सही है कि मतलब गाने को गाने के पहले उस इमोशन में पहले खुद को घुसा लो कि हाँ क्या बात है। ये बात सही कही आपने, जब किसी चीज को हम उस तरह से फील करते हैं ना तब उसके रिजल्ट बेहतरीन होते हैं।
0: जी जी उस गाने में अपने आप को ढालने से मतलब कि ऐसा हो जाता है बस।
1: क्या बात है, क्या बात है
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, मजा आ गया, बहुत मजा आया मुझे। बाजीगर अब याद रहेगा आपकी आवाज में सुनने के बाद।
0: जी जी थैंक यू,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो हुई इनके गाने की बात, और सच में कुछ गाने ऐसे गाते हैं आप लोग कि लगता है कि उस गाने को आप फील करके गा रहे हैं। तो चलिए एक ब्रेक लेते हैं, इस गाने का है मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइए, और सच में ये गाना बेहतरीन गाना है स्वर्ग फिल्म का, और मैं इस गाने को जब भी सुनती हूँ तो मुझे पूरी मूवी याद आ जाती, बड़ी इमोशनल सी मूवी है लेकिन अच्छी है।

बात है, क्या बात है, कितना बढ़िया सा गाना है, सुन के मज़ा आ गया। और अब कुछ लिखा है हमारे दोस्त ने, तो पढ़ लेते हैं कि बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने ये कहकर, बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने ये कहकर कि अब इंसान ही इंसान को डसने के काम आएगा। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने सुसाइड नोट छोड़कर, अब इंसान से ज़्यादा मैं रंग नहीं बदल सकता। गिद्ध भी कहीं चले गए, लगता है उन्होंने देख लिया कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। कुत्ते कोमा में चले गए ये देखकर, क्या मस्त तलवे चाटता है इंसान। कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, मिले अगर भाव अच्छा जज भी कुर्सी बेच देता है। जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी जिसकी खातिर बाप किडनी बेच देता है। क्या बात है, क्या बात है शिवम, क्या लिखा है आपने। ये कलयुग है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं इसमें। कली, फल, फूल, पेड़, पौधे सब माली बेच देता है। धन से बेशक गरीब रहो पर दिल से रहना धनवान, अक्सर झोपड़ी पे लिखा होता है स्वागतम। और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो चलिए देखते हैं अगला कौन है जिसके पास कोई याद है, और कोई याद है तो ज़रूर सुनाइए। और मुझे भी एक गाना और याद आता है, लेकिन थोड़ी देर में सुनाऊंगी।

0: लग रहा मुझे फिर से आप लोग के पास लौट के आना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉल आ चुका है और सुनते हैं आवाज किसकी है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ।
0: ओह राकेश जी, शिमला से, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया बढ़िया है।
0: क्या बात है, बढ़िया है, हमेशा ऐसे बढ़िया रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम हेल्दी वेल्दी वाइज, और ऐसी आपकी आवाज हमें सुनने को मिले, बस हम यही चाहते हैं। तो
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आज क्या सुनाने के मतलब दिमाग से आप हैं हमारे साथ? पहले तो मैंने यही कहा था कि अगर आपके पास कोई ऐसा गाना हो तो सुनाइए जिसके साथ आपकी कोई याद जुड़ी है, वो याद भी बताइए साथ में। तो अगर ऐसा कुछ है तो सुना सकते हैं, नहीं तो अपनी मर्जी का कोई भी गाना।
1: जी जी जी जी, तो कोशिश करूंगा मैं सुनाने की। तो मेरी याद ये है, जब मैं अकेला होता था घर पे, तो मैं एक अक्सर एक गाना सुनता था और बहुत अच्छा था, मूवी का नाम है इम्तिहान। तो मैं उस गाने को सुनता था, जब भी मैं क्या बोलते बोर होता था, तो मैं उस गाने को मैं अक्सर सुनता रहता था और पूरे परिवार के साथ, और स्पीकर लगा के मैं जो उस गाने को सुनता था। आज भी मुझे वो गाना याद है, और गाने की इस तरह से, इस तरह आशिक का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिक का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। इस ऐसे गाने को सुनता था मैं पहले।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। और भी कोई गाना सुनाना चाहते हैं आप?
1: और तो मुझे गाने तो बहुत है, लेकिन जब मैं आकाशवाणी को मैं सुनता था, तो मैं अक्सर दो तीन गाने सुनता था, एक गाना चलता था हमेशा, बजता था अभी भी, क्या धुन में बजता है गाने की, बोले कोई मेरे दिल में है, जो भी है हो अपना सा है, कभी लगता है इंतजार है, कभी लगता है ये जो प्यार है एक सपना तो है, कोई मेरे दिल में जो भी है वो अपना सा है। जी जी,
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि आपने मुझे अपनी मेमोरीज के साथ गाने को शेयर किया, वो गाने जो रेडियो से आपकी याद बने, और कुछ गाने ऐसे जिनको आपने खुद ब खुद अपनी यादों में रखा लिया। क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया सुन के, मजा आ गया। तो फिलहाल वहाँ का मौसम कैसा है?
1: वहाँ का मौसम अभी जो लगातार बारिश हो रही थी, और आगे भी जो है मौसम साफ हुआ है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, और हमेशा ऐसे ही आप गुनगुनाते रहिए और अपनी यादों में नए नए गानों को बसाते रहिए, और उसमें हम लोग की भी याद होगी मुझे लगता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राकेश जी। राकेश जी से हमने इनकी दो गाने सुने, एक ये जो अकेले गाते थे, अकेले सुनते थे, और एक वो जो इनकी रेडियो से याद बन गया। एक बार की बात है, मैं कॉलेज में पढ़ती थी, उस कॉलेज से मतलब जैसे मेरा क्लास पूरी हो गई, मतलब जैसे मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो वो कॉलेज छोड़ दिया। तो एक बार मैं जा रही थी, अचानक से मेरे फ़ोन में एक गाना बजा, और वो गाना मतलब सुनने के बाद मुझे लगा कि यार ये गाना मेरे कॉलेज को डेडिकेटेड होना चाहिए। अभी बताती हूँ, कॉल देख लूँ किसका। हेलो
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो,
0: हाँ गुड इवनिंग, आपका नाम?
2: मैं सविता जी।
0: सविता जी, ओहो कैसी हैं?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कहीं खोई खोई सी रहती हैं।
2: हाँ, जिम्मेदारी जो बढ़ी है हमारी।
0: ओहो हो, क्या बात है, चलिए जिम्मेदारियाँ बढ़ाइए लेकिन हमें मत भुलाइए।
2: नहीं नहीं, वो तो भूलूंगी नहीं, सुनती हूँ, पर मेरा फोन भी बैलेंस नहीं है, बोलती मैं आपको फोन नहीं कर पा रही हूँ।
0: ये बताइए आज सविता जी, आप तो बस वैसे आपके पास बहुत सारी बातें होती हैं, हमेशा अच्छी अच्छी बातें आप बताती हैं, तो मैं चाहती हूँ आपके पास कोई ऐसी भी याद है जो किसी गाने से जुड़ी हो। मतलब आप बातें बहुत अच्छी अच्छी बताती हैं, कभी एक्सपीरियंस तो कभी कोई कहानी, कभी किसी के बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि आप आज मुझे बताएंगे कोई गाना ऐसा है जिससे आपकी कोई याद जुड़ी हो, कोई मेमोरी, कोई किस्सा कुछ।
2: वो गाना है बेंगोली, बेंगोली में गाऊं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
2: आपको मैं बाद में समझा रही हूँ।
0: हाँ हाँ ठीक ठीक चलेगा।
2: गाने का बोले तारे आमी चोखे देखी तार अनेक गल्प शुनेछि, गल्प शुने तारे आमी अल्प अल्प ভালোবেসেছি। मतलब इसका इसका मतलब हुआ जिनको मैं नजरों से नहीं देखी हूँ उनके बारे में बहुत सारी बातें सुनी हूँ, अच्छी अच्छी बातें सुन के उस शख्स से मुझे मोहब्बत हो गई, लगाव हो गया।
0: क्या बात है?
2: जैसे कि रेडियो पे इतना सारा लिसनर का फोन आता है, सब कोई अच्छे अच्छे बातें करते हैं, वो बातें सुन के लगाव तो हो ही जाता है इंसान से। और ज्यादातर रेडियो का जो जो जिन लोगों से बातचीत होता है उन लोगों से देख नहीं पाता मैं इंसान। जैसे कि मैं अभी सामने हूँ आपके, आपसे तो मिल चुकी हूँ, अगर मैं बहुत दूर का होती तो आपको तो थोड़ी ना देख पाती नजरों से, पर नजरों से देखती हूँ। वैसे तो आजकल तो जमाना अलग है, तो आजकल फेसबुक पे यूट्यूब पे तो देख लेती, पर पहले के जमाने में वो था नहीं ना, इसीलिए गाना गाया गया है।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा कि अपनी सोच से ही उस इंसान से प्यार कर लो, सोच से उसको याद कर लो। क्या बात है, मतलब अपनी सोच से हम किसी को बहुत करीब रख सकते हैं, क्यों सविता जी? जैसे आप हैं हमारे करीब हमेशा रहेंगे।
2: जब गोंडावाली हो गई तब कहाँ जाऊंगी,
0: जाने भी नहीं देंगे आपको। हाँ अगर मैं कहीं चली गई तो आपको सोच में अपने ले जाऊंगी अपने साथ। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ जाता है सविता जी आपके पास बातें, मतलब बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। क्या बात है, और कुछ हिंदी में सुनाना चाहती हैं या फिर बस बंगला में ही काम? हिंदी में भी दो लाइन सुनना चाहेंगे हम लोग।
2: नील सागर पार हो तुमर काछे एसिसी, भालो बांधो नई बाबा सो तो मई भालो देसिसी, मैंने तेरी यादों में जुल्फों में लगाई फूल, आगे तेरी मर्जी है तू ना कर मुझे कबूल, छोड़ के मैं अपने
0: क्या बात है। वो तो आप आई हैं, ये तो मानना पड़ेगा, बहुत दूर से आप हमारे पास आई हैं। थैंक यू सो मच।
2: आज तो 842 किलोमीटर दूर चाहिए।
0: हाँ ये बात सही, बहुत दूर से आई है, लेकिन कोई बात नहीं, अक्सर दूरी पे ही हमें, मतलब कहते हैं ना हम कुछ दूर चलेंगे तभी तो मुकाम मिलेगा, तो आप इतनी दूर आई तभी तो आपको मुकाम मिला। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी से बात करके हमेशा मेरा दिल खुश हो जाता है, और आज भी खुश हो गया, मज़ा आ गया सुन के। लिखते हैं अनूप जी, अनूप जी आज सुनाने से रहे, लग रहा है गाना नहीं सुनाएंगे, लेकिन लिखा है इन्होंने कि कभी अल्फाज भूल जाऊं कभी बात भूल जाऊं। क्या बात है, कभी अल्फाज भूल जाऊं कभी बात भूल जाऊं, तुझे इस कदर चाहूं कि अपनी जात भूल जाऊं, कभी उठ के तेरे पास से जो मैं चल दूं, जाते हुए खुद को तेरे पास भूल जाऊं। वाह वाह वाह, क्या कहते हैं, क्या खूब कहा। शिवम लिखते हैं, इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, हंसते रहो इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, इसलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। आहा क्या बात है, आज तो शिवम ने दिल लूट लिया, पूरी महफिल लूट ली। और कमल जी आप ना, आप तो किसी दुनिया में दूसरे चले गए, इतना अच्छा गाते हैं लेकिन कभी कुछ सुनाते ही नहीं है। एनीवे ये शाम तो ऐसे ही रोशन होगी आप लोग की आवाज़ों से, तो एक गाना सुनाती हूँ जो मैंने कहा था ना कि मैं कॉलेज से जब छूटी तो मुझे अपने कॉलेज के लिए गाना डेडिकेट करने का मन किया, तो गाना था कुछ इस तरह से, छोड़ दिया वो रास्ता

बहुत, मतलब क्या बताऊँ, बहुत बहुत बढ़िया लगता था मुझे ये गाना। और चलिए अब मुझे तो जाना है आप लोगों से दूर, शाम भी हो चुकी है और किसी का कॉल भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्या हो गया है। तो चलिए आज की शाम आप लोग के नाम मैंने कर दी, आप लोग की मेमोरीज़ के नाम, जितने भी कॉल आए उन सभी से मुझे ये तो पता चला कि आप लोगों ने सच में म्यूज़िक को सुना नहीं है, बस आपने उस म्यूज़िक में अपनी एक याद, अपनी एक कह सकते हैं दुनिया बसाई है। चलिए सुनते हैं ये गाना, मेरी याद वाला, मेरे कॉलेज की ही जो कहानी बताने वाला गाना। अभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.67, यह गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 92-60-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: Delicious.
7: Hannah, let's dine. Come and join. Let's dine restaurant, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
6: और क्या क्या है खास?
7: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
6: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
8: शाह शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
9: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
8: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
9: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
8: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
9: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9260-981-976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
7: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
7: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
5: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
7: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की

फरमाइश की वीडियो आज सिंपल इज नॉट सो सिंपल स्टे ट्यून्ड एवरीवन आप सुन रहे हैं रेडियो 91.6 FM गोंडा शहर की धड़क।

साथ में। कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और क्या है आज की शाम में बहुत खूबसूरत बात जज्बात मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। क्या हाल चाल है पब्लिक? मैंने आप सभी को बहुत मिस किया, आप लोगों ने मिस किया कि नहीं मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। लेकिन उसके पहले अगर आ गई हूँ महफिल में और जज्बात बिखेरे जाएंगे ही जाएंगे, तो क्यों ना मैं भी कुछ कह दूं। मेरा कहना है कि दिल दरिया है तो विशाल होना चाहिए, मन में ना बैर ना कोई मल्लाल होना चाहिए, करुणा की हद बस अपनों तक क्यों रहे, गैरों की पीड़ा का भी एहसास होना चाहिए, किसी की भूल पर पत्थर हो जाना आम बात है, क्षमा के लिए भी एक द्वार होना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? कौन यहाँ मुकम्मल है, कौन बेदाग है, खामियों से भी थोड़ा प्यार होना चाहिए, हर रिश्ता हिसाब से निभाया नहीं जाता, हर रिश्ता हिसाब से निभाया नहीं जाता, अपना भी थोड़ा बहुत ख्याल होना चाहिए, दिल का होना ही काफी नहीं इंसान के लिए, दिल का होना ही काफी नहीं इंसान के लिए, उस दिल में थोड़ा सा इंसान भी होना चाहिए। तो आप लोगों का क्या कहना है चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। लेकिन उसके पहले वेलकम महेंद्र राजस्थान से, मुस्तफा जी सऊदी से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, सोनिया तिवारी गोंडा से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, अनुष्का श्रावस्ती से, सबलू सावंत मुंबई से, अनिल वर्मा जी सैदापुर से, नव्या गोंडा से, राजू सीतापुर से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, निधि सीतापुर से, बबीता जी गोंडा से, उषा कश्यप गोंडा से, मुस्तफा सऊदी से, रितेश साहू कमल नयन और परिवारपुर गोंडा से, कार्तिक कश्यप आपका भी स्वागत है, स्टे ट्यून्ड, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, जग्गू दादा स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो, मालवीय नगर से राजेश सिंह जी, नागेश्वर धाकड़ एंड विशाल बेदर्दी स्टे ट्यून्ड। एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली वाली फरमाइश। तो क्या आप सभी अपनी फरमाइशी के गीतों को सुनने के लिए तैयार हैं? तो हमारे पास में पहली फरमाइश है दोस्तों महेंद्र की राजस्थान से, उनको सुनना है गाना उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में और देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। ऐसा क्या, बहुत ही कमाल है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल करिएगा, बेशक करिएगा, हाँ करिएगा, स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल की खट्टी मीठी कर दी लेकिन रियलिटी चेक करने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.67 गोंडा शहर की।

प्यार और ये उठा ले जाएंगे डोली में। ये फरमाइश आई थी हमारे पास, मैं महेंद्र की तरफ से जो की है राजस्थान से। नाउ लेट्स गो टू अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुस्तफा जी की सऊदी से। उनको सुनना है गाना पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो मॉइस्चर उड़ जाएगा। ये वाला गाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो ऐड वाला था, लेकिन असली वाला ओरिजिनल वाला गाना हम जरूर इंजॉय करेंगे मुस्तफा जी की फरमाइश पर। लेकिन उसके पहले हमारे लिसनर्स का पूछना है कि ये दो दिन कहाँ भंडारे में गई थी आप। उसी के साथ में हमारे दूसरे लिसनर ने जवाब दिया है कि भंडारा नहीं भाई, उनकी भी पर्सनल लाइफ है, सिंपल इंस्टा फेसबुक उनको भी हैंडल करना करती है ना, तो उसी में बिजी थी शायद, मैंने तो उनको फॉलो भी किया है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो आपने इंस्टा, मैं इंस्टा, जी हाँ दोस्तों, मैं सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं 2 घंटे का समय निकाल ही नहीं पाई कि मैं आप लोगों के बीच आऊँ और फिर आप लोगों के साथ में थोड़ी सी गपशप करूँ, है ना, इसीलिए तो मैं नहीं आई थी। आपने बिल्कुल सही कहा धर्मेश त्रिपाठी जी, कितना जानते हैं आप मुझे, इतना मेरे अपने मुझे जान जाते, फिर तो बात ही नहीं थी ना, फिर तो कोई आशा निराशा वाली कोई हिसाब ही नहीं थे ना। वाओ, थैंक यू सो मच, इट मींस रियली अ लॉट। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, मुस्तफा जी की फरमाइश, और उनको सुनना है गाना पर्दे में रहने दो आशा जी की आवाज में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

तौबा, हमने एंजॉय किया हमारी फेवरेट, हम सब की पसंदीदा आशा जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सनम्मा मुस्तफा जी की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू पब्लिक, अगले वाले डिमांड की तरफ। क्या आप लोग भी चलना चाहेंगे? आपकी अर्जी सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में अगली फरमाइशी की तरफ चलेंगे चलेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक लिसनर का कहना है कि जिस घर आंगन में बेटियां पलकर बड़ी होती हैं, बेटी की विदा होने पर उसकी सखियां ही अकेले नहीं रोती हैं, बल्कि वो घर आंगन भी अकेला सुनसान हो जाता है। और हमारे दूसरे लिसनर हैं महेंद्र राजस्थान से, उनका कहना है कि हंसकर जीना ही तो जिंदगी का हुनर है, हंसकर जीना ही तो जिंदगी का हुनर है, हर मोड़ पर एक नया ही सफर है, मिले जो खुशी तो बांट लो सब में, आए हाय मिले जो खुशी तो बांट लो सब में, यही तो इस छोटी सी जिंदगी का असर है। बहुत खूब, बहुत उम्दा महेंद्र जी, एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। जग्गू दादा को जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना दीवाना पिक्चर का कुमार सानुअल का याग्निक की आवाज में पायलिया हो। सो एंजॉय करते हैं ये हो वाला बहुत ही खूबसूरत सा सदाबहार नगमा सिर्फ और सिर्फ जग्गू दादा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

एंजॉय किया, ये बहुत ही खूबसूरत सरंग मापा ये लिया, हो हो हो हो हो हो। सो ये फरमाइश थी जग्गू दादा की जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से। नाउ लेट्स गो टू अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले दोस्तों, हमारे एक लिसनर है नागेश्वर धाकड़, उनका कहना है कि कुछ दिनों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अकेला हो गया, सब अपने आसपास होते हुए भी मैं अकेला फील कर रहा हूँ। अरे अरे भाई भाई, थामो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, अकेला काहे को फील करना है, अपन है ना भाई। अब जब ज्ञान स्थली परिवार है, नव्या जी, जग्गू दादा, महेंद्र और आशु जी, प्रीति जी, हमारे मुस्तफा जी, इतने लोग, धर्मेश त्रिपाठी, हमारे बहुत सारे लिसनर्स जब एक साथ में हैं, हम साथ में हैं, ज्ञान स्थली के मेंबर हैं, तो आप कैसे अकेले हो गए? नहीं, हम अकेला तब फील करते हैं जब हमारे दिल में जो होता है वो हम किसी से शेयर नहीं करते हैं, और हम शेयर उसी से करते हैं जो थोड़ा सा विश्वसनीय होता है, जिससे हम शेयर कर सकते हैं, जो हमें जज नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, हर एक बात हम हर एक से तो नहीं शेयर कर सकते हैं ना, तो जब हम नहीं करते हैं तो शायद ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, या फिर शायद जब हम शेयर करते हैं लेकिन कोई ऐसा

वाला नहीं होता है, तब हमें लगता है कि हम अकेले, लेकिन हम अकेले कभी नहीं होते मेरे मित्र। सब हैं, सबके सब हैं, सबके सब हैं। तो ऐसा सैड सैड नहीं फील करने का, और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में सोनिया तिवारी की। सोनिया तिवारी को सुनना है गाना। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, और उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। सो एंजॉय करेंगे ये सुपर डुपर हिट नगमा अमित कुमार और लता जी की बहुत ही प्यारी सी लेकिन दर्द भरी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ सोनिया तिवारी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, आशा मिश्रा जी लखनऊ से, नमस्ते।

ना तेरे दोस्त ने मुकाम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। अमित कुमार लता जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा। इसकी फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी सोनिया तिवारी की तरफ से, जो की है गोंडा से। और इस फरमाइशी गीत को सुन के मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं कुछ कहना चाहूंगी आप सभी से। ऐसे मैं हमेशा कहना चाहती हूँ, और आप सुनना चाहें ना सुनना चाहें तभी मैं कहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप सुनेंगे। आप सुनना चाहेंगे, आप नहीं सुनना चाहेंगे, आप तब भी सुनेंगे, क्योंकि इतना तो कनेक्शन हो ही गया है मेरा आपसे। सो कहना है कि हम आज भी उसी रुआब से चलते हैं, हमारे पांव हैं हमारे हिसाब से चलते हैं, हमने जो कह दी वो पत्थर की लकीर है, फिर सारे फैसले हमारे जवाब से चलते हैं। हमारे रकीबों ने भी देख ली हमारी धमक, कि वहां भी कैसे हम जनाब से चलते हैं। ये खून अब गर्म ईंधन मांगता है, उन्हें बता दो कि अब हम तेजाब से चलते हैं। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की गोंडा से। धर्मेश त्रिपाठी को गोंडा से सुनना है गाना दिल बहलता है मेरा बस आपके आ जाने से। ओह माय गॉड, एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा मोहम्मद अजीज और साधना सरगम जी की आवाज में, खुद गर्ल्स पिक्चर का। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो कमल नयन जी, आपका स्वागत है, स्टे ट्यून्ड। ओह आई लव दिस सॉन्ग, आई थिंक एवरीवन लव्स दिस सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड।

0: Vishal Srivastav ji from Gonda. Namaste, stay tuned and welcome in your show. हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा दोस्तों धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर, और इनका कहना है कि आपके आ जाने से महफिल में रौनक आ गई, आपने ये प्यारा सा गीत सुनाकर दिल को लुभा लिया। इस खूबसूरत गीत को प्ले करने के लिए दिल से धन्यवाद, आरजे सिंपल आपकी आवाज ने आज मेरी शाम को खास बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो अशोक, स्टे ट्यून्ड। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहें दिखता ना। सो एंजॉय करेंगे ये वाला नंबर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मोहम्मद मुशी फ्रॉम बाराबंकी स्टेडियम। कितने सुपर डुपर हिट गाने हैं आज ना, ऐसा लगता है लग रहा है क्या बोल रही हूँ मैं दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि चुन के प्लेलिस्ट बनाई गई। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड।
1: मुंह तो बंद करो अंकल।

सच्ची हमने एंजॉय किया। मैं हुना का ये SRK का तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहें। अनुष्का की फरमाइश पे जो की है श्रावस्ती से। Now let's go to अगले वाले डिमांड की तरफ। लेकिन उसके पहले कुछ नहीं दोस्तों, गीता श्रीवास्तव जी वंस अगेन वेलकम इन योर शो। और अगली फरमाइश हमारे पास में सबल सावंत की मुंबई से। अगली फरमाइश हमारे पास में है बहुत ही खूबसूरत से नगमे की, और बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है। हर कदम पर कोई कातिल है, कहां जाए कोई, जब पता है हर कदम पर कोई कातिल है तो कातिल के पास क्यों ही जाना है, है? और अगर कातिल में आए तो रास्ता साफ करते हुए प्यार से निकल जाना है, साइड से निकल जाना है, इतना भाव ही क्यों देना है। सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से ये सदाबहार नगमा, हर दिल में बसने वाला गाना, बहुत ही खूबसूरत सा गाना, सिर्फ और सिर्फ सबली सावंत की फरमाइश पर जो की है मुंबई से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

कहाँ जाए कोई और हर कदम पर कोई कातिल है कहाँ जाए कोई। अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा और गीता श्रीवास्तव जी को भी ये गाना बहुत अच्छा लगा। इनका कहना है कि अरे मैम कोई आपकी अदाओं से पे मरता है और कोई आपकी आवाज पे मरता है, बताइए कहाँ बचकर जाएगा कोई। अरे मैंने अपनी महफिल की बात नहीं की थी, अपनी पर्सनल लाइफ वाली महफिल की बात की थी गीता श्रीवास्तव जी, फिलहाल आपने ऐसा बोला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बहुत स्वीट है सच में। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, ओहो ये फरमाइश थी सबदुल सावंत मुंबई से, और अगली फरमाइश हमारे पास में अनिल वर्मा की सैदापुर से, उनको सुनना है गाना ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। सो तमन्ना का ये गाना एंजॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ अनिल वर्मा जी की फरमाइश पे जो कि है सैदापुर से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

गाया गया है ये नगमा अनिल वर्मा जी की फरमाइश पे, जो कि है सैदापुर से। नाउ लेट्स गो टू अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों नव्या की गोंडा से, उनको सुनना है गाना हसमत पगली प्यार हो जाएगा। सो एंजॉय करेंगे ये गाना सोनू निगम की आवाज में और श्रेया जी की आवाज में। और इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज़ की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से, वो भी आपके अपने आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा। मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने अभी तक पेट पूजा नहीं की है फटाफट से पेट पूजा कर लेना, पेट पूजा करने के बाद में फिर से अपनी एंटरटेनमेंट की महफिल में वापस आ जाना। स्टे ट्यून्ड।

0: अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
2: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
3: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्य जीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के दो लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
5: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
0: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियेला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके, दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष एफआईएच हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सभी का आपके अपने शो फरमाइश में आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों, ये फरमाइश थी बबीता की गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजू की, सीतापुर से। उनको सुनना है गाना, बेटा अपनी माँ से कभी रूठ भी जाए, माँ अपने बेटे से कभी रूठती नहीं। सो एंजॉय करते हैं उदित नारायण और रूप कुमार राठौड़ की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा माँ बेटे के रिश्ते वाला नगमा, राजू जी की फरमाइश पे जो कि है सीतापुर से। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट्स और सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड हैप्पी।

तरीके से कभी रुकती नहीं, हमने एंजॉय के ही नगमा बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना कोयल बोली दुनिया डोली। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला सुपर डुपर हिट नगमा आशु जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

दोस्तों ये फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी आशु मिश्रा जी की तरफ से, जो कि है लखनऊ से। अब चले चलते हैं हमारे आज के अगले फरमाइशी गीत की तरफ, क्योंकि वक्त बहुत कम है और फरमाइशी बहुत बहुत सारी। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। दलाल पिक्चर का है ये गाना और इसकी फरमाइश हमारे पास में आई हुई है दोस्तों उषा कश्यप की तरफ से, जो कि है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

के बाद मर जाओ तो गम नहीं मारा नहीं मरना। हम एंजॉय के लिए नगमा बढ़ते हमारी आज के अगली फरमाइशी गीत की तरफ। एक फरमाइश थी कमल नयन की और आवाज थी अलका याग्निक की। अगली फरमाइश हमारे पास में कार्तिक कश्यप की। कार्तिक कश्यप को गोंडा से सुनना है गाना, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे और किसी दिन ये तमाशा।

बढ़ते हमारी आज के अगली फरमाइश गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजेश कुमार की गोंडा सिंचाई विभाग से। इंजॉय करते हैं लव तुझे लव मैं करता हूँ तेरी अदाओं पे मरता हूँ। स्टेडियम

और लव तुझे लव मैं करता हूँ। हमने कुमार सानूवल का याग्निक की आवाज में एंजॉय किया है बरसात का ये बहुत ही बेहतरीन सनंग। में बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश होगी हमारी आज की आखिरी फरमाइश। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है गीता श्रीवास्तव जी की गोंडा से और नागेश्वर धाकड़ की। इन दोनों को सुनना है गाना अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें। एंजॉय करते हैं ये नगमा। इसी के साथ लेती हूँ अलविदा। सो दोस्तों मेरे मित्रों अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना, हंसते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए। आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा अगर हम कहें और वो मुस्कुराएं।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9286196। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास रिलायंस ज्वेलर्स स्टेशन रोड गोंडा,
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 7234020202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप। इस्तकबाल आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणस्थली 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल। और आज का दिन हो जाता है इसलिए खास, क्योंकि आज हमारे जो हफ्ते भर के श्रोता होते हैं वो बन जाते हैं वक्ता। तो जी हाँ, और आज आपका समय है और शुरू हो चुका है। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। हमारे साथ कोई कॉल भी आ चुकी है और देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो हेलो।
1: खूबियाँ भी हैं मुझ में कमियाँ भी हैं मुझ में। अब ढूंढने वाले तू सोच, तेरे को चाहिए क्या मुझ में। गुड इवनिंग सर।
0: क्या बात है, मतलब कितनी खूबसूरत लाइन से आपने अंदाज किया। खूबियाँ भी हैं तुझ में, खामियाँ भी हैं मुझ में, ढूंढने वाले तू सोच, को चाहिए क्या मुझ में। क्या बात है, बहुत ही शानदार पंक्ति। और आपका प्यारा सा नाम जानना चाहेंगे।
1: दीपांशी तिवारी
0: जी। दीपांशी जी, हाँ, बहुत दिनों के बाद। कैसी हैं आप?
1: जैसी हमेशा रहती।
0: मतलब एकदम मस्त।
1: मस्त हमेशा रहते, हमेशा हैं, रहेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा आप ईश्वर करे आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त।
1: वो भी रहते
0: जी जी। ये तो मतलब हमने तो आप में खूबियां ही देखी हैं और एक खूबी जानते हैं कि आप गाते भी बहुत अच्छा है, तो उसी खूबी से शुरू करते हैं आज की शुरुआत।
1: गाना पड़ेगा।
0: हाँ, मतलब आए हैं महफिल में तो बगैर गाए कहाँ जाएंगे। जी हाँ, क्या इस महफिल में आने के बाद गाना पड़ता है बुधवार को।
1: वैसे नहीं
0: जाने
1: सकते।
0: नहीं, वैसे भी गा सकते हैं, लेकिन बुधवार को काली का होता है तो।
1: तो क्या सुनाए जाए आज?
0: जो आप सुना दीजिए। इतना वक्त तो मतलब हमको लगता है ताजमहल बनाने के स्ट्रक्चर को लेकर नहीं लगा हुआ होगा शाहजहां ने। जी
1: मैं मतलब इतना पाऊंगी
0: जी,
1: क्योंकि मेरे पास तो परवल का बीज कर चुका हो रहा है, मगर मैं खुद की लिखी हुई दो लाइन सुना दूंगी, उसके बाद में पूरा कंप्लीट कर दूंगी जब अच्छा हो जाएगा काम।
0: जी, क्या खुद से लिखा है आपने?
1: यस सर।
0: जी, तो सुनते हैं क्या लिखा है।
1: तो ठीक है, इस समाज में तुम्हें मिलेगा प्यार बहुत, प्यार बहुत, लेकिन मात प्यार जैसा दुनिया में प्यार नहीं, माँ के प्यार जैसा दुनिया में प्यार नहीं है। दुख सुख सहे, दुख सुख सहती रहती है, सभी किसी से कहती है, दुख सुख सहती सहती है, कभी किसी से न कहती है, माँ के आंचल जैसा कोई छाँव नहीं है, कोई छाँव नहीं है, माँ के प्यार जैसा दुनिया में प्यार नहीं है, माँ के प्यार जैसा दुनिया में प्यार नहीं है, रूखा सूखा खाती है, कभी सूखा गरम बचाती है, रूखा सूखा बचाती है, इन्हीं कलीन सताना मेरे प्यारे भाइयों, इन्हें कभी न सताना मेरे भाई बहनों, माँ के प्यार जैसा दुनिया में प्यार नहीं है, माँ के प्यार जैसा दुनिया में प्यार नहीं है, माफल खूब बिठाओगे दुनिया तुम्हें बिठाएगी, माफल खूब बिठाओगे दुनिया तुम्हें बिठाएगी, जितना प्यार दोगे माँ को उतना प्यार मिलेगा, जितना प्यार दोगे माँ को उतना प्यार मिलेगा, माँ के प्यार जैसा दुनिया में प्यार नहीं है। हम वकी डाल पे बैठ कोयलियाँ मीठे रंग सुनाती है, हम डाली पे बैठ कोयल मीठे रंग सुनाती है, वैसे इनकी बोली मिश्री मलाई जैसी, वैसे इनकी बोली मिश्री मलाई जैसी, माँ के प्यार जैसा दुनिया में प्यार नहीं है, माँ के प्यार जैसा दुनिया में प्यार नहीं है। थैंक यू सर।
0: क्या बात है ना,
1: हेलो,
0: माँ के प्यार को लेकर आपने बहुत अच्छी बात कही। वास्तव में माँ के प्यार जैसा दुनिया में प्यार नहीं है, और कहीं पंक्ति मुझको भी याद आ गई कि सुना दे कि रहने दे।
1: नहीं नहीं सुना दीजिए तो सुनने के लिए। हम सुनने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हेलो,
0: है जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता, हनी कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, है जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता, बहन हो भाई हो बेटा हो बीवी हो कि महबूबा, बहन हो भाई हो, बहन हो भाई हो बेटा हो बीवी हो कि महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं
1: सकता।
0: बहुत अच्छी बात बताई आपने, तो आपने माँ पर कहा तो हमारे जहन में पंक्तियाँ आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ये पंक्तियाँ काफी दिन से भूला हुआ था, मैं पहली पंक्ति ही नहीं याद आ रही थी। और आपको अच्छी कोशिश निरंतरता बनी रहे और आशीर्वाद भी दिया है।
1: जी सर, मैं भी अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी छोटी सी लाइन पे।
0: जी,
1: कि मुस्कुराती रहे हमेशा हमारे आंगन की लड़कियाँ, मुस्कुराती रहे हमेशा हमारे आंगन की लड़कियाँ, दुख न पहुँचाओ ए मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि हमी से हो तुम, तुम्हें से है हम, क्योंकि हमी से हो तुम, तुम्हें से है हम, माँ बेटी का शब्द हर एक अनमोल है, सबसे बड़ा
0: दिन तक हमारी माँ का आशा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारी पंक्तियाँ, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको। जी हाँ, उम्मीद करेंगे आपसे अगले बुधवार को फिर मिले। जी हाँ, वास्तव में हमारे साथ दादा जुड़ चुके हैं, अनिल बनर्जी जी, चरण स्पर्श करते हैं आपको। मोहम्मद मुशीफ जी, आप उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, और अब देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो,
2: आपके साथ अपने ही लोग होंगे आपके।
0: हाँ, क्या बात है, वो तो हमेशा रहते हैं। दादा चरण स्पर्श,
2: खुश रहिए, आबाद रहिए और आगे बढ़िए।
0: मतलब अब ये देखिए, सबसे ज्यादा आगे बढ़ने का आशीर्वाद जिसे दिया जाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता।
2: अरे मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा।
0: हाँ वही वही, मतलब वो जब कोई कहता है आगे बढ़िए, तो खुद जो हमने बोला होता है किसी से वो याद आ जाता है। हमारे एक मित्र है, वो दुकान किए हुए हैं। हमारे एक मित्र है तो उनकी एक दुकान है, तो जब कोई उनकी दुकान पे कुछ मांगने आता है तो कहते हैं आगे बढ़िए, तो हमने कहा नहीं भाई, ऐसा वाला आगे नहीं बढ़ना है, वैसा वाला आगे बढ़ना है
2: भाई, उन लोगों की बातें नहीं कर पाएंगे।
0: जी जी दादा, फिलहाल आपके मधुर कंठ से क्या सुनने वाले हैं आज हम?
2: आज मैं आपको एक निर्गुण का छोटा सा मुखड़ा सुनाऊंगा।
0: हाँ, निर्गुण सुनाने वाले, क्या बात।
2: नहीं, अभी मैंने बीना जी को भी वही निर्गुण सुनाया था।
0: हाँ।
2: और उसके बाद मैं आपको भी वो निर्गुण का जो दो स्टेंजा उनको सुनाया था, बाकी स्टेंजा आपको सुनाऊंगा।
0: क्या बात है।
2: उसके बाद मैंने आपको किशोर दा का बहुत प्यारा एक निर्गुण सुनाऊंगा, अगर आपकी इजाजत होगी तो।
0: जी जी बिल्कुल, ऐसा नहीं कि तुम बिन जीवन कैसे बीता।
2: अरे आप यू आर ए वेरी, अब हमको ग्रेट बोलेंगे तो आप मेरे यकनी हो।
0: अरे नहीं नहीं, आपने निर्गुण कहा तो हमको लगा कि शायद ये गीत हो सकता है।
2: नहीं आप ये गाना सुनिएगा, ये मैंने जब मैं उसमें डायरेक्टेड हुआ करता था
0: जी,
2: जब इस मैंने ड्रामा को जब मैंने डायरेक्ट किया था
0: जी,
2: तो वो है ये निर्गुण है
0: जी,
2: और इसमें है कोरस का
0: जी,
2: तो कोरस है लेकिन कोरस मिलेगा नहीं है हमको मालूम है, अगर आप कोरस गा दें तो फार दे बेटा। मैंने आज बीना जी को सुना है,
0: हम प्रतीक्षा में है कि कब आपके मधुर कंठ से निर्गुण शुरू होगा।
2: चलिए मैं पहले सुनाता हूँ आपको निर्गुण
0: जी, निसंदेह
2: जो मैंने सुना दिया बीना जी को
0: जी,
2: दो अंतरा, उसके बाद मैं सुनाता हूँ आपको उसके बाद का दो स्टैंजा
0: जी,
2: ठीक है
0: जी,
2: क्या चाहूंगा
0: जी? बिल्कुल
2: ओके सर। ठगनिया काहे नैना चमकावे, ठगनिया काहे नैना चमकावे, ठगनिया काहे नैना चमकावे, ठगनिया

0: मृदंग बनायो, कद्दू काट के मृदंग बनायो, नींबू काट मजीरा, नींबू काट मजीरा, बीच तराई मंगल गावे, बीच तराई मंगल गावे, बनाचे बालम खीरा ठगनिया, काहे नैना चमकावे ठगनिया, काहे नैना चमकावे ठगनिया, काहे नैना चमकावे ठगनिया, काहे नैना चमकावे ठगनिया, काहे नैना चमकावे। अब वो अंतर में बोलना चाहता हूँ जो पहले बोल नहीं चुका हूँ। भैंस पदमनी आशिक चूहा, भैंस पदमनी आशिक चूहा, मेढक ताले लगावे, मेढक ताले लगावे, छप्पर चढ़ के छप्पर चढ़ के गदहान नाचे, छप्पर चढ़ के गदहान नाचे, ऊट विषंग पर पद गावे ठगनिया, काहे नैना चमकावे ठगनिया, काहे नैना चमकावे ठगनिया, काहे नैना चमकावे ठगनिया, काहे नैना चमकावे। अच्छा अंतरा सुनिएगा लास्ट वाला।
1: जी
0: अमवा पेड़ चढ़े कछुआ तोड़े, अमवा पेड़ चढ़े कछुआ तोड़े, गिलहरी चुन चुन लावे, गिलहरी चुन चुन लावे, कह कबीर कहे कबीर, सुन भाई साधो, बगुला मो दिल गावे, बगुला भो दिल गावे ठगनिया, काहे नैना चमकावे ठगनिया, काहे नैना चमकावे। धन्यवाद सर। थोड़ा आवाज
1: बड़ी कमाल की बात है।
0: नहीं है क्या ना कि आवाज बड़ी आज मेरी भाव तो हो रहता है,
1: बहुत शानदार क्या बात है।
0: आज मैं आपको किशोर दा का एक छोटा सा
1: जी
0: बहुत प्यारा उनका गाना है किशोर दास साहब का
1: जी,
0: अगर आप इजाजत दें तो मैं गाऊं
1: जी। हम प्रार्थना कर रहे हैं
0: अरे मैं प्रार्थना अरे सर आप प्रार्थना कैसे करेंगे, आप आदेश करेंगे?
1: नहीं नहीं हम हमेशा निवेदन करेंगे।
0: अरे आप तो हमारे घर से बता रहे हैं, आपसे बात ही नहीं कर पाऊंगा।
1: अरे नहीं दादा, बस आप ही लोगों ने सीखा है।
0: तो मैं एक छोटा सा किशोर दा का बड़ा मुझे जो बचपन में मुझे मैं पहली बार गया था
1: जी।
0: तो आज मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली है किशोर दा का गाना और उसमें शशि कपूर जी हैं
1: जी।
0: और नहीं एक ऋतु आए एक ऋतु है आपको मालूम होगा
1: जी,
0: शशि कपूर साहब
1: जी जी जी।
0: थोड़ा प्रयास करूंगा, अगर कोई कमियां हो तो छुपा जाऊंगा। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए मौसम बदले ना तेरी

एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले न सही। कब तक सूने धरती पर्वत आंखें तरस गई, बादल न बरसे तुमने बरस गई। कब तक बरसे कब तक सूखे पर्वत आंखें बरस गई, बादल ना बरसे दुख तो बरस गई। बरस बरस के दुख बढ़ जाए, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसी। प्यासी बंजर धरती किसका पेट भरे, प्यासी बंजर भट्टी किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे खेती कौन करे। प्यासी बंजर धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे

0: नीर बहाए एक ऋतु आए एक ऋतु जाए मौसम बदले ना थैंक यू सर।
1: क्या बात है दादा, मौसम बदले ना क्या बात है।
0: नहीं थोड़ा कोशिश किया
1: भाई आपकी, दो दो गीत आपने इतने हाई उसके गाए कि वहाँ तक पहुँच पाना शायद मुश्किल होता है।
0: आप कहें तो एक छोटा सा और भी सुना दूँगा।
1: जरा फोन की कई लोग फोन कर रहे हैं लगातार।
0: नहीं मैं छोटा सुनाऊंगा, एक अंतरा है बस, ओनली ज्यादा नहीं।
1: नहीं ये करें कि अगर अगर हम उसको लास्ट में रख देते।
0: अरे पहले मेरा सुन लीजिए।
1: जी जी वो
0: मैं ज्यादा गाऊंगा
1: जी,
0: और मैं इसका बोल है
1: जी
0: आप सुनेंगे
1: जी
0: तो लगेगा। अरे कहा तो लग गया सर
1: जी
0: आपने
1: जी।
0: अरे कहा तो लग जाए झट से, नहीं समझता है। चल ठीक है आप आखिरी में ही सुनाएंगे कोई बात।
1: जी जी जी
0: ओके सर, शुभ रात्रि दबा के
1: जी। जी और इसी के साथ भाई हमारे कोई और श्रोता है जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो देखते हैं भाई। देखते हैं कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो।
2: हाँ जी मैं आरके श्रीवास्तव बोल रहा हूँ।
1: अरे चल स्पर्श
2: खुश रहिए सारे भाई, हम थोड़ा भूल जाते हैं।
1: हाँ
2: और क्योंकि मेरी आईडी वाईडी है ना, मैं तो डायरेक्ट कॉल करके आता हूँ।
1: ये तो हमारा भाग्य है, हमारा बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है, हमारा सौभाग्य है।
2: अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है सब, थोड़ा बहुत व्यस्तता और थोड़ा बहुत दिमाग से उतरना, बाकी ऐसा थोड़ा है कि जो है आपके एफएम से दूर है।
1: नहीं हमारे दिल से दूर नहीं हो सकते, एफएम तो बहुत दूर की बात है।
2: चलिए मैंने कहा कि चलिए आ गए हैं, हर टाइम से घर आ गए थे
1: जी,
2: तो दो लाइन हम भी सुना दे।
1: अरे अरे बस प्रतीक्षा है।
2: ठीक है
1: जी
2: तो शुरू करें ज्यादा तो
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल निवेदन है।
2: चलिए मेरी आवाज ठीक आ रही है।
1: अरे आपकी आवाज क्रिस्टल क्लियर है।
2: चलिए चलिए

0: थैंक
1: यू सर। दादा वैसे ही नहीं, मैं कहता हूँ कि हमारे दादा गोंडा के किशोर कुमार हैं।
0: मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ।
1: जी,
0: इधर मैं प्लेन जैसे जैसे गा देते थे, अब बनाना नहीं गाते।
1: जी
0: तो मैंने अब ऐप पे अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कुछ गाने वगैरह बैकग्राउंड ओरिजिनल म्यूजिक पे मैंने गाना शुरू किया।
1: जी,
0: तो आज मैं गा रहा था, अभी मैं एक अनुभव बताऊँ तो मुझे अजीब आर्ट सा लग रहा था।
1: हाँ,
0: जैसे फ्री ने समय आ रहा नहीं आ रही थी पहले जैसे मैं करता था, और चूंकि वो एक आदत सी बन गई है कंटिन्यू, मैं इधर एक महीने से
1: जी
0: जैसे ओरिजिनल म्यूजिक पे गाता हूँ। जैसे ये गाना मैंने गा रखा है मेरे, अभी आप जाइएगा।
1: हाँ, मैंने
0: तो उस पे लगा हुआ है, फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी चल रहा है। तो
1: जी
0: वो आज अजीब वो लग रहा था, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ।
1: नहीं, लेकिन हमको तो बहुत शानदार लगा बिना संगीत के।
0: गा लिए थे,
1: बहुत प्यारा, बहुत प्यारा।
0: कोई लोग बताएंगे, हम तो खाली गाते हैं, हमको सुनाई उनाई थोड़ो देता है, हमारे पास कोई कुछ लगाए थोड़ो है, पर गाते रहते हैं तो आप लोग कहते हैं।
1: अरे मतलब काबिले तारीफ। और जैसा गाना है, जैसा उठना है, जहाँ गिरना है, जहाँ जैसी पिच है, वो आप पूरा ध्यान रखते हैं।
0: मैं अभी थोड़ा सा इधर आपको एक सरप्राइज देंगे हम कुछ दिन बाद।
1: जी
0: और थोड़ा हम मेहनत में लगे हैं, और अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो कुछ आपको नई चीज दिखाई पड़ेगी।
1: क्या बात।
0: और काफी मैंने मेहनत की है इधर। चलिए आप दूसरों को मौका दीजिए।
1: चलिए, और हम आपकी जो है उस सरप्राइज की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, अरे वो आपको सबसे पहले बताएंगे, होने दीजिए।
1: जी, बिल्कुल।
0: अच्छा,
1: चरण स्पर्श।
0: खुश रहिए।
1: जी हाँ भाई, तो ये हमारे साथ श्री आर के श्रीवास्तव जी, बहुत ही प्यारा गीत। और इनको तो हम गोंडा के किशोर कुमार कहते हैं, कि मतलब वास्तव में रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, और ऐसा लगा जैसे हम उसी दुनिया में ही कहीं हों। जी हाँ, और इसके पश्चात भाई अब हमारे साथ अनूप मिश्रा जी हैं। भाई नमन करते हैं आपको। श्री तेजनाथ शुक्ल जी हैं चरण स्पर्श। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। ज़रूर बताइए, फ़ोन करके बताइए कि अब आप कैसे हैं। अनूप मिश्रा जी भी हमारे, आहा सो चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, अब आप आ चुके हैं तो ये रात बनेगी। मुस्तफ़ा सऊदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आपको भी शुभ संध्या, आदाब। और भाई आज के बाद महेंद्र दीपेन जी लिखते हैं, यूँ तो इसमें रखा कुछ भी नहीं, मगर यूँ तो ना कहिए कि वफा कुछ भी नहीं, आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे, यूँ तो इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं, और सच माने तो मैं समझता हूँ कर सकता, या तो मुझे सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। क्या बात है भाई, या तो सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए। जी हाँ, हमारे साथ फिर कोई आ चुका है, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो,
2: हाँ नमस्कार भैया।
1: हाँ, ये तो आवाज तो हम पहचान लेंगे। लाखों में दर्द कुमार जी कैसा है?
2: ये स्विच आप बता रहा था। हेलो
1: जी, आप वो कुछ हो सकता है, नेटवर्क लगातार फोन आ रहे हैं। और आप कैसे हैं? प्रणाम।
2: ठीक है।
1: क्या बात है।
2: ठीक है, कोई और नंबर है किसी का लगा है?
1: नहीं, आप सुनाते रहिए।
2: चलो ठीक है, रवि शरण जैन।
1: जी बिल्कुल।
2: तेरी शादी में तू तुझको तोहफा में क्या पेश करता हूँ, दिल एक टूटा हुआ खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी बेवफा ही सही, बेवफा ही सही, दिल डूबा है मेरी खुश गए, या मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल मिले, या मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल मिले, डूबने दे मुझे तुझको साहिल में, मोती आखरी मोती आखरी बस दवा।

नहीं खुश रहे, उम्र भर ये मेरे दिल को तड़पाएगा। ओ उम्र भर ये मेरे दिल को तड़पाएगा, दर्द दिल अब मेरे साथ ही।

0: जी यही ना खुदा है मेरी, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही बेवफा ही सही, दिल रुबा है मेरी खुश रहे खुश रही। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह भाई क्या बात है। सुरेश कुमार जी बहुत अच्छी आवाज है आपको, मुरलीलाल श्रीवास्तव ने लिखा है वेरी वेरी नाइस सिंगर, बहुत प्यार दिया लोगों ने आपको, यही आपका नाम दर्द कुमार नहीं है। और जी हाँ भाई, क्षमा प्रार्थी है भाई मुरलीलाल श्रीवास्तव जी की, आपने फोन किया और हम आपका फोन उसमें व्यस्त था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दर्द कुमार जी। चरण स्पर्श,
0: थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू।
1: तो
0: एक और सुन सकते हैं? हेलो,
1: हाँ अगर एक स्टैंजा सुना सकते हैं सुना दीजिए।
0: अच्छा, मिले न फूल तो कांटो से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न
2: आगे बढ़ाएं या यही रोक के।
1: हाँ,
2: हेलो,
1: चूंकि कतार थोड़ी सी ज्यादा है, फोन ज्यादा लोग के आ रहे हैं।
2: ठीक ठीक, थैंक यू सर।
1: हाँ जी भाई, ये मैं सर दर्द कुमार जी थे और मोहनलाल श्रीवास्तव जी, क्षमा प्रार्थी है आप तुरंत फोन कर लीजिए, अब वो फोन आपका आया उस समय कहीं व्यस्तता रही तो हम नहीं उठा पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। मेरे साथ प्रीति भी जुड़ चुके हैं सर जी, गुड इवनिंग। और सुजीत जी हैं भाई, गुड इवनिंग आरजी जी, ये कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? जी हाँ, ये कार्यक्रम चल रहा है बहारे गज़ल, और इस दिन बुधवार के दिन इसमें कार्यक्रम होता है कालीन का, तो आप गाते हैं और हम सुनते हैं। सुजीत जी, अगर आप भी गाना चाहें तो दूरभाष क्रमांक वही है 6391-3164-29, और देखते हैं कौन हमारे साथ।
3: हेलो
1: हेलो
3: हेलो,
1: जी आपकी आवाज बहुत दूर से कहीं आ रही है।
3: वो एक्चुअली गाड़ी में एफएम चल रहा है ना, तो
1: आप तो मुझे उसको कम कर दीजिए।
3: जी हो गया, फोन हो गया। हेलो
1: हेलो
3: जी, एक गाना सुनना था
1: जी,
3: हो पाएगा नहीं हो पाएगा
1: जी? अभी तो ये कालीन का प्रोग्राम है, इसमें आप लोग गा रहे हैं और हम सुन रहे हैं।
3: अच्छा
1: जी, बुधवार का कालीन का प्रोग्राम होता है, इसमें आप लोग गाते हैं और हम सुनते हैं।
3: अच्छा, हमें तो गा नहीं पाते भाई साहब।
1: गुनगुना तो लेते होंगे, आपने पहली बार फोन किया है तो गुनगुना ही दीजिए।
3: हाँ बिल्कुल, पहली बार फोन किया हूँ, कई बार फोन किया हूँ।
1: जी जी जी,
3: बात पहली बार हो रही है, फोन कई बार किया हूँ, आज ही कई बार किया हूँ।
1: हाँ, ये हमारा सौभाग्य की आपसे बात।

0: इश्क में पड़ेगा, उनसे मिली नजर पड़ेगा। बहुत बहुत
1: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। जी हाँ, तो ये सुरेंद्र पाल वर्मा जी थे भाई, और हम चाहेंगे भाई मोहनलाल श्रीवास्तव जी भाई फोन कर लीजिए आप, क्योंकि फोन आपका आया और हम कहीं इसलिए नहीं अटेंड कर पाए क्योंकि वो लगातार फोन चल रहा था। तो भाई प्लीज अटेंड माय फोन एंड आई एम वेटिंग फॉर योर फोन, और आप बिल्कुल कीजिए। प्रीति शुक्ला जी हैं सर जी, गुड इवनिंग, आपको भी शुभ संध्या। और सुजीत जी आप नंबर नोट कर सकते हैं 63 93 31 64 29, और देखते हैं भाई कौन हमारे साथ फिर जुड़ चुका है। हेलो,
2: हेलो सर जी, गुड इवनिंग।
0: अरे शुभ संध्या,
2: शुभ संध्या सर जी,
0: बहुत दिन के बाद।
2: जी जी,
0: मुद्दतों बाद आपकी आवाज़ से घर में गलत हूँ तो ये आवाज बहराई से।
2: जी जी, मेरी ज्यादा
0: है,
2: आपका क्या करें
0: सर,
2: हम कहे नए नए लोगों को
0: चांस दे दें। नहीं नहीं नहीं नहीं, आप अपना अधिकार रहेगा।
2: तो बारिश में खसावन गीत सुनाएंगे सर।
0: जी जी।
2: नन्ही नन्ही बुंदिया रे, नन्ही नन्ही बुंदिया रे, सावन का मेरा झूलना, सावन का मेरा झूलना, नन्ही नन्ही बुंदिया रे, सावन का मेरा झूलना, एक झूला झूला मैंने बाबुल जी के राज में, एक झूला झूला मैंने बाबुल जी के राज में, हरी हरी हरी बगिया रे, ओ हरी हरी बगिया रे, सावन का मेरा झूलना, नन्ही नन्ही बुंदिया रे, सावन का मेरा झूलना, एक झूला झूला मैंने अम्मा जी के राज में, एक झूला झूला मैंने अम्मा जी के राज में, हरी हरी चुड़िया रे, ओ हरी हरी गुड़िया रे, सावन का मेरा झूलना, नन्ही नन्ही बुंदिया रे, सावन का मेरा झूलना, एक झूला झूला मैंने भैया जी के द्वारे, एक झूला झूला मैंने भैया जी के द्वारे, हरी हरी हरी हरी मेहंदी रे, हरी हरी मेहंदी रे, रचाया मैंने हाथ में, नन्ही नन्ही बुंदिया रे, नन्ही नन्ही बुंदिया रे, सावन का मेरा झूलना, एक झूला झूला मैंने भैया जी के राज में, एक झूला झूला मैंने सैया जी के द्वारे, हाँ सैया जी के द्वारे, हरी हरी हरी हरी चुनरी रे, हरी हरी चुनरी रे, सावन का मेरा झूलना, हरी हरी चुनरी रे, अरे उड़ा मैंने प्यार से, नन्ही नन्ही बुंदिया रे, नन्ही नन्ही बुंदिया रे, सावन का मेरा झूलना, सावन का मेरा झूलना।
0: आपको भी सावन का बहुत बहुत आभार, और सावन का त्योहार आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आए।
2: जी जी
0: जी, अच्छा बहुत बहुत
2: करती
0: हूँ
2: सर, वैसा ही हो।
0: मतलब आप जो है वो हमारे कार्यक्रम में बनी रहा कीजिए 10-5 मिनट के लिए, तो हमें अच्छा
2: लगेगा। जी जी, ऐसा ही होगा आप सब। थैंक यू सर, थैंक यू।
0: प्रणाम,
2: जय
0: भाई। मेरे साथ अजीत जी भी हैं, अजीत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, क्या बात है, बहुत अच्छा है, गाते भी हैं। और आज आपको बताएं अजीत जी कि आज हमारा प्रोग्राम जो है वो कालीन होता है, मतलब आप लोग गाते हैं और हम सुनते हैं भाई। अब हम करबद्ध निवेदन करेंगे श्री मोहनलाल श्रीवास्तव जी से कि फ़ोन मिला लें, नहीं तो फ़ोन हो सकता है फिर व्यस्त हो जाए। और फिलहाल देखिए किसी का फोन आ चुका है, देखते हैं। हेलो,
2: हेलो सर जी, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग
2: सर।
0: अरे अरे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आवाज शायद लखनऊ की है जी। अच्छा, सुजीत प्रणाम।
2: प्रणाम सर जी, प्रणाम।
0: कैसी हैं आप?

0: सकते सर।
1: बहुत दिन के बाद आपसे बात हो रही है
0: जी।
1: जी तो इस मौके पर कुछ खास होगा आपके लिए।
0: भोले बाबा को अपना सुनाऊंगी
1: जी।
0: शुरू करें सर?
1: जी जी।
0: भोले बाबा हजारों तेरे नाम है, भोले बाबा हजारों तेरे नाम है, एक नाम लिखा मैंने गणपति जी का, एक नाम लिखा मैंने गणपति जी का है, भोले बाबा वेदों में तेरा नाम है, भोले बाबा हजारों तेरे नाम है, एक नाम लिया मैंने ब्रह्मा दिया है, एक नाम लिया मैंने दिया है, भोले बाबा सृष्टि में तेरा नाम है, भोले बाबा सृष्टि में तेरा नाम है, भोले बाबा हजारों तेरे नाम है, एक नाम मैंने विष्णु दिया है, एक नाम लिया मैंने विष्णु दिया है, भोले बाबा शंकु में तेरा नाम है, भोले बाबा हजारों तेरे नाम है, एक नाम लिया मैंने शंकर दिया है, एक नाम लिया मैंने शंकर दिया है, एक बाबा तेरा नाम है, एक बाबा हजारों तेरे नाम है, एक नाम लिखा मैंने रामा दिया है, भोले बाबा में तेरा नाम है, भोले बाबा हजारों तेरे नाम है, एक नाम लिखा मैंने काला दिया है, एक नाम लिखा काला दिया है, भोले बाबा बंसी में तेरा नाम है, भोले बाबा हजारों तेरे नाम है, एक नाम लिखा मैंने दुनिया में है, एक नाम लिखा मैंने दुनिया में है, भोले बाबा भक्तों में तेरा नाम है, भोले बाबा हजारों तेरे नाम है।
1: बहुत धन्यवाद आपको। जी हाँ, आप चलते हैं भाई, आवाज सुनते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो
2: हेलो हेलो हेलो
1: जी, प्रणाम।
2: प्रणाम सर, प्रणाम सर, हम मोहन लाल श्रीवास्तव बोल रहे हैं।
1: पहले तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि मतलब आपको ज्यादा फोन करना पड़ा और हम नहीं नहीं वो मतलब हम देख रहे थे कि लगातार सौरभ श्रीवास्तव जी के नाम से फोन आ रहा था एक नंबर से, लेकिन अब चूंकि कोई ना कोई था फोन पे तो हम आपको थोड़ी सी तकलीफ थी, उसके लिए हम सबसे पहले क्षमा चाहते हैं आपसे। हाँ भाई, आपने लिख कर भेजा कि मेरा फोन अटेंड किया तो उसको लगा कि आपने कई बार मिलाया तो कभी हाँ कभी कभी होता है कि नहीं नहीं मतलब वो फोन पर फोन आता रहा और हम भाई कोई भी जब सोते सोता कोई भी लगातार फोन करते हैं व्यस्त होता है तो हमको भी कहीं ना कहीं थोड़ा दुख होता है कि आपने कई बार फोन किया, लेकिन कोई ना कोई फोन पर है तो इसलिए हम क्षमा प्रार्थना।
2: जी जी जी तो अभी टाइम है क्या सुना दें या तो?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
2: सुनाओ
1: जी।
2: रिमझिम गिर सावन सुलग जाए मन, जिस मौसम लगन गिर सावन सुलग सुलग जाए मन, जिस मौसम में

नयन सुलग सुलग जाई मन भीग आज इस मौसम में लगी कैसी सावन। ये तो किशोर कुमार जी का वो था, अब ये आगे था लता मंगेशकर जी के, उसमें है रिम झिम गिर सावन सुलग सुलग जाई मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन।

0: सुलग सुलग जाई मन, बिगड़ा जिस मौसम में लगी कैसे ये रिम झिम गिर सावन। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, और क्या एकदम उतार दिया आपने, वाह एकदम गजब। और मुझको याद आ रहा है कि ये फिल्म शायद अमिताभ बच्चन के साथ मौसमी चटर्जी है,
0: अमिताभ बच्चन मौसमी चटर्जी है और गाना गाया है इन्होंने किशोर कुमार और लता मंगेशकर। किशोर कुमार
1: की मूवी मेरी देखी,
0: लता मंगेशकर जी का,
1: मतलब आपने बहुत प्यारा निभाया है इसको भाई। और सुजीत जी है, कोई कहते हैं वाह चाचा आप तो ऑलराउंडर है, क्या बात है सर।
0: हमने तो आपको भेजा भी था कई गाने आपके व्हाट्सएप पर भी भेजा था जो ये
1: जी भी कहते हैं भाई बहुत शानदार आपने गाया। सुजीत जी कोई है भाई आपके शायद भतीजे हैं, उन्होंने कहा यू आर नंबर वन अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद और चरण स्पर्श आपको।
0: थैंक यू, बहुत बहुत आशीर्वाद।
1: स्वास्थ्य ठीक है?
0: हाँ मैं ठीक हूँ।
1: आइए गोंडा तो कभी आपसे मुलाकात करते हैं।
0: ओके ओके सर, थैंक यू। गोंडा आएंगे तो रक्षाबंधन में आऊंगा।
1: जी जी जी जी, आइएगा तो स्टूडियो पर आइएगा।
0: ओके ओके ओके, बहुत बहुत आशीर्वाद।
1: हेलो हेलो हेलो हेलो, ये नंबर आया फिर अचानक कट गया भाई। और जिन्होंने किया था उनसे कल्पबद्ध निवेदन है कि एक बार पुनः फोन मिला लें। और भाई श्री तेजनाथ शुक्ला जी से उनका हाल चाल भी जानना है हमको कि अब कैसे हैं वो, और उम्मीद है कि उन्हीं का फोन होगा। हेलो,
2: शुभ संध्या मनु जी।
1: अरे चरण स्पर्श, कैसे हैं आप?
2: बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बढ़िया हूँ, पहले से काफी बेटर हूँ।
1: कैसा और महसूस कर रहे हैं इस समय?
2: नहीं, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और अफसोस इस बात का है कि जब जब मैंने ज्वाइन किया, मतलब अनिल तो बहुत बढ़िया गाते हैं अनिल भी, लेकिन आर के श्रीवास्तव जी का गाना मैं नहीं सुन पाया। और किशोर कुमार बहुत मेरे फेवरेट सिंगर हैं जो, और गाना भी मेरा बहुत फेवरेट है। मैंने अब तो समय है नहीं मनु जी,
1: समय हमने आपके लिए बढ़ा दिया है, आप क्वेश्चन करिए।
2: तो बस अब हमारे पास तो श्रृंखला होती कब तक, लेकिन एक बस सुनाऊंगा। हाँ। एक बार आपने मुझसे कुछ कहा था
1: जी जी,
2: और आपने कहा था कि इस पे कुछ लिखिए
1: जी,
2: और आप शायद आपकी मेमोरी में
1: जी
2: है ना
1: जी,
2: तो वही थोड़ी एक कोशिश की है मैंने
1: जी,
2: और उसी को सुना देता हूँ।
1: क्या बात है, आपने हमारी लाज रखी।
2: अरे लाज नहीं, अरे आप इतना, मतलब आपकी शुभकामनाओं में इतना दम होता है और इनकरेजमेंट बहुत बढ़िया होता है।
1: नहीं,
2: इस वजह से
1: मैं,
2: और मैं इसीलिए आपके प्रोग्राम में एकदम, समझ लीजिए जब भी जरा सा भी मुझे वो रहता है तो मैं एकदम बिल्कुल जो जाता हूँ। तो अब समय ज्यादा नहीं लूंगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा बहुत जल्दी जल्दी में लिखी गई है
1: जी।
2: तो स्टार्ट करता हूँ कि सोचता हूँ कि घर में जो तुमसे मिलूं, सोचता हूँ कि घर में जो तुमसे मिलूं, मेरे लब ना हिले समझ लो तुम मुझे।
1: क्या क्या बात है
2: जी, मेरे लब ना हिले समझ लो तुम मुझे, धड़कनों को भी अपने मैंने समझा दिया, जिक्र आए तुम्हारा तो वो ना हिले। धन्यवाद। कोई सुन ना ले उन्हें, और समझ कोई ना कोई सुन ना ले उन्हें और समझ ले मुझे। आगे का एक मकता देखिएगा कि देखता हूँ तुम्हें सहम जाता हूँ मैं, देखता हूँ तुम्हें सहम जाता हूँ मैं, पहले घबरा के फिर मुस्कुराता हूँ।
1: क्या क्या क्या बात है, क्या फीलिंग्स है, क्या एहसास है।
2: जी धन्यवाद। सोचता हूँ कि आज कुछ बोलूंगा मैं, सोचता हूँ कि आज कुछ बोलूंगा मैं, दिल के दरवाजों को अपने खोलूंगा मैं, फिर न जाने कोई रोकता है मुझे, फिर न जाने कोई रोकता है मुझे, मेरे अंदर से कोई टोकता है मुझे, दिल को समझा के मैं फिर चला आता हूँ, घर के आईने में तुमको खड़ा पाता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। खत भी लिखने की कोशिश बहुत कर चुका, खत भी लिखिए, आपने मतलब ये पंक्ति आपने बोली थी
1: जी,
2: खत भी लिखने की कोशिश बहुत कर चुका कि लिख करके उन्हें फाड़ देता हूँ मैं, इसी कोशिश में जी जी जी कि इसी कोशिश में फिर खुद को मार देता हूँ मैं, सोचता हूँ ये कहानी यूं ही चलती रहे, इसके की दास्तां दिल में पलती रहे, अब लास्ट में इसका वो है कि क्योंकि संबंधों की भाषा भी है, रिश्तों की परिभाषा भी है, जीना चाहो बिन इनके तो जीवन एक तमाशा भी है।
1: क्या बात कह दी आपने जल्दी
2: में लिखी गई है,
1: लेकिन बहुत ही हृदय स्पर्शी और बहुत ही मन स्पर्शी दोनों, एकदम बिहारी वाला काम किया आपने, एकदम गागर में सागर भर दिया।
2: अरे इतना इतना मतलब हमको बड़ा
1: मतलब आपने एक जो अंतिम कहा जाता है कि जो एंडिंग होती है
2: जी जी,
1: मतलब अगर रिश्तों के बिना आप हैं तो जिंदगी तमाशा ही है। वास्तव में कितनी खूबसूरती के साथ आपने रिश्तों को परिभाषित किया, तो
2: कोशिश रहती है मनोज जी की हर उसके। अब देखिए मैं यहाँ पे लयबद्ध नहीं सुनाता हूँ
1: जी,
2: थोड़ा छंद सहित, और वो तो अब आगे से तो उस वो भी सुनाऊंगा, लेकिन यह है कि कोशिश ये रहती है कि जो भी लिखूं लास्ट में अगर बन सके तो कोई मैसेज जरूर कर देगा।
1: जी भाई भाई भाई, और जितने भी महान कवि हो तुलसीदास जी लिखते हैं कि कभी तो विवेक एक नहीं मोड़े, सत्य कहूं लिख कागज को ले। तो जो बड़े लोग होते हैं वो आपके ही जैसे होते हैं, वो कहते हैं हम बहुत अच्छा नहीं लिख पाते हैं, उसको बस ज्ञान नहीं है, जबकि ज्ञान का भंडार होता है।
2: अरे तब आप लोगों की शुभकामना है, आप लोगों का एनकरेजमेंट है,
1: बस यही है कि आपकी पगधूल कुछ हमारे ऊपर भी पड़े और हम लोग भी कुछ सीख पाए आपसे।
2: अरे आप लिखते हैं, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं, आपने अभी बीच में सुनाया भी था, और मैं तो कहूंगा कि आप लिखते रहिए और बहुत अच्छा लिखते हैं। अब आपके पास ज्ञान बहुत है, इतना सारा आपके और प्रोग्राम्स में बहुत सारा रहता है, और बहुत आप बहुत बढ़िया लिखते हैं और आगे बहुत अच्छा लिख सकते हैं मनोज जी, मतलब मैं तो ये मेरी शुभकामना भी है और बधाई भी है। जी शुभ संध्या।
1: अच्छा ठीक स्पर्श,
2: अरे आशीर्वाद आशीर्वाद, खुश रहिए।
1: जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है, तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर 9:30 पर हमारी और आपकी मुलाकात एक बार फिर से होगी आप ही के कार्यक्रम बहारे गज़ल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: हो कुछ कड़वे से लहजे में अंजलि ने पूछा, तो उसके साथ तेज चलती हुई आरती ने कहा, अपने पति को प्यार करने के लिए लो तुम्हारी बस आ गई। आरती उसे बाय कहकर सैर पर निकल गई। बस में बैठकर अंजलि ने बाहर झांका। आरती तेज तेज कदमों से सैर कर रही थी। रोज की तरह पौन घंटे की सैर करके जब तक आरती आई, पीहू और यश कॉलेज जाने के लिए तैयार थे। बच्चों के साथ ही उसने नाश्ता किया, फिर दोनों को भेजकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। उसके बाद मेड के आने पर रोज के काम शुरू हो गए। आरती एक पढ़ी लिखी हाउसवाइफ थी। नौकरी ना करने का फैसला उसका खुद का था। वो घर परिवार की जिम्मेदारियां बहुत संतोष और खुशी से निभाकर अपनी लाइफ में बहुत खुश थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दिल की बातें। अब तक आपने सुना आरती हाउसवाइफ थी। वो अपने पति अजय से बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। उसे घर के कामों को करना, घर को सजाना बहुत अच्छा लगता था और अपने हाउसवाइफ होने से उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। हाँ, वो अपने आसपास की सभी कामकाजी महिलाओं की बहुत इज्जत करती थी और उसे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी कि उन्हें उसके हाउसवाइफ होने से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। अब आगे वो आराम से रहती, खूब हसमुख स्वभाव की थी, ना किसी से शिकायतें करने की आदत थी, ना किसी से फालतू उम्मीदें। वो वर्किंग लेडीज का सम्मान करती थी, समझती थी कि इस महानगर की भागदौड़ में घर से निकलना आसान नहीं होता, पर उसे ये बात हमेशा अजीब लगती थी कि वर्किंग लेडीज का वो सम्मान करती है तो आसपास की वर्किंग लेडीज अंजलि, मीनू और रीता उसके हाउसवाइफ होने का मजाक क्यों बनाती हैं, उसे नीचे क्यों दिखाती हैं। उसे याद है जब वो शुरू शुरू में इस सोसाइटी में रहने आई तो अंजलि ने पूछा था, आप कुछ काम नहीं करती, बस घर में ही रहती हैं। उसके पूछने के इस ढंग पर आरती को हंसी आ गई थी। उसने अपने स्वभाव के अनुसार हंसकर जवाब दिया था, भाई घर में भी तो इतने सारे काम होते हैं, उन्हें करती हूँ, अपना हाउसवाइफ होना एंजॉय करती हूँ। तुम्हारे पति तुम्हें नहीं कहते कि कुछ काम करो बाहर जाकर? नहीं, वो इस पे खुश रहते हैं कि जब वो ऑफिस से लौटे तो मैं उन्हें खूब सारा टाइम दूं। उन्हें भी घर लौटने पर मेरे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। कमाल है, इस पर आरती हंसती थी, पर उसे ये समझ आ गया था कि इन लोगों को आसपास की हाउसवाइफ्स की लाइफ बिल्कुल खराब लगती है। यहाँ तो मेड भी आकर उत्साह से पहला यही सवाल पूछती है, मैडम काम पर कितने बजे जाती हो? उसके आसपास वर्किंग लेडीज ही ज्यादा थीं, जो पूरा दिन घर में रहने वाली महिलाओं को किसी काम का नहीं समझती थीं। अजय और आरती ने लव मैरिज की थी। आज इतने सालों बाद भी दोनों समय मिलते ही एक दूसरे के साथ होना एंजॉय करते थे। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत प्यारा लगता था। कभी रूठना होता तो कभी मान मनोवल के बाद और करीब आ जाते। आरती के कोई जॉब ना करने का फैसला अजय को ठीक लगा था, इसमें उसे भी कोई परेशानी नहीं थी। अंजलि, मीनू और रीता के पति भी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और सब एक ही ऑफिस में काम करते थे। किसी पार्टी में किसी दोस्त के ये पूछने पर कि भाभी जी क्या करती हैं, आरती को निहारता हुआ अजय हंस देता था, उसका काम है मुझे प्यार करना और वो बखूबी इस काम को अंजाम देती है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दिल की बातें। अब तक आपने सुना आरती हाउसवाइफ थी और अजय को उसके काम ना करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आरती घर संभाल कर खुश थी और अजय उसके घर संभालने से। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना आज भी उतना ही अच्छा लगता था जितना कि शादी के पहले। उनके आसपास के लोग अक्सर इस पर सवाल उठाते, लेकिन वो दोनों बड़े हंस के और प्यार से जवाब देते। अब आगे आसपास खड़ी होकर ये बात सुन रही अंजलि, मीनू, रीता इस बात पर एक दूसरे को देखती और इशारे करती कि ये देखो, ये भी अजीब ही है। ऐसी ही एक पार्टी में मीनू के पति ने बात छेड़ दी, आरती जी आप बोर नहीं होती घर में रहकर? मीनू तो घर में रहने पर बहुत जल्दी बोर हो जाती है, ये तो बहुत एंजॉय करती है अपने पैरों पर खड़े होना। हर काम अपनी मर्जी से करने में एक अलग ही खुशी होती है। आप तो काफी एजुकेटेड हैं, आप कोई जॉब क्यों नहीं करती? आरती ने खुश दिली से कहा, मुझे तो शांति से घर में रहना पसंद है। मैंने तो शादी से पहले ही अजय से कह दिया था कि मैं कोई जॉब नहीं करूंगी, मैं बस घर में रहकर अपनी जिम्मेदारियां उठाऊंगी। फिर आरती ने और मस्ती से कहा, मैं क्यों करूं कोई काम? मेरा पति है ना काम करने के लिए, वो कमाता है और मैं मजे से खर्च करती हूँ। और मजे की बातें आज ही बता देती हूँ, मैं अपने मन में अजय को आज भी पति नहीं अपना शादी के पहले वाला दोस्त ही समझती हूँ। जो मेरे आसपास रहे तो मुझे अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई जॉब करूं और वो मुझसे पहले घर आकर मेरा इंतजार करे। किसी मेड के हाथ का खाना खाकर मैं मेरे पति और बच्चों की हेल्थ नहीं खराब करना चाहती। मुझे तो अजय के हर काम अपने हाथों से करने में अच्छे लगते हैं। आप लोगों को पता है कि मैं लाइफ की किन चीजों को आज भी इंजॉय करती हूँ? अजय जब नहाकर निकले तो मैं उनका टॉवल उनके हाथ से लेकर तार पर टांग दूं, उनका टिफिन कोई बोझ समझकर नहीं मोहब्बत से पैक करूं। और बदले में पता है मुझे क्या मिलता है? आरती बताते हुए थोड़ा शर्मा गई, अपने लिए ढेर सारी फिक्र और प्यार। असल में आप लोग घर पर रहना जितनी बुरी चीज समझने लगे हैं ना, उतना बुरा नहीं है ये। मैं हैरान हूँ कि जब मैं वर्किंग लेडीज की रिस्पेक्ट कर सकती हूँ तो आप लोग एक हाउसवाइफ के कामों को वैल्यू क्यों नहीं देते? अजीब सी बात लगती है मुझे। कल हमारी पीहू भी अपने पैरों पर खड़ी होगी, जॉब करेगी, ये उसकी चॉइस होगी कि उसे क्या पसंद है। हाँ, अगर वो हाउसवाइफ बनना चाहे तो उसमें भी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, पर इतना जरूर है कि अगर वो वर्किंग होगी तो किसी हाउसवाइफ का मजाक कभी नहीं उड़ाएगी, इतना मैं जानती हूँ। सब चुप हो गए।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दिल की बातें। अब तक आपने सुना आरती हाउसवाइफ थी और ये उसकी खुद की चॉइस थी। इस चीज से उसके पति अजय को भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुंबई जैसे शहर में लोगों को ये बात बहुत अजीब लगती। वहाँ पे सारी ही लेडीज ज्यादातर इंडिपेंडेंट और वर्किंग थीं। हमेशा वो लोग आरती को टोकती कि क्या तुम्हें ये जिंदगी खराब नहीं लगती। अजय और आरती दोनों ही बड़े प्यार से सबकी बातों का हंसकर जवाब दे देते कि नहीं, उन्हें तो ये जिंदगी बहुत पसंद आती है। और एक दिन उन्होंने सबको ये भी कह दिया कि उनकी बेटी भी अपनी जिंदगी जिस रूप में जीना चाहे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते वो अगर वर्किंग होगी तो वो किसी हाउसवाइफ की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी। अब आगे आरती के सभ्य शब्दों में कही बात का असर जरूर हुआ था। सब इधर उधर हुए तो रीता ने कहा, आरती मुझे तुमको थैंक्स भी बोलना था। उस दिन जब घर पर रिमी अकेली थी, हम दोनों को ऑफिस से आने में देर हो गई थी, तो तुमने उसको बुलाकर पीहू के साथ डिनर करवाया, हमें बहुत अच्छा लगा। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे तो बच्चे हैं। पीहू ने बताया कि रिमी अब तक अकेली है तो मैंने उसे अपने पास बुला लिया, आरती बोली। मीनू आरती के ऊपर वाले फ्लैट पे रहती थी। उसने पूछ लिया, आरती तुमने जो अजय को ऑफिस में कल करेले की सब्जी दी थी उसकी रेसिपी देना, अमित ने भी टेस्ट की थी, बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया बनी थी, ऐसी सब्जी उन्होंने कभी नहीं खाई थी। और पता है अमित बता रहे थे कि अजय तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। आरती हंस पड़ी, अजय का बस चले तो वो रोज करेले बनवाए, रेसिपी भी बता दूंगी और जब कभी बनाऊंगी भेज भी दूंगी। थोड़े दिन आराम से बीते, काफी दिन से कोई आपस में नहीं मिला था। तभी कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हो गया था, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। अब अंजलि, मीनू, रीता की हालत खराब हो गई थी। ना घर में रहने का शौक, ना आदत, सब घर में बंद। लॉकडाउन ने सबकी लाइफ ही बदल कर रख दी थी। ना कोई मेड आ रही थी, ना कोई घर के काम संभाल पा रहा था। अब सब आपस में बस कभी कभी फोन ही कर लेते थे। एक आरती थी जिसने कोई भी शिकायत किसी से नहीं की, जितना काम होता उस पे किसी की थोड़ी हेल्प ले लेती। अजय तो अब और हैरान था कि जहां उसका हर दोस्त फोन करते ही शुरू हो जाता था कि यार कहां फंस गए, ऑफिस के काम करो, फिर घर के, लड़ाई भी होने लगी है ज्यादा, वही वो आरती को धैर्य से सब काम संभालता देखता। वो भी थोड़े बहुत काम सबसे करवा लेती थी, पर ऐसे नहीं कि घर में जैसे कोई तूफान आया है। आराम से जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ते वो खुद ऑफिस के कामों में बिजी होता, आरती सब शांति से करती रहती। इस दौरान तो उसने आरती के और भी गुण देख लिए थे, वो उस पर और भी फिदा हो गया था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दिल की बातें। अब तक आपने सुना, आरती जब नई नई मुंबई रहने आई तो उसके आस पड़ोस की वर्किंग लेडीज को ये बात बहुत अजीब लगती कि उसने हाउसवाइफ बने रहना चुना और वो अपनी जिंदगी में खुश है। लेकिन आरती और अजय को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक दूसरे के साथ अपनी प्यार की दुनिया में मस्त थे। फिर धीरे धीरे सबको उसके गुणों का पता चलने लगा। वो कितना अच्छा खाना बनाती थी, आस पड़ोस की भी कितनी खबर रखती थी और जितना हो सके सबकी मदद करती थी। और फिर आया कोरोना, सब अपने घर में पैक हो गए, सबको घर के कामों में दिक्कतें होने लगीं, कोई हेल्प नहीं, कोई मेट नहीं, ऑफिस का काम, घर का काम, सब परेशान थे। लेकिन आरती के घर में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। थोड़ी बहुत हेल्प वो सबकी लेती थी, लेकिन किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं होता था और सारे काम बखूबी निपट जाते थे। जहां एक तरफ सब परेशान थे, वो परिवार शायद उस वक्त को भी एक साथ एंजॉय कर रहा था। अब आगे, अमित परेशान था। घर से काम करने पर तो ऑफिस के काम ज्यादा लगने लगे थे, ऊपर से उसे अपने बड़े बालों पर बहुत गुस्सा आता रहता, सारे सैलून बंद थे। कहने लगा, एक तो इतनी जरूरी वीडियो कॉल है आज, ऑफिस के कितने लोग होंगे और मेरे बाल देखो, शक्ल ही बदल गई है घर में रहते रहते, क्या हाल हो गया है बालों का। उसका चिड़चिड़ देख मीनू बोली, इतना चिड़चिड़ क्यों कर रहे हो, सबका यही हाल होगा, बाकियों ने कहां कटवा रखे होंगे बाल, सभी परेशानी में है आजकल। अमित को बहुत देर झुंझलाहट होती रही। उस दिन की मीटिंग शुरू हुई तो सभी के बाल बड़े हुए थे। पहले तो सब क्लीग्स इस बात पर हंसे, फिर अचानक अजय के बहुत ही फाइन हेयर कट पर सबकी नजर गई तो सब बुरी तरह चौंक गए। एक क्लीग ने कहा कि तुम्हारा हेयर कट कहाँ हो गया, इतना बढ़िया, कहाँ हम सब जंगली लग रहे हैं, और तुम तो जैसे अभी अभी किसी सैलून से निकले हो। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, आरती ने किया है, और मेरा ही नहीं बच्चों का भी, वो भी इतने खुश हैं। सभी उसके खास दोस्त आरती की तारीफ करने लगे। अमित अपने लुक पर बहुत ध्यान देता था। वो जब काम से फ्री हुआ तो उसने एक ठंडी सांस ली, शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगा। मीनू भी लैपटॉप पर वहीं कुछ काम कर रही थी। पूछा, क्या निहार रहे हो? अपने बाल। क्या, और कोई काम नहीं है तुम्हें? हो गई ना मीटिंग, सबके ऐसे ही बड़े हुए थे ना। अजय का हेयर कट बहुत जबरदस्त था, वो बोला। क्या? मीनू चौकी। हाँ, आरती ने अजय और बच्चों का बहुत शानदार हेयर कट कर दिया था। चेहरा चमक रहा था अजय का, ये औरत है क्या है? मीनू ने ठंडी सांस लेकर कहा, ये पिया बावरी है। ये सुनकर अमित को हंसी आ गई। डियर, तुम भी बन जाओ कभी पिया बावरी। मीनू ने हाथ जोड़ दिए और मुस्कुराते हुए कहा, आसान नहीं है।

इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: कुछ चीजें भारत की हो या फिर बाहर की, यानी कि एशियाई हो, अमेरिका में हो या फिर लंदन में हो, लेकिन अगर मेड इन इंडिया की बात हो तो वो अपने आप में एक अपनी पहचान बनाते हैं। मेड इन इंडिया का मतलब है कि हमारे भारत में ही जन्मी और पढ़ी हुई और उसके बाद में वहीं पर रमी हुई। आपने शायद सुना होगा मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब होता है कि भारत की ही बहुत सारी ऐसी पहचान को अपने मुकाम पर पहुंचाना। मेड इन इंडिया यानी कि मुझे तो कुछ याद आ रहा है भाई मेड इन इंडिया से। शायद आपने ये वर्ड अपने आप ने कई बार सुना होगा, कई बार गानों के रूप में सुना होगा, कई बार आप लोगों ने ऐसे गुनगुनाता हुआ सुना होगा। Yes, of course. मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है मेड इन इंडिया हमारी अलीशा चेन्नई का, क्योंकि अलीशा चेन्नई का ये गाना मेड इन इंडिया आज भी हम सभी के जहन में इस तरीके से है जैसे मानो कोई खूबसूरत याद, हम कभी भी उसे निकालना नहीं चाहते हैं। रात के सफर में आज हम लेकर के आए हैं अलीशा चेन्नई। जी हाँ, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश और आज लेकर के आई हूँ रात के सफर में अलीशा चेन्नई के बारे में। आपने खूबसूरत सा नाम कई बार सुना होगा, कई गाने भी सुने होंगे उनके, लेकिन आज मेड इन चाइना मेड इन इंडिया कैसे बनी हम आपको बताने वाले हैं। अलीशा चेन्नई का जन्म 18 मार्च 1965 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वे एक इंडियन पॉप एंड इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्हें 90 के दशक में क्वीन ऑफ इंडी टॉप के नाम से जाना गया। इंडी टॉप इसलिए बोला क्योंकि उस समय इंडिया में नंबर वन टॉप कर रही थी हमारी अलीशा चेन्नई। धीरे धीरे उन्हें बहुत सारे नाम मिलते गए। धीरे धीरे कहें कि उन्होंने अपना पैर इस तरीके से जमा लिया सिर्फ पॉप म्यूजिक में कि उनके जैसा कोई फिर और दिखाई नहीं। इसीलिए समय बढ़ता गया, उनका करियर आगे बढ़ता गया। एल्बम पे एल्बम जब रिलीज होने लगे तो बहुत सारे गानों की भरमार कोशिशों और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के बाद में उन्हें एक एल्बम से नवाजा गया जिसका नाम था जादू। जादू से वाकई उनके जीवन में एक जादू सा आ गया और उन्हें एक प्यारा सा नाम फिर से दिया गया जो कि था इंडी पॉप, यानी हमारे इंडिया, हमारे भारत में ऐसा इंडियन पॉप गाने वाली फीमेल प्लेबैक सिंगर कोई और हो ही नहीं सकती थी, जिसका नाम आज हम बड़े सम्मान से लेते हैं अलीशा चेन्नई। तो आइए सुनते हैं उसके एक बहुत ही खूबसूरत से पॉप म्यूजिक में जाकर के इस गाने को। मैं आज पॉप म्यूजिक को इसलिए आपके सामने लेकर के आई हूँ क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गाने हैं हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि कुछ ऐसे गानों को सुने जिसको सुनने पर हम सिर्फ सुने नहीं हमारे पैर भी थिरके। तो आज हम सुनेंगे भी और अपने पैरों को भी थिरकाएंगे अलीशा चेन्नई के साथ। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से एक गाने को।

अलीशा चनाए उनका सबसे चर्चित जो एल्बम था वो था मेड इन इंडिया। 1995 था जिसमें इंडी टॉप के क्षेत्र में ये जो एल्बम थी मेड इन इंडिया वो क्रांति ही ला दी थी। उन्होंने 2005 में फिल्म बंटी और बबली के गीत कजरारे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। अब आप कहेंगे ये गाना कुछ सुना सुनाया सा लगता है। बिल्कुल, कजरारे को गाया था अलीशा चनाए ने, जो आज भी हर शादी में हर एक फंक्शन में जरूर से गाया जाता है। कजरारे गाना वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन उसको पॉप म्यूजिक में कन्वर्ट करने की जो कला थी वो सिर्फ और सिर्फ अलीशा चनाए की ही खूबसूरत सी आवाज में थी। तो उन्होंने इस प्यारे से गाने को जब गाया तो अलीशा चनाए भी अपने आप में एक अद्भुत सी, जिसे कहते हैं ना कि वो कोशिशों के बाद में जब निखर के कोई चीज आती है, तो उन्हें लगा अरे ये गाना मैं ही गा सकती हूँ। बिल्कुल, संगीत शैली और प्रभाव के लिए ये मुख्य रूप से हिंदी पॉप और बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली का मिश्रण भी कहा जाता है। हिंदी पॉप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कजरारे सिंपल सी लैंग्वेज में गाना था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली को अपनाया और इस प्यारे से मिश्रण को तैयार किया। 1990 के दशक में पॉप म्यूजिक में उन्होंने जो ब्रेक दिया वह भारतीय संगीत उद्योग में एक मायने में एक नया चैप्टर था, जो कि आज तक अगर अलीशा चनाए को किसी भी म्यूजिक कॉन्टेक्स्ट में बुलाया जाता है या फिर लाइव में बुलाया जाता है तो भी वो सबसे पहला गाना मेड इन इंडिया यानी कि मेड इन इंडिया वाला ही गाना सभी को सुनाती है। वे बॉलीवुड में तो करती लेकिन बड़ी फिल्मों के लिए भी उन्होंने अपने गीतों में आवाज दी। बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, जैसे बंटी और बबली के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि कजरारे गाना सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन अलीशा ने अपनी आवाज को एक अलग तरीके से उसमें पॉप म्यूजिक को मिक्सचर कर दे करके इसकी आवाज को नए गीतों में तराशा। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने को जो कि अलीशा का एक दूसरी एल्बम से है।

अलीशा ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। उनका पहला एल्बम जादू जो कि 1985 में था। 90 के दशक में उनका एल्बम मेड इन इंडिया जो कि सुपर हिट नहीं सुपर से सुपर हिट रहा, देश भर में प्रसिद्ध कर दिया गया। इस एल्बम का टाइटल जो रहा वो मेड इन इंडिया भारत में पॉप संगीत को प्रतीक बन गया। प्रतीक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके पहले मेड इन इंडिया कभी नहीं कहीं कोई टैग नहीं था, लेकिन उनकी इस एल्बम के बाद में हर जगह पर मेड इन इंडिया का टैग भी बनने लगा। अलीशा ने कई सुपरहिट गाने दिए जैसे कजरारे, तिनका तिनका, ओ बेबी और बहुत सारे गाने जो कि मूवीज में अगर हम देखें उनका सफर जब शुरू हुआ तो बंटी एंड बबली, करम, दिल है कि मानता नहीं, खुददार और विजय पथ, तो जैसे गाने रुक रुक जो तब्बू की आवाज में अगर कोई गाना गा सकता था तो वो सिर्फ अलीशा चन्ना ही थी। रोचक तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने शुरुआती दिनों में संगीतकार भप्पी लहरी के साथ कई गाने रिकॉर्ड किए। कई गानों के साथ में उनका जो सफर था वो बहुत ही खूबसूरत सा था। पॉप संगीत को भारत में लोकप्रिय बनाने में उनका एक बड़ा योगदान माना जाता है। मेड इन इंडिया गाने में मॉडल मिलिंग सोनल नजर आए थे। अलीशा आज भी सोशल मीडिया पर हमेशा से एक्टिव दिखती हैं। कहीं भी अगर लाइव कॉन्टेक्ट होता है या फिर लाइव प्रोग्राम्स के लिए वो बेहद प्रचलित संगीतकारों में सिंगर्स में जानी जाती हैं। सभी के दिल को मोह लेने वाली अलीशा बहुत ही प्यारी सी आवाज में उनके गाने को हम आज भी बेहतर रूप से सुनते हैं। तिनका तिनका जो कि करम मूवी 2005 में सुपर हिट से भी सुपर हिट हुई थी, अलीशा की सुरीली आवाज और सॉफ्ट टोन वाला ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

अलीशा चेन्नई का वैसे तो नाम अलीशा चेन्नई ही है, लेकिन उनका पूरा और असली नाम सुजाता चेन्नई था। सुजाता चेन्नई वो उनका व्यक्तिगत नाम यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, पर उन्हें स्टेज नाम दिया गया अलीशा चेन्नई। कई शोज के बाद में उनकी पर्सनालिटी को जो सूट करने लगा वो अलीशा, और उनके चाहने वालों ने, उनकी फैन फॉलोइंग ने उन्हें ये नाम दिया जो कि आज हम सभी इसी के नाम से उन्हें जानते हैं, जो कि है अलीशा चेन्नई। उनका जन्म 18 मार्च 1965 में अहमदाबाद गुजरात में तो हुआ ही, साथ ही साथ राष्ट्रीयता उनकी भारतीय ही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की थी। उनके पिता का नाम मदन चेन्नई था जो क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं ना कि जैसे बड़े होते हैं वैसे ही बच्चों में एक न एक खूबी आ ही जाती है। पिता जो क्लासिकल म्यूजिक से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर से ही शुरू हुई। उनकी शिक्षा अगर देखी जाए जो कि संगीत से जुड़ी हुई थी, वो उनके पिताजी के द्वारा ही यानी कि मदन चेन्नई से मिली। मदन चेन्नई ने भी कई बार उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बाहर शोज करने के साथ साथ वो उनके साथ हमेशा से साथ में रहते थे। बेटी को आगे पढ़ाने की ललक, उन्हें आसमान तक पहुंचाने की जो एक उम्मीद और कहते ना कि जो एक उत्साह होता है, वो उनमें भरपूर था। बस तब क्या था, एक पिता का साया और एक पिता का साथ दोनों मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। इसी तरीके से अलीशा चेन्नई का सफर संगीत में शुरू हुआ। अलीशा ने 1980 के दशक की शुरुआत में बहुत सारे ऐसे गाना गा करके शुरू की गई थी। उनके करियर की शुरुआत संगीतकार पप्पी लहरी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहला मौका, जो कि उन्हें जादू की एल्बम से मिला था, उसके बाद में एक से एक उनकी एल्बम को रिलीज करते हुए देखा गया। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि विजयपत की मूवी से है, 1994 में आई हुई विजयपत मूवी का रुक रुक रुक अरे बाबा रुक, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर बात करें तो 2005 में कजरारे गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका को के रूप में उन्हें दिया गया, जिन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप की उपाधि भी दी गई, क्योंकि उन्होंने भारतीय पॉप को मुख्य धारा में लाने की बड़ी भूमिका निभाई थी। और साथ ही साथ में कजरारे जो कि सिंपल से गाने को भी उन्होंने अपनी शैली में गा करके आज भी सभी को मुग्ध करने वाली ये गाना हम सभी के जहन में है, इसीलिए उन्हें सम्मान और पुरस्कार की हकदार तो वो बनती ही हैं। अलीशा का संगीत भारतीय और पारसी पॉप धुनों का एक मिक्सचर भी है। उनके गीतों में मॉडर्न बीट्स, डिस्को रिदम और कैची मेलोडी होती है, जो हम सभी को एक तरह से मनमुग्ध कर देती है। उनकी आवाज नाजुक, स्टाइलिश और यूथफुल मानी जाती है। यूथफुल इसीलिए क्योंकि आज के नौजवान भी या पहले में भी सभी लोग उनकी आवाज को बेहद पसंद करते थे। अलीशा जब ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी तब भी उनके शोज उनके लिए इतने ज्यादा मायने रखते थे। कभी कभी एक्टिवेट शो में भी वो दिखाई देती थी। वे सोशल मीडिया पर मौजूद तो हैं, इंस्टाग्राम पर अपने पुराने और नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की तैयारी भी करती हैं, और साथ ही साथ में कई ऐसी चीजों को लेकर के उन्होंने बात भी करी। लेकिन कहा जाता है कि हर एक पर्सनालिटी के पीछे कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर कंट्रोवर्सीज तो होती है। वो कहते हैं ना, जिनके पीछे उपलब्धियां होती हैं, जिनके नाम होते हैं, उनके साथ में कंट्रोवर्सीज तो बहुत सारी होती हैं। सब बताएंगे लेकिन एक प्यारे से खूबसूरत सॉन्ग के बाद।

कहते हैं ना कि जब कोई उपलब्धि हो जाती है तो उसको छूने के लिए कई बार ऐसे होता है कि हम पहुंच तो जाते हैं लेकिन पीछे पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारा साया और साथ नहीं छोड़ती हैं। बस ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सीज भी अलीशा चनाय के साथ थी, लेकिन कहते हैं कि जो सरल और जिनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है वे भी अपनी बात से लोगों को मनवाने के लिए अपनी बात को मनवाई लेते हैं। वैसे ही लाख कंट्रोवर्सीज क्यों न हो, लेकिन अलीशा ने अपनी प्यारी सी आवाज को लेकर के कई ऐसे मामलों को, कई ऐसे मुद्दों को पीछे छोड़ा और साथ ही साथ ऐसे कई संगीतकारों के साथ भी बैठ कर के जिनके साथ उनका कभी विवाद भी हुआ होगा पर उनके पीठ पीछे कभी कुछ नहीं बोलना। साथ ही साथ जब उनके साथ में बैठ कर के वो रिकॉर्डिंग करती थी, उनके जाने के बाद भी जिनसे उनका विवाद हुआ होता था वे भी उनकी तारीफ किया करते थे, कारण उनका सरल और प्यारा सा नेचर, उनकी प्यारी सी आवाज। तो ये होता है जो कि उपलब्धियों को छूने के बाद भी किसी के अंदर कोई घमंड बिल्कुल ना आए। और साथ ही साथ अब मैं आप सुनाऊंगी एक प्यारा सा गाना जो कि डॉन मूवी का है 2006 में, आज की रात, जो कि अलीशा चनाय की आवाज में। आइए सुनते हैं।